मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

भोर की किरणों ने छेड़ा है नया मधुर राग, गर्मी की सुबह में छिपा है जीवन का अनुराग। दिन भले ही तपन लेकर आए पर उसकी शुरुआत हमेशा शीतलता, आशा

और उत्साह से होती है। नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली की इंद्रधनुष।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में

ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनिए गन्ने की फसल में कृषि रक्षा कार्य विषय पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से की गई भेंटवार्ता। भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो इस समय हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से वैज्ञानिक अधिकारी फसल सुरक्षा डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय गन्ने की फसल जहाँ खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों से कैसे बचाएं?
2: नमस्कार श्रोतागण, इस समय गन्ने में चूंकि तापमान बहुत ज्यादा है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान दिखाई दे रहा है, तो गन्ने में समसामयिक जो कीट है काला चिकटा सबसे ज्यादा प्रकोप इस समय आ रहा है, जो कि पीड़ी फसल में दिखाई दे रहा है। इसके साथ जो कि हाई टेम्परेचर का जो सकिंग पेस्ट है, थ्रिप्स और सैनिक कीट का भी प्रकोप ज्यादातर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा माइट, जिसे मकड़ी कहते हैं सामान्य भाषा में, ये भी किसान भाइयों के खेत पे ज्यादातर दिखाई दे रहा है और हाई टेम्परेचर उच्च तापमान होने की वजह से इसका प्रकोप ज्यादा है। साथ ही साथ किसान भाई इसमें उत्तर प्रदेश के चोटी बेधक कीट से भी प्रभावित हो रहे हैं और ये चोटी बेधक के 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं, जो कि समय अंतराल मार्च अप्रैल से लेकर कटाई काल तक आती है, पूरे साल ये चलती रहती है।
1: और रोग दोग की बात करें तो
2: रोग में अगर हम बात करते हैं उच्च तापमान में, तो वेस्टर्न यूपी के साथ साथ पूरी यूपी में लाल सड़न रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं और शरद काल के जो फसल है या पेड़ी फसल है उसमें पोक्का बोइंग के भी लक्षण इस समय वर्तमान परिवेश में दिखाई दे रहे हैं।
1: तो शुरुआत करें कि जो भी हानिकारक कीट हैं उनका प्रबंधन हो, उसके पहले पहचान जरूरी है।
2: हाँ बिल्कुल, पहचान जरूरी है, क्योंकि किसान भाई यदि पहचान की पुष्टि कर लेता है तो निश्चित रूप से एक उचित दवा का इस्तेमाल करके उसका नियंत्रण पा सकता है।
1: जैसे आपने टॉप बोरर की बात की, चोटी बेधक की पहली पीढ़ी शुरू हो गई है।
2: अभी चोटी बेधक की हम प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी से गुजर रहे हैं और किसान भाई नियंत्रण करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल भी किया है। और इसके दवा में अगर मैं नाम की बात करूं तो कुलेंट्रा नीलीप्रोल 18.5 SC की आती है, जो कि किसान भाई यूज कर लिया है। इसके अलावा कुलेंट्रा नीलीप्रोल 8% थायमेथॉक्सम 17.5% होता है, इसका भी किसान भाई 240 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में उपयोग कर चुके हैं। लेकिन इस समय तीसरी पीढ़ी की शुरुआत अभी जून के आखिरी सप्ताह में होने वाली है, तो इससे किसान भाई बेहद ही चैतन्य रहे और सावधानी बरतने की जरूरत है।
1: तो इसके लिए कोई जैविक उपाय भी है क्या?
2: हाँ, चोटी बेधक के लिए ट्राइकोकार्ड आता है और इस ट्राइकोकार्ड के माध्यम से जैविक विधि से हम इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड पे ट्राइकोग्रामा जापोनिकम होता है, जो कि अंड परजीवी होता है, तो चोटी बेधक के अंडे को ये नष्ट कर देता है और जो मित्र कीट है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और बढ़ने की वजह से चोटी बेधक के अंडे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
1: तो एक एकड़ में कितना ट्राइकोकार्ड लगेगा डॉक्टर साहब?
2: ट्राइकोग्रामा जापानिकम के 20,000 अंडे एक एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं और एक एकड़ के लिए पर्याप्त एक कार्ड हम लगा देते हैं और एक कार्ड को कम से कम 4 से 5 टुकड़े में हम बांट देंगे और 4 कोने पे और एक बीच में लगा देने से पर्याप्त मात्रा में वो ट्राइकोग्रामा जापानिकम पूरे खेत में फैल जाते हैं।
1: और इसको बीच बीच में क्या बदलना भी होगा?
2: हाँ, 10 से 12 दिन के अंतराल पे किसान भाइयों से मेरी अपील है कि किसी भी विश्वविद्यालय या गन्ना शोध संस्थान के विभिन्न केंद्रों से प्राप्त करके इसको बदल के नया ट्राइकोकार्ड लगा सकता है। और इसके अलावा सूंडी को भी मारने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के भी साधन है,
1: जैसे
2: कि कोटेसिया फ्लेविस परजीवी जो पाया जाता है, ये सूंडियों को मारता है और ये 500 गर्भित मादा को प्रति एकड़ की दर से हम प्रतिस्थापित करते हैं पूरे खेत में।
1: तो ये मिलेगा कहाँ?
2: ये हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा गन्ना शोध संस्थान से भी ट्राइकोकार्ड प्राप्त कर सकते हैं
1: और शाहजहांपुर, सेवरही
2: और मुजफ्फरनगर से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक एकड़ में कितना?

0: जरूरत पड़ेगी इसकी?
1: एक एकड़ के लिए मैंने बताया कि जो अंड परजीवी है 20,000 अंडे प्रति एकड़, और जो हमारे सूढ़ी की परजीवी है वो कोटेसिया फ्लेविस, ये 500 गर्भित मादा प्रति एकड़ की दर से खेतों में प्रतिस्थापित करने से चोटी बेदक के लार्वा पे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंडे पे भी कंट्रोल पा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 6389025312 6389025312 6389025312।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं मिठास के किसान भाइयों बहनों का?
1: किसान भाई अपने फसल की लगातार निगरानी करते रहें। इस समय कीट और रोग का प्रकोप बहुतायत मात्रा में दिखाई दे सकता है, इसलिए निगरानी करते रहें और उचित लक्षण को पहचान के उचित दवा का इस्तेमाल करेंगे।
0: डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप गन्ने की फसल में कृषि रक्षा कार्य विषय पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से की गई ये भेंट वार्ता सुन रही थी। भेंट की थी डॉक्टर सुशील को।

0: भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप गन्ने की फसल में कृषि रक्षा कार्य विषय पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से की गई ये भेंट वार्ता सुन रही थी। भेंट की थी डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। सुविचार का सबसे बड़ा गुण है कि वह अपने हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है और सुविचार का प्रभाव स्वयं तक सीमित ना होकर समाज तक फैलता है। आज के सुविचार में सुनिए दान का महत्व के बारे में। स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का है।
2: दान लोक मंगल का परम साधन है, दूसरों की भलाई शांति देती है। दान निस्वार्थ और सेवा भाव से देने की परंपरा है। किसी की आवश्यकता में सहयोग करना दान है। देने वाले देवता हैं। दान में दातापन का भाव नहीं आता। देने की क्रिया दान है। एक हाथ से दान करने पर दूसरा हाथ नहीं जानता। दान देने से कोई कमी नहीं होती। प्रकृति दान देना सिखाती है। सूर्य चंद्रमा नदियां धरती वृक्ष फूल देते हैं। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर वापस आता है। प्राणी अपना आहार धरती से पाते हैं। प्रकृति दान के बदले वैभव लौटाती है। सबका पेट भरने वाली धरती ने अपना पेट खाली होने की शिकायत कभी नहीं की। देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। समुद्र बादलों को देता है। वात्सल्य का अमृत पिलाने वाली माताएं युग पुकार पर गोद धन्य करती हैं। निश्चल प्रशंसा दान की दिव्य प्रीति है। धुन के धनी भूख का दान करते हैं। सरस्वती सत्य कवच हैं। मौन दान कठोर वाणी को कोमल करता है। गांधी जी के तीन बंदर दान के आदर्श हैं। त्याग हृदय की वृत्ति है। विपन्नता में दान करना कीर्ति बढ़ाता है। किलकारियों से गूंजते आंगन में माधुरी कुंकुम लगाया जाता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र दधीचि शिव और कर्ण जैसे परमदानी यही हुए हैं जिन्होंने संसार के सामने दान का उदाहरण दिया है। विनोबा भावे ने दान का अर्थ फेंकना नहीं बल्कि बोना बताया है। पुराणों में अनेक दानों का उल्लेख है जिनमें अन्नदान विद्यादान अभयदान और धन दान को श्रेष्ठ माना गया है। भूखा रहकर भूखे को खिलाना दान की मर्यादा है। दान दिए धन ना घटे नदी घटे ना नीर का भाव नैसर्गिक है। दान देने से जमा करने का भाव नहीं आता। उदारता विचारों में शुद्धता लाती है। मोह लोभ न रहने पर व्यक्तित्व निखारने पर मानवता के परम धर्म में आत्मसंतुष्टि आती है। आवश्यकता वाले के घर जाकर दिया दान उत्तम है। शास्त्रों में दान का महत्व इसलिए है इस पुण्य कर्म से समानता आती है। आवश्यकता के अनुसार दुर्लभ मिल जाता है। अन्न जल गाय वस्त्र आसन आठ का दान जीवन में मंगलदायक है। नचिकेता ने अपने पिता को दूध न देने वाली गायों को दान देने से रोका। महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली के यहाँ भोजन किया पर प्रसेनजीत के दंड नायक के यहाँ कंजूस होने के कारण नहीं किया। सत्य का दान सरस्वती करती हैं। मनु ने लोक मंगल के उपाय में दान को अलौकिक बताया है। मंगल भाव का दान साकार होता है। संत कवि तुलसीदास ने दान की महिमा बताई है। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान जैन के निविधि दीन है दान करे कल्याण। हमारी संस्कृति बचपन से देना सिखाती है। अन्न संकट के समय परोपकारी पंडित राम नरेश जी ने श्रीमद भागवत भंडारों में बाल भोज के साथ लोगों की भूख मिटाई। हर जात की कन्याओं के विवाह में चरण पूजा की। दान धैर्य बनकर संकट टालता है। विष्णु को दान देते समय बलि ने तीसरा चरण रखने के लिए अपना मस्तक बढ़ा दिया। बाबू ने एक बार बताया कन्या विवाह में गुप्त दान श्रेष्ठ है। माताजी पशुओं के प्रसवकाल में भोजन कराती नहीं। नैसर्गिक मंथन से अलौकिक अमृत मिलता है। माताएं दूध पिलाकर दान का गुण देती हैं। अल्फ्रेड नोबल ने शांत के लिए दान दिया। पृथ्वी दान से तीन गुणापूर्ण स्वाध्याय करने वाले को मिलता है। पंडित वेदमूर्ति क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय ने एक इक्के भर ग्रंथ शिष्य देकर विद्यानिवास मिश्र को सज्जन विद्वान बनाने का दान दिया। पर पीड़ा देखकर छलकने वाला हृदय गंगा जल होता है। दुख हरण करने की तड़पन तुलसी दल है। दान देने वाले हाथ बात करने वाले होठों से श्रेष्ठ हैं। सर्वोत्तम दान आयुवर्धक भक्तिसार है। लुटाने पर महानता आती है। इससे समाज का संकट दूर होता है। दान से कृतज्ञता जीवन मूल्य उपजता है। विद्यादान सर्वोपरि है। व्यय करने पर बढ़ता है। जिसका अन्न वेद पाठी पचाते हैं उसकी 21 पीढ़ी

0: दुनिया तर जाती हैं। विद्वान की आजीविका न रहने पर भूख मिटाने वाले आज दुर्लभ हैं। अभाव में दान देना असाधारण है। खाली हाथ न लौटाने वाले दानी का सौभाग्य चमकता है। यह सामाजिक समरसता का मंत्र है। दान मंदाकिनी मंगलाचरण है। विश्वास के दान से उत्पन्न प्रेम आनंद मूल है। दीप दान प्रकाशदायक है। विनम्रता दान बेचैनी घटाता है। सरलता का दान महानता लाता है। अनाथ का दान फलदायी है। दूसरों का सहयोग करना स्वार्थवर्धक है। माता पिता गुरु उपकार करने वाले सज्जन को दान सुफल देता है। सबरी मीरा राधा रुक्मिणी का प्रेम दान लोक मंगल बन गया। दान शाश्वत सार्वभौमिक है। सरस्वती शांत स्वभाव की होने के कारण मंगलवाणी का वरदान देती हैं। दान देने की परंपरा रखने वाला कुल धन्य है, जिसका प्रसाद सौभाग्य देता है।
1: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे दान का महत्व के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मन जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब वही मन एक पवित्र मंदिर बन जाता है। सच्ची आराधना बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हृदय में बसे ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में है।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति रस में और डूबने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 214।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्रीराम को एक एक पल भारी हो रहा है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को ही आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।
5: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य

0: स्वर्ण जयंती राष्ट्रिय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशल्स् देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमन्त्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसङ्घर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथमसूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ पूर्वीयोत्तरप्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश सञ्जाता अस्ति। तत्र व्रणितानाम् उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन पद प्रतिष्ठा और सुविधाएं तभी अर्थपूर्ण होती हैं जब व्यक्ति स्वस्थ हो। और आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं घर के बुजुर्गों की देखभाल के सही तरीके विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
3: श्रोताओं नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर। स्वास्थ्य चर्चा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो हमारे परिवारों में बेहद महत्वपूर्ण है, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के सही तरीकों पर। बुजुर्ग हमारे परिवार की धरोहर होते हैं, जिनका अनुभव और ज्ञान हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगता है और इसलिए उनकी देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, ताकि वे स्वस्थ, खुशहाल और सक्रिय रह सकें। सबसे पहले संतुलित आहार के महत्व को समझेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। बुजुर्गों के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार जरूरी है, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे और बीमारियों से बचाव हो सके। उनके भोजन में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की सही मात्रा होनी चाहिए। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और दूध से बने पदार्थ उनकी हड्डियों को मजबूत और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। विशेष रूप से कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखें, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा हल्का और पचने में आसान भोजन देना चाहिए, जिससे पाचन में उन्हें दिक्कत न हो। पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन बुजुर्गों में आम समस्या होती है, क्योंकि वे अक्सर कम पानी पीते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि वे दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अगर उन्हें साधारण पानी पीना मुश्किल लगे, तो नारियल पानी, छाछ या फलों का रस जैसे तरल पदार्थ दिए जा सकते हैं। ये उनकी त्वचा को नमी देने के साथ साथ शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाए रखेगा। अब बात करें शारीरिक गतिविधियों की। ये गलतफहमी है कि उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों को पूरी तरह से आराम करना चाहिए। वास्तव में हल्की शारीरिक गतिविधियां जैसे कि टहलना, स्ट्रेचिंग और योग उनके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इससे उनकी मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है और हड्डियों को मजबूती मिलती है। यदि वे बाहर टहलने नहीं जा सकते हैं, तो घर के अंदर ही थोड़ी बहुत गतिविधि करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ये उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य। बुजुर्ग अक्सर अकेलेपन, चिंता या तनाव का अनुभव कर सकते हैं, खासकर अगर परिवार के सदस्य उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे हों। इसलिए उनके साथ समय बिताना, उनसे बातें करना और उनकी बातों को सुनना बेहद जरूरी है। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप उन्हें कुछ नई गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या उनके पसंदीदा शौक को आगे बढ़ाने में मदद करना। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वे उत्साहित भी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य जाँच और दवाइयों का ध्यान रखना भी बुजुर्गों की देखभाल का एक अहम हिस्सा है। नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सही समय पर सेवन सुनिश्चित करें। बुजुर्गों की याददाश्त कभी कभी कमजोर हो सकती है, इसलिए उनकी दवाइयों और नियमित चेकअप की जिम्मेदारी लें। इसके अलावा सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। घर में बुजुर्गों के लिए ऐसी जगह बनाएं जो सुरक्षित हो, जैसे कि बाथरूम में फिसलन रुकने वाले मैट्स लगाना, सीढ़ियों पर रेलिंग का इंतजाम करना और उनके लिए आसान पहुंच वाले स्थानों पर चीजें रखना। इन छोटे छोटे बदलावों से आप घर को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं और उन्हें गिरने या चोट लगने से भी बचा सकते हैं। अंत में बुजुर्गों को भावनात्मक समर्थन देना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें ये महसूस कराएं कि वे परिवार के लिए बेहद अनमोल हैं। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें सुनें और उनके अनुभवों को साझा करें। उनकी खुशी और सेहत के लिए आपका भावनात्मक समर्थन उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रोताओं, बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही देखभाल, प्यार और सम्मान के साथ हम उन्हें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको बुजुर्गों की देखभाल के सही तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। खुश रहें, अपने परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखें।
1: अभी आप घर के बुजुर्गों की देखभाल के सही तरीके विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा सम्पन्न हुई। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10 बजे। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत

कुमकुम शर्मा की वार्ता होगी, उपन्यासकार राजी सेठ का कथा मानस। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा। आकाशवाणी रामपुर मरकज की पेशकश, सुनिएगा मुलाकात बैनुल अक्वामी शायर शकील गुओस, मुलाकाती हैं फैजा जुबैर। इसके बाद कलामी शायर के तहत आप सुनेंगे श्री दत्त शर्मा को। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर घर आंगन कार्यक्रम में गीत गुंजन कार्यक्रम बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी विषय पर डॉक्टर नंदन सिंह से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर युवा साथी सुनते हैं कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें देवराज त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता का विषय है युवाओं के लिए कुछ खास बातें। भेंट करता है आशीष चतुर्वेदी। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर लोकस्वर में MSME मंत्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में प्रेम शंकर अवस्थी की वार्ता होगी ग्रामीण भारत की विकास यात्रा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी केला अमरूद और तरबूज उत्पादन विषय पर बताएंगे हरीश कुमार वर्मा। इनसे भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें 6G के साथ भविष्य होगा सुपरफास्ट। इस विषय पर डॉक्टर जीशान अली सिद्दीकी असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है प्रवीण कुमार। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर प्रिया पाल के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर हेमा दीक्षित के गाए गजल पेश की जाएगी।

श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हम अपनी श्रोताओं को बता दें जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी विषय पर डॉक्टर नंदन सिंह से की गई भेंट वार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस।

आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, परिश्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हर वर्ष 27 जून को विश्व भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें उन छोटे उद्यमों और व्यवसायों के महत्व को समझाने का अवसर देता है जो सीमित संसाधनों के बावजूद रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बड़े बड़े उद्योगों की चमक के पीछे

अवसर देता है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बड़े बड़े उद्योगों की चमक के पीछे छोटे छोटे उद्योगों की मेहनत और लगन की एक लंबी कहानी छिपी होती है। यही छोटे उद्यम किसी देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि मोहल्ले की किराना दुकान, स्थानीय दर्जी, हस्तशिल्प बनाने वाले कारीगर, डेयरी संचालक, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, बेकरी, ऑनलाइन हस्तनिर्मित उत्पाद बेचने वाले युवा सभी किसी न किसी रूप में MSME क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये उद्यम केवल व्यापार नहीं करते बल्कि लोगों को रोजगार देकर परिवारों की आजीविका का आधार भी बनते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योग विकास की नई राह खोल रहे हैं। जहां बड़े उद्योगों का पहुंचना कठिन होता है, वहां छोटे उद्यम स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का उपयोग करके विकास की नई कहानी लिखते हैं। आज के समय में MSME की उपयोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जब दुनिया तेजी से बदल रही है और रोजगार के पारंपरिक अवसर सीमित हो रहे हैं, तब स्वरोजगार और उद्यमिता का एक सशक्त विकल्प बनकर उभरे हैं। किसी गांव की महिला यदि स्थानीय फलों से जैम और अचार बनाकर ऑनलाइन बेचती है तो वह न केवल अपनी आय बढ़ाती है बल्कि अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसी प्रकार कोई युवा डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या मोबाइल ऐप विकास का छोटा व्यवसाय शुरू करके स्वयं भी आगे बढ़ सकता है और दूसरों को भी काम दे सकता है। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि बड़े बड़े उद्योग प्रभावित हुए, लेकिन अनेक छोटे उद्यमों ने अपनी कार्यशैली में बदलाव कर नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। कई दर्जी मास्क बनाने लगे, छोटे उद्योगों ने सैनिटाइजर उत्पादन शुरू किया और अनेक व्यापारियों ने डिजिटल माध्यमों से ग्राहकों तक पहुंच बनाई। ये एक उदाहरण दर्शाता है कि छोटे उद्यम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तेजी से बदलने की क्षमता रखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। MSME क्षेत्र नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। किसी बड़े उद्योग की शुरुआत भी कभी एक छोटे से विचार से होती है। भारत में अनेक सफल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत करके वैश्विक पहचान बनाई। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आज डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने लोगों छोटे उद्यमों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने छोटे व्यवसाय को देश और दुनिया के ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया है। ग्रामीण भारत में MSME का महत्व और भी अधिक है। हथकरघा, हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, डेयरी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी युवा के गांव के युवा ने मिलकर एक दूध उत्पादन समूह बनाते हैं और स्थानीय स्तर पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करते हैं, तो इससे गाँव में रोजगार बढ़ता है और पलायन भी कम होता है। इसी प्रकार स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर कारीगर अपनी कला को वैश्विक पहचान दिला सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में भी MSME क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हजारों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। वे सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण, हस्तकला और अन्य क्षेत्रों में सफल उद्यमी बन रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब एक महिला उद्यमी बनती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार और समुदाय पर सकारात्मक रूप से पड़ता है।

हमें यह समझना चाहिए कि MSME केवल आर्थिक लाभ का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक विकास के वाहक भी हैं। ये स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हैं और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ते हैं। छोटे उद्यम स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को संरक्षित रखने में भी अपना योगदान देते हैं। युवाओं के लिए MSME क्षेत्र अवसरों का विशाल संसार प्रस्तुत करता है। आज नौकरी खोजने के साथ साथ नौकरी देने वाले बनने की सोच भी विकसित हो रही है। नई तकनीकों, स्टार्टअप संस्कृति और सरकारी योजनाओं ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है। यदि किसी के युवा के पास एक अच्छा विचार है तो वह सीमित पूंजी से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। आवश्यकता है केवल सही योजना और कौशल, धैर्य और निरंतर प्रयास की। श्रोताओं, विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर हमें यह संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि विकास केवल बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि छोटे प्रयासों से संभव है। एक छोटा उद्यम किसी व्यक्ति का सपना हो सकता है, किसी परिवार की आशा और किसी क्षेत्र की प्रगति का आधार बन सकता है। आज आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करें और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दें। इसी प्रेरणा दायक संदेश के साथ मैं श्रीवास्तव कार्यक्रम विविधा से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा।

0: मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2000

0: 2019 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,00,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक करबला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की करबला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
2: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत। कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव हाजिर हूँ। एक नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, जानकारियों और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम आज सुबह के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा और
1: भाषा का प्यार भरा नमस्कार।
0: भोर की सुनहरी किरणें खुशियों का पैगाम लाई, नई उमंग और नए सपनों से जीवन की राह सजाई। और हम अपने आज सुबह कार्यक्रम को सजा रहे हैं एक सुंदर से सुविचार, गीत, जानकारी और विशेषज्ञों की बातचीत के साथ। तो भाषा, शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम आज के सुविचार के साथ, है ना? तो आज का सुविचार ये है, मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है, मन से किसी को याद करना अहो भाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे ये परम सौभाग्य है।
1: इसलिए प्रयास यही हो कि हमारा मन निर्मल, संयमित और प्रेम से भरा रहे, क्योंकि मन ही हमारे भाग्य और सौभाग्य का सृजन करता है।
0: बिल्कुल। तो इसी बात पर हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: वाकई अंजलि, इस गीत ने तो मन को छू लिया।
1: बिल्कुल। और देखो, हम अपने श्रोताओं को भी बताएं कि आज का दौर जो है वो तकनीक का दौर है। एक ऐसा समय जहाँ हमारी सुबह मोबाइल स्क्रीन से शुरू होती है और रात भी उसी के साथ होती है। बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी, मनोरंजन, सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है।
0: सब कुछ।
1: लेकिन इस सुविधा के साथ एक अदृश्य खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, और वो है साइबर क्राइम का
0: हाल,
1: है ना। तो आज इसी विषय पर हम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं साइबर क्राइम, एक बढ़ती चुनौती विषय पर मृत्युंजय सिंह, साइबर क्राइम एक्सपर्ट से की गई भेंट वार्ता। इनसे भेंट की है रिंकी शर्मा ने, प्रस्तुत करता है रमनप्रीत सिंह।
2: दोस्तों नमस्कार। डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को आज जितना आसान बनाया है, उतना ही कुछ नए खतरों से भी हमें परिचित कराया है। आज बैंकिंग से लेकर खरीदारी, पढ़ाई से लेकर सामाजिक संपर्क तक, लगभग हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, हैकिंग, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड और डेटा चोरी जैसी घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में हम सभी के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि साइबर अपराधी किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और हम खुद को इनसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है जाने माने साइबर विशेषज्ञ मृत्युंजय सिंह जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि साइबर क्राइम वास्तव में क्या है और आज ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है।
3: बेसिकली मैम, आप देख रहे हो इंटरनेट 2014 के बाद लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट पे ज्यादा लोग एक्टिव हुए हैं। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े सब लोग इंटरनेट चला रहे हैं, और इंटरनेट डिजिटल से रिलेटेड जितने भी साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल हो गए, सोशल मीडिया के स्कैम्स हो गए, ये वो सब साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम का ही पार्ट है। और अभी 2024 और 25 के मुकाबले और 2026 के मुकाबले देखें तो सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड जो हुए 2024 और 2025 में हुए, और ये 2026 का जो अभी जो 6 मंथ जो चल रहा है इसमें ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। 2025 में जितने टोटल नंबर ऑफ फ्रॉड हुए उससे दुगना क्रॉस चुका है 2026 में। और जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लाइक एटीके स्कैम हो गए, मुद्रा लोन के नाम पे स्कैम हो गए, ये सब एक तरह का मोडस ऑपरेंडी है जो स्कैमर्स सामने वाले पर्सन को अपने जाल में फंसाता है, जैसे फिशिंग जिसको कहते हैं, उसके बाद सामने वाला फंसता है और पैसे का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। इसमें सब एक फाइनेंशियल का फ्रॉड है। मल्टीपल टाइप्स के फ्रॉड अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, जो तीन जैसे मुद्रा का, एपीके का, ट्रेडिंग का स्कैम, जो अभी मैंने आपसे बताया।
2: जी सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या साइबर अपराधी किसी खास वर्ग को निशाना बनाते हैं या हम सब सामान्य लोग भी इनके निशाने पर आते हैं।
3: ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको किसी को भी टारगेट किया जैसे कहते हैं ना, समंदर में या फिर तालाब में आप जाल फेंकते हो, जाल में कोई भी मछली आती, छोटी भी मछली आती, बड़ी मछली आती, और जो मीडियम क्लास की जो मछली थी वो भी फंस जाती है। सब एक तरीका है। स्कैमर क्या करते हैं, बल्क में एक जाल बिछाते हैं और उसमें जितने लोग फंसना फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो वाराणसी में अकेले सिर्फ 72 घंटे में कम से कम 30 लाख से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है, सिर्फ अकेले 72 घंटे। और सबसे ज्यादा जो स्कैम हुआ लोन और एटीके फाइल के नाम पे हुआ है, मुद्रा लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन के नाम पे स्कैम हुआ है, फिर उनके मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल कराने के बाद स्कैम हो गया उनके साथ। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अगर जो मेरे पास जो केसेस अभी पिछले 3-4 दिनों में आए, उसमें सबसे ज्यादा एक जो एज की क्राइटेरिया की बात करूं तो 40 या 65 के बीच की क्राइटेरिया सबसे ज्यादा है जो मुद्रा लोन और एपीके में फ्रॉड स्कैम में फंसे हैं, क्योंकि ये जो एज कैटेगरी है उनको आइडिया ही नहीं है कि ऐप मोबाइल कैसे चलाना है, मोबाइल में कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, कौन सा एपीके इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं करना है। स्कैमर उसी का फायदा उठा के मोबाइल को हैक करके कंट्रोल करते हैं और स्कैम करते हैं।
2: तो ये बहुत गंभीर समस्या हमारे समाज के लिए बनती जा रही है, तो इससे बचने के कुछ उपाय हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
3: इससे जैसे बहुत सारे स्कैम, जैसे ट्रेडिंग स्कैम है, एपीके स्कैम है, या फिर कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम है, एसएमएस फॉरवर्डिंग स्कैम है, इस सब की स्कैम से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मोबाइल ऐप है एम

0: कवच इसका नाम है, एंड कवच फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर दोनों में मिल जाएगा। इसमें आप इस ऐप को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो अपने फोन में। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है ना, किसी भी सस्पिशियस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसको ये बैन कर देगा स्कैम होने से पहले। कोई सस्पिशियस एपीके इंस्टॉल करते हो आप, कोई सस्पिशियस कोई कॉल फॉरवर्ड होता है, कोई एसएमएस फॉरवर्ड करता है कोई स्कैमर, तो ऐप जो एम कवच है आपको सिक्योर करेगा इन सब सारे स्कैम से। तो एम कवच एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है इन सब नॉर्मल जो टाइप्स की फ्रॉड से बचने के लिए। बाकी तो आप अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड को, बैंकिंग पासवर्ड को हमेशा चेंज करते रहो, अपडेट करते रहो। या फिर ऐसा कुछ स्कैम होता है तो मैं हमेशा एक ही चीज करूंगा, तुरंत 1930 पे कॉल करके तुरंत ही साइबर क्राइम में इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपके साथ साइबर स्कैम हुआ विद इन 24 आवर्स के अंदर। या फिर आप बैंक को भी इन्फॉर्म कर सकते हो या फिर 1930 में भी कॉल करके बता सकते हो।
1: साइबर क्राइम से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था जैसे कि आईटी एक्ट कितनी मजबूत है? पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है जब इस तरह के केसेस हो जाते हैं? तो
0: अगर इस पे बात करें तो देखिए, पुलिस काम तो कर रही है साइबर फ्रॉड को पकड़ने का, स्कैमर्स को पकड़ने का काम तो बहुत तेजी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका पैसा साइबर फ्रॉड में गया है, स्कैम में गया है, तो अगर आप टाइमली अगर आपने साइबर क्राइम को इन्फॉर्म कर दिया या फिर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो पैसे मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसके भी टाइप्स हैं कि आपने किस टाइप की फ्रॉड में, किस टाइप के स्कैम में आपका पैसा गया है। हो सकता है आपका पैसा क्रिप्टो में चला गया तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, आपका पैसा किसी बैंक में गया, अकाउंट में गया तो मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, एनआरआई का यहाँ पे वाराणसी में एक मोबाइल गिरा, उसके बाद क्या हुआ, उसके मोबाइल ऐप से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। सिर्फ मोबाइल कोई स्कैमर उठाया, चोरी हो गया था, उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए गायब हो गए। अब बताइए कैसे हुआ है? आखिर जब भी सामने लोगों को तो पासवर्ड भी नहीं पता रहा होगा, लेकिन कुछ तो टेक्निक यूज किया होगा। ये हो सकता है कि उसने कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम यूज किया होगा, एसएमएस का फॉरवर्डिंग स्कैम यूज किया होगा, किसी तरीके से उसने पैसे निकाले और स्कैम कर दिया। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपके पास कितना नॉलेज, कितने समझदार हो आप, कितनी जल्दी आप एक्शन लेते हो, सब उस पर डिपेंड करता है
1: जी। तो अगर किसी के साथ कोई ऐसी समस्या हो ही जाती है तो आपने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन सबसे पहला कौन सा कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहला जो काम मैंने जिसमें बताया कि सबसे पहले तुरंत 1930 पे कॉल करके इन्फॉर्म करो। अगर आपके पास मोबाइल है, 1930 पे कॉल किया, आपने इन्फॉर्म कर दिया, 1930 क्या करेगी, आपके सामने वाले बैंक को इन्फॉर्म करके उस पैसे को होल्ड कर देगी। चलो आपने वो भी नहीं किया तो दूसरा काम ये कर लो कि आप cybercrime.gov.in पे जाके आप अकाउंट बनाओ, वहाँ पे सारे एविडेंस जो भी चीज आपके साथ हुआ वहाँ पे इन्फॉर्म कर दो। विद इन 24 आवर्स के अंदर साइबर क्राइम क्या करेगी, आपके बैंक इन्फॉर्म करके आपके तुरंत जितने भी पैसे अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर किए गए उस सारे पैसों को सीज कर देगी, होल्ड लगा देगी। चलो मान लो कि आपने वो भी नहीं किया तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप संचार साथी को इन्फॉर्म कर सकते हो, आपका फोन चोरी हो गया, खो गया, तो तुरंत आप संचार साथी को कॉल करो, संचार साथी के ऐप पे इंस्टॉल करो और वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दो कि हमारा फोन चोरी हो गया, तो आपके फोन को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। फोन ब्लॉक हो जाएगा तो कोई स्कैमर आपके फोन का मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको बचा जा सकता है
1: जी सर। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से हमने ये जाना कि साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि जागरूकता से जुड़ा विषय भी है। थोड़ी सी सतर्कता, सही जानकारी और समय पर कार्यवाही हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमसे अपने बहुमूल्य विचार साझा किए साइबर विशेषज्ञ मृत्युंजय सिंह जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: तो भाषा, साइबर क्राइम एक बढ़ती चुनौती विषय पर मृत्युंजय सिंह साइबर क्राइम एक्सपर्ट जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत सावधानियां जो बताई हैं, हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को लेनी चाहिए और सुरक्षित अपना जो
3: मोबाइल चलाएं लेकिन सुरक्षित भी रहें, उसको सही तरीके से उसका
2: सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जीवन सफल है और सुरक्षित भी है ना। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और चर्चा कर लेते हैं आज हमारे कौन कौन से विशेष दिन हैं।
3: देखो अंजलि, आज है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। यह दिवस हर वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और सतत विकास लक्ष्यों में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने व बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: बिल्कुल भाषा, और इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना, वित्तीय सहायता तक उनकी पहुंच को आसान बनाना और स्थानीय स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार में इन उद्योगों की रीढ़ की हड्डी इन्हें माना गया है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ना।
3: और देखो अंजलि, आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर अंध दिवस है, जो प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हेलेन केलर के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
2: बिल्कुल, ये बधिर अंध लोगों के अधिकारों के प्रति

0: जागरूकता बढ़ाता है और हमें सहानुभूति, समर्थन और समान अवसरों की आवश्यकता का बोध भी कराता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो इस जानकारी के बाद सुन लेते हैं हम एक गीत।

0: तपता सूरज लेकर आया गर्मी का संदेश, आम की खुशबू महक उठी, खिल उठा परिवेश, पेड़ों की शीतल छाव से मिलता है मन को आराम, गर्मी भी सिखा जाती है धैर्य और शुभ काम, है ना भाषा? तो इस गर्मी में मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब मॉनसून आएगा।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: है ना। तो जान लेते हैं सीनियर साइंटिस्ट IMD मोहम्मद दानिश जी से मौसम का हाल।
2: हेलो,
3: नमस्कार दानिश जी।
2: नमस्ते,
3: आज सुबह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग। आज मौसम कैसा रहेगा तो बताइए प्लीज
2: जी। मौसम की बात करें तो आज भी गर्मी का सिलसिला बना रहेगा।
3: अच्छा।
2: आज और कल थोड़ा सा गर्मी का सिलसिला बना रहेगा, बाकी उसके बाद परसों से जैसा कि धीरे धीरे जो मानसूनल फ्लो है उसमें बढ़ोतरी आएगी
3: जी,
2: और बात करें तो तापमान में फिर धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना बनेगी। कुल मिला के कहें तो आज और कल थोड़ा गर्मी का सबब रहेगा, उसके बाद फिर मानसूनल फ्लो बढ़ेगा और धीरे धीरे बारिश की रफ्तार बढ़ेगी।
3: अच्छा जी,
2: कहीं ना कहीं मानसून
3: तो अभी हमारे श्रोताओं को, हम सबको अभी इंतजार करना है दो दिन मानसून का।
2: मानसून का, उसके बाद थोड़ा हल्की हल्की बारिश होने के बाद
3: जी,
2: फिर आने वाले आगामी दिनों में मानसून का आगमन की संभावना बनेगी
3: जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दानिश जी, हम लोग दो दिन और इंतजार करते हैं
2: जी,
3: और फिर बारिश का सभी श्रोता सभी लोग मजा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: ओके, धन्यवाद मैम।
1: चलो अंजलि, दो दिन मतलब गर्मी का कहर अभी जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर बारिश का आनंद लिया जाएगा।
0: फिर तो बारिश की बूंदें सबके मन को महकाएंगी
1: और मौसम आनंदित करेगा सबको।
0: हाँ, और सुन लेते हैं गीत।

0: तो भाषा, अब समय है हम अपने श्रोताओं को आज के इतिहास के बारे में बताएं कि आज के दिन हमारे इतिहास में क्या क्या चीजें हुई। आज 27 जून 1838 को राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। अच्छा। और आज ही के दिन 1967 में लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया।
1: 27 जून 1954 को रूस के ओब्निस्क में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सक्रिय किया गया था आज ही के दिन।
0: अच्छा।
1: और आज ही के दिन 1964 में दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में एक संग्रहालय बनाने का निर्णय भी लिया गया था।
0: अच्छा। और जानती हो, आज ही के दिन भारतीय एथलेटिक्स पीटी उषा, जिन्हें भारत की उड़न परी कहा जाता है, उनका जन्म 27 जून 1964 में आज ही के दिन हुआ था केरल में।
1: अच्छा। और वो तो वही उड़न परी उनको कहा जाता है।
0: हाँ।
1: और अंजलि, आपको बता दें कि भारतीय हिंदी सिनेमा के बेहतरीन संगीतकारों की उसमें शुमार हैं राहुल देव बर्मन। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1939 में कोलकाता में।
0: बिल्कुल। और एक विशेष दिन है आज, जानती हो, आज है राष्ट्रीय धूप का चश्मा दिवस। हर साल 27 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है।
1: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा,
0: बिल्कुल, जो फैशन और आंखों की सुरक्षा के बेहतरीन मेल वाले इस खास एक्सेसरी का जश्न मनाने का अवसर है। चाहे क्लासिक एविटर हो या ट्रेंडी कैटाई, अपना पसंदीदा चश्मा पहने और यूवी किरणों से सुरक्षा के साथ अपने को स्टाइल में दिखाए, है ना।
1: सही बात, सही कहा अंजलि।
0: आप सुनते हैं एक गीत।

0: तो भाषा, अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। डीजे इस कार्यक्रम से, आज सुबह कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव और
1: भाषा को
0: अनुमति
1: नमस्कार।
0: इसी के साथ नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यही समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त।

0: का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल।

0: हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है।

0: इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केवो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है।

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासिरा वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी

0: आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के अवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला की आर्जी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के अवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संगी मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदऊ किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि ये हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेज ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीजे का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट्स में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी मुआहदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस मुआहदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि यह पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने जैली हिमालयी मगरी बंगाल सिक्किम आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा साहिली आंध्र प्रदेश साहिली कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरला माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के एफआईएच प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए।

0: अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के ग्वाडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमरीका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए दो T20 बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजी खारजा ए जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी और दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और NCB की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वजी अजम के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और FIH मर्दों के प्रोलीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपने पसंद के गीत।

और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे पास मेल आने शुरू हो गए हैं आप सभी के। पहला मेल आया है हमारे पास मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, आप सभी सुनना चाहती हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत।

لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں۔ Hey.

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अगला मेल है हमारे पास मेरिट कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। ये सुनना चाहते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे पास दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। और अगला मेल है हमारे पास मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडोला, सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश कुमार। और एक मेल है हमारे पास संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये गीत जो है फिल्म क्योंकि इट्स फेट से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक मेल भेजा है बीड महाराष्ट्र से, बलराज प्रसाद करवा का, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का।

और श्रोताओं, हमारे पास मेल है जिला रायबरेली से रामराज राजभानु, रामशक्कर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य मिराज दुर्गा बेग और पप्पू पासी का, और लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सार बिर्राही और मेहराज जहां का। आप सभी सुनना चाहते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

हमारे पास मेल है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का, और एक मेल है हमारे पास हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान का। आप सभी सुनना चाहते हैं दो चोर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजा है खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी ने। फिल्म है दो रास्ते, आवाज है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। दीजिए इस कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
2: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहाँ पर पानी पीने बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में वृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेषकर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने

0: बताया कि
1: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
0: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को सहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
2: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से ख़त्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फ़ोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकाल लें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
3: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट, रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2 लाख बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस

0: अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानु चंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
1: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
2: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा दो अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले एक वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
3: ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनास पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले के हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
5: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
6: तुमने दी आवाज,
5: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
7: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही

0: पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेज़बान फरीदुल्लाह खान हाजिर है। सलाम खलूस कबूल कीजिए। आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम और हराम के पाक महीने से होती है। मुहर्रम हुर्मत वाला महीना चार पाक महीनों में से एक है। मुहर्रम के महीने में बहुत ही वाकयात पेश आए हैं। इस महीने की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। और इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। इसी तारीख को क़यामत क़ायम होगी। मुहर्रमुल हराम के इस पाक महीने में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ये अपने आर्काइव्स में मौजूद फ़ीचर क़ुरबानी जो तारीख बन गई। तहरीर शहज़ादा गुलरेज़ की है।
2: शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला

ये किसके हिजर में गम पहाड़ तोड़ दिया कि आज गोद के बच्चों ने दूध छोड़ दिया।

वो जुल्मत डरावनी, वो मर्गे बेपनाह के साए में जिंदगी, खैमों के गिर्दो पेश वो पुरहौल खामोशी, खामोशियों में दूर से वो चाप मौत की थी, पुश्ते वक्त बारे अलम से झुकी हुई अर्जो समा की सांस थी गोया रुकी हुई, वो अहले हक की तशना गहां मुख्तसर सिपाह, बातिल का वो हुजूम के अल्लाह की पनाह, वो जुल्मतों के दाम में जहरा के मेहरो माह, तारे वो फरते गम से झुकाए हुए निगाह, वो दिल बुझे हुए वो हवाएं थमी हुई, वो एक बहन की भाई पे नजरें जमी हुई, वो करबला की रात शब्बीर ने हयात का उनवा बना दिया, उस रात को भी मेहरे दुरख्शां बना दिया।

0: फैला हुआ बुझती हुई शमरों का धुआं है, आता हुआ हर लम्हा एक अंदेश जहां है, अनफास पे चलती हुई तेगों का गुमा है, सीनों में मगर जश्न चरावां का समा है, होठों पे मुनाजात है, आंखों में सहर है, तारीकी ये इमरोज में फरदा पे नजर है।
1: आवाज की एक शम्मा है परवाने 72, उन्वान है एक और है अफसाने 72, है दिल की कशीद और है पैमाने 72, लैलाए शहादत के हैं दीवाने 72। थे गम की मदारात में मसरूफ खुशतवार, बेदार थे इंसान की किस्मत के निगहदार, जागी हुई आंखों में भी थे सुबह के आसार, 18 जवां हाशमियों मुत्तलबी थे,

0: अभी आप ये आकाशवाणी रामपुर के आर्काइव्स में मौजूद फीचर समाप्त कर रहे थे, कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार थे सैयद हामिद मियाँ, रईस रामपुरी, जी आर सैयद, जुल्फ़िकार आदिल, शहजादा गुलरेज, अख्तर रिजवी और विनोद आनंद दयाल। तरतीबो पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रिया पाल के गाए भोजपुरी लोकगीत। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये पूर्वी।

0: प्रिया पाल के स्वर में अभी आप ये छपरिया सुन रहे थे। संगत कर रहे थे ढोलक पर अरुण कुमार त्रिपाठी, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर थे विमलकांत और साइट रिदम पर अरुण मिश्रा। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म से, आवाज है किशोर कुमार की।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का ये गाना। फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी, मृतकों की संख्या 920 हुई। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और महासागर दृष्टिकोण तथा विकासशील देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार बताया है। 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच

0: लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता

0: यूके एग्रीमेंट इज अ टेम्पलेट।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों की व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
2: परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होने पर इसके गंभीर परिणामों का पता चलेगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमरीका के हवाई हमलों के जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान माकूल जवाब देने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्लाह को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इस शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
4: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
2: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 107 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में पहुंच गया। इससे पहले ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे 6 अंक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया। सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ।

0: है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से कल मुलाकात की। श्री प्रधान ने बताया कि चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: भारत तेज है रफ्तार,
4: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
3: एक ऐसा कार्यक्रम
4: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
3: विकास की बातें, संगीत की मिठास
4: और एक नए भारत की आवाज़।
3: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
4: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी लखनऊ से अब प्रस्तुत है चित्रपट से में कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म धुनकी से, आवाज है अरिजीत सिंह की। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं स्काई फोर्स फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह और अफसाना खान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शाद काबिल ने और संगीत तनिष्क बागची का है।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी लखनऊ है। 11 बज चुके हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

तेरा लिखा पढ़ूं तो तेरी आवाज सुनूं, तेरा लिखा जो पढ़ूं तो तेरी आवाज सुनूं, तेरी आवाज सुनूं तो तेरा चेहरा देखूं। सभी सुनने वालों को राजेश्वरी का नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार,
0: कहाँ से फ़ोन किया है आपने?
1: मैं चिनाट लखनऊ से बोल रहा हूँ।
0: ओह, क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका?
1: मैं राजकुमार राठौर।

0: बोल रहा हूँ सुनो,
1: राजकुमार जी क्या करते हैं आप?
0: मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है
1: अच्छा ठीक चल रहा है
0: और
1: काम?
0: मेरा ये दूसरी बार फोन लगा।
1: अच्छा बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बधाई हो। गाना कौन सा सुनना है आपको आज?
0: गाना बस हम सुनना है वो मेरी हम सुनी कहाँ हो।
1: वाह वाह, सुनवाया जाए फिर
0: जी?
1: सुनवाया जाए। बहुत शुक्रिया आपको, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी आकाशवाणी लखनऊ के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे।
0: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: अरे बहुत अच्छे है माशाल्लाह, क्योंकि आपसे बातचीत हो रहा है, मतलब दो गुना चार गुना हो गया आज।
0: अच्छा
1: है ना,
0: पिछली कब बात हुई थी, कब मुलाकात हुई थी?
1: जी जी जी, ये आप ये आपसे बातचीत मेरा हुआ है शायद।
0: ओके तो चलिए, खैर
1: दो लाइन हो जाए।
0: हाँ जरूर जरूर जरूर।
1: अजनबी थे हमारे लिए, दोस्त बनकर मिलना अच्छा लगा। अजनबी थे आप हमारे लिए, यूँ दोस्त बनकर मिलना अच्छा लगा। बेशक सागर से गहरी है आपकी दोस्ती, तैरना तो आता था पर डूबना
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा लगता है जब आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगता है। क्या कहूँ, मतलब ये बयान नहीं कर सकता, दिल के गिटार के तार ऐसे झनझनाते लगते हैं, क्या कहूँ ये बयान नहीं कर सकता। बहुत ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा गांव है रामकृष्ण नगर
0: जी जी,
1: श्री भूमि आसाम प्रदेश का रहने वाला हूँ
0: जी जी जी,
1: है ना
0: अनुप जी, धन्यवाद बहुत बहुत फरमाइश का गीत बताएं आज।
1: आज इसी प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ
0: जी।
1: फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम, गाने का बोले से दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मोह मुड़ना ही था, ऐसे करके गाने हैं
0: जी जी।
1: और कुछ दोस्तों को मैं याद करता
0: जी जी, याद करें
1: पहले है।

0: अच्छे से दोस्त है आपके लिए फर्स्ट।
1: अच्छा शुक्रिया।
0: सेकेंडली हमारे सिस्टर है जिसका नाम है मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, उसका नाम है बबीता बागेल जी, और हमारे त्रिपुरा से मेरे छोटे भाई अविनाश जी है, बसंतीला सूर्यवंशी जी है, अमर सिंह साहू जी है, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, हमारे लंगटिया दोस्त है प्रेम जी चक्रवर्ती जी है।
1: अच्छा।
0: और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं सबके लिए।
1: थैंक यू अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए।
1: थैंक यू।
0: स्वस्थ रहिए। थैंक यू।
1: बहुत शुक्रिया अनूप जी। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो, नमस्ते साहब।
0: नमस्ते, कौन साहब बोल रहे
1: हैं? हम मुन्ना बोल रहे हैं, बहेलिया सुनैया से।
0: जी मुन्ना जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है साहब।
0: क्या करते हैं?
1: कुछ नहीं करते हैं, वृद्धावस्था है।
0: अरे ये तो बहुत, ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि आप एक वृक्ष की तरह परिवार के साए हैं, परिवार के साथ में हैं, हम सब के साथ में हैं। आपकी बड़ी उम्र हो, लंबी उम्र हो, सेहतमंद हो। घर में कैसे हैं सब लोग?
1: घर में सब ठीक रहते।
0: तो क्या दिनचर्या है आपकी, क्या क्या करते हैं दिन भर?
1: दिनचर्या क्या, हम थोड़ा पहले ड्राइविंग करते थे तो चोट लग गई।
0: अच्छा,
1: पहले कहाँ रहते?
0: अच्छा, तो आप घर में ही रहते हैं?
1: हाँ घर ही पे रहते हैं सब। आपका यही कार्यक्रम
0: बहुत धन्यवाद आपका, हम सबको आशीर्वाद दीजिएगा। आज गाना बताइए कौन सा सुनवाना है?
1: ये पाकीजा का गाना है, ढूंढो ढूंढो ये साजना मेरे कान का बाला।
0: अच्छा, गंगा जमुना फिल्म का गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: जय माता जी।
0: जय माता जी। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान।
0: ओह।

0: हेलो।
1: जय माता जी।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान।
0: कैसे हैं पूरन जी आप?
1: बस सर बढ़िया हूँ और आपके पास अच्छे हो जाते।
0: कैसा है राजस्थान का, राजस्थान का मौसम कैसा है?
1: बस मौसम ऐसा है, यहाँ बहुत धूप है और गर्म हुआ था।
0: हाँ, गर्मी भी यहाँ भी, हमारे यहाँ भी मौसम बड़ा गर्म है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। गाना बताएं
1: जी सर। फिल्म का नाम है सनम रे, इसका टाइटल सॉन्ग सुनूंगा और आप इजाजत देते हैं दो तीन दोस्तों को याद कर लूं?
0: हाँ बिल्कुल याद करें
1: जी। सबसे पहले तो आप है।
0: अच्छा
1: हाँ जी, सबसे क्योंकि आप है तो सबसे पहले आप ही।
0: थैंक यू थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है रमेश प्रजापति जी है, अभिनाथ जी है और मिंटू तिवारी जी है और तमाम श्रोता जी, इसका नाम छोड़ गया उनके लिए लाइव कॉलर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दोस्तों का। आप सबको सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो हाँ
0: जी नमस्कार।
1: हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी,
0: कैसे हैं आप, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बोल रहा हूँ, आज बहुत दिन के बाद कॉल लगी मेरी, 6 महीने के बाद।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काश
1: फतेहपुर जिला सोथर गाँव बाबा तारा से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा
1: ट्राई तो नाम है सर।
0: अच्छा कोशिश तो आपने की होगी?
1: हाँ कोशिश बहुत किया था लेकिन आज लग गया सर। अब विश्वास है कि आप आए थे तब कॉल लगा।
0: ओह माय गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
1: करता था।
0: अच्छा चलिए, आज कामयाबी हासिल हो गई।
1: आओ सर, ठीक हो?
0: सब ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है। आप घर में सब लोग ठीक है? सब लोग
1: ठीक है सर जी, बढ़िया।
0: गाना बताएं।
1: गाना सर जी सौरंगा फिल्म का है।
0: हाँ,
1: और गाने के बोल है लता रफी जी गाती हैं।
0: जी
1: लता जी गाती हैं, पिया कैसे मिलूं तुझसे मेरे पांव पड़ी जंजीर।
0: अच्छा वाह, बहुत अच्छा गाना,
1: वाला गाना था सर।
0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: भाई जान, अस्सलाम वालेकुम।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी। कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी जी बिल्कुल, गर्मी का आनंद ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है।
0: अच्छा, कौन साहब बोल रहे हैं आप?
1: जी भाई जान, मैं बीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गाँव से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। बहुत ज्यादा आग लगी है जो है तन मन में, बहुत तेज गर्मी है।
0: हाँ भाई, मौसम तो वाकई।
1: आपके यहाँ लखनऊ का मौसम?
0: बिल्कुल वैसे ही जैसा आपकी जगह का है, बिल्कुल वही सूरत हाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सुनाइए, गाना सुनवाए?
1: और बढ़िया है भाई जान,
0: गाना
1: आप ठीक हैं? हम भी बढ़िया हैं, हमारे श्रोता भी सारे बहुत बढ़िया होंगे।
0: हाँ, सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, सब लोग सुख समृद्ध और संपन्न रहें।
1: श्रोता हमारे गर्मी का आनंद ले रहे होंगे।
0: गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: बिल्कुल राजश्री भाई, जो है अभी इतनी तेज गर्मी है तो ऐसे में मन बार बार मचल रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा ही एक गीत सुना जाए। फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां, और गीत की बोले कि आग लगी तन मन में जब पानी बरसे हाये, वो ऐसे में आजा बेदर्दी सावन की दिनाए।
0: क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से फोन किया है आपने?
1: सर मैं डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ जिला इंदौर एमपी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छा हूँ और सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं शुभ नाम जान सकता हूँ जिनसे आपसे मेरी बात हो रही है?
0: जी मुझे राजेश्वरी कहते हैं।
1: अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और सर मुझे आज क्या है कि आरडी बर्मन साहब का जन्मदिन है, इनकी याद में मुझे गाना सुनना है। फिल्म का नाम है छोटे नवाब।
0: अच्छा,
1: और गाने के बोल हैं

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार।
1: अरे सर जी, फूल फूल से बनी आपकी तस्वीर और फूल फूल पे लिखा है
0: लिखा
1: आपका
0: है।
1: नाम
0: अच्छा।
1: और फूल फूल पे आपको मेरा सलाम सर जी। आज ये मान के चलिए कि मुझको करोड़ों की संपत्ति मिल गई।
0: ओह माय गॉड, ये बात है।
1: आप मिल गए राजेश्वरी भैया, तो ये मान के चलो कि अनमोल रतन मिल गए। और मैं ये बता दूं कि आपको अभिमन्यु की तरह घेरा डाला है गंगा जमुना सरस्वती सागर खान, तीनों बच्चियां लड़के और सितारा खान आपकी भाभी जान। और मैं मिल करके आपको जब फोन लगाया है तब आपकी भाभी जान ने लगा डाला और वो जीत गई जी। और मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ। आपका जिगर का टुकड़ा आप जानते होंगे
0: भाई। चांद भाई माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही है मुझे भी आपसे मुलाकात करके, क्योंकि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका करम है।
1: इसलिए आपको बताया था कि आपके गाल रसगुल्ले की तरह हैं। मेरे यहाँ के रसगुल्ले 1 किलो में 4 चढ़ते हैं, 250 ग्राम का 30 रुपए का मिलता है।
0: इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे।
1: अरे मौका का इंतजार करवाते करवाते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा इंतजार करके।
0: नहीं, अल्लाह ने चाह तो जरूर हाजिरी देंगे वहाँ।
1: आप गाना बता दो सर जी जल्दी, हालांकि बातें कर लेने दो सर जी, क्योंकि श्रीमान जी मैं बहुत उदास हो गया था, ना जाने सदियों के बाद आपसे बात हुई है। फिर गाना भले थोड़ा सा सुनवा देना
0: जी जी,
1: और एक हम लोग गुनगुना लें। फिल्म का नाम है क्रोधी, सुरेश वाडकर जी की आवाज में है और लता जी की
0: जी जी।
1: और ज्यादा नाम ना बुलवाया करें श्रीमान जी, मैं प्रेमदास बाबा जी का नाम ही सिर्फ बोल रहा हूँ गुरु
0: जी, जी जी।
1: और गाने के बोल है, चल चमेली बाग में झूला झुलाएंगे,
2: चल चमेली बाग में झूला झुलाएंगे,

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते सर, मैं रेनू पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: जी रेनू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और यकीन मानिएगा आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई आपसे बात करके क्योंकि आज मेरी आपसे दूसरी बार बात हो रही है, और जब भी आप आते हो मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि शिद्दत से कॉल लगा दूँ, क्या बताऊँ, पर लगती नहीं, पर आज जरूर लग गई।
0: रेनू जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ईश्वर का धन्यवाद करना कि आज उसने ये मौका दिया है आपको।
1: जी सर, सर मेरा नाम रेनू नहीं अनु है।
0: अनु, ओके अनु जी, आई एम सॉरी। अनु जी कैसे हैं आप?
1: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, और कल रात में हमारे यहाँ खूब बारिश भी हुई है तो मौसम भी बहुत अच्छा है।
0: अरे क्या कहने, बड़े भाग्यशाली हैं आप, कुछ तो राहत मिली।
1: हाँ
0: अनु, क्या करती हैं आप?
1: सर मैं तो पढ़ाई करती हूँ।
0: वाह, कैसे चल रही पढ़ाई, ठीक हो रही?
1: हाँ
0: शुक्रिया। आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: सर मैं एक नाम लेना चाहूंगी।
0: जी बताएं।
1: हमारे आदरणीय भाई जी हैं विजय कुमार पांडे, जो पचपड़ा बलरामपुर से हैं।
0: जी जी।
1: और सर सॉरी, दो नाम और हैं।
0: हाँ बताएं।
1: सिंह जी और एक पूनम जी कानपुर से।
0: अच्छा।
1: और मुझे गाना सुनना है बंधित मूवी का, होश मेरे ले लो।
0: ओके, मेरे होश ले लो।
1: हाँ मेरे होश ले लो। और सर आपसे आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप तो बहुत अच्छा करते हो, जल्दी जल्दी कॉल लेते हो, थोड़ा सा गाना चलाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी। आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का एक गीत।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रही?
1: जी सर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए।
0: अच्छा, कौन बोल रही हैं आप? कहाँ से फ़ोन किया है आपने? हेलो
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर
0: हेलो
2: रहे हैं।
0: ओ हेलो,
1: सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
0: हाँ जल्दी से फिल्म,
1: हेलो
0: मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप फिल्म का नाम बताएं, गाने के बोल बताएं।
1: जी सर, पहले मैं अपना दे दूँ?
0: हाँ नाम बताइए।
1: इंट्रोडक्शन, सर स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबतपुर मनकापुर जिला गोंडा से।
0: जी स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: आपका।
1: सर, आपसे मेरी फर्स्ट बार बात हो रही है अभी।
0: अरे वाह, बहुत खुशी की बात
1: जी
0: है।
1: सर, अब बहुत खुशी हो रही है। सर मुझे तथास्तु मूवी का गाना सुनना है, तेरे हुस्न का जादू चल गया।
0: अच्छा
1: जी, और सर मैं कुछ दो चार दोस्त का नाम ले लूँ, बस ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। जी सर, क्योंकि फर्स्ट बार बात हो रही है ना इसलिए।
0: जी जी बताएं बताएं।
1: आकाशवाणी अयोध्या के सीनियर अनाउंसर हैं अमरजीत सिंह, फिर उसके बाद मेरे दीपक मिश्रा और दीपिका और मेरी दीदी ज्योति सिंह, भगवान सिंह परमार जी और मेरे मम्मी पापा, जितने भी लाइव सुन रहे हैं कुछ तुमको कुछ हम के प्रोग्राम, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को ये गाना डेडिकेट है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से आपका दोस्त सर मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: जी बेटा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी सर, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मस्त हूँ। और इस समय मकान बनवा रहा था तो लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा आपसे बातचीत भी कर लिया जाए।
0: अच्छा, मकान या घर?
1: घर घर सर बना रहे थे वहाँ पर, क्या फ्लैट लिए थे तो
0: अच्छा, आप बड़े
1: वहाँ
0: भाग्यशाली
1: पर
0: हैं आप।
1: किराने की दुकान खोलने वाला हूँ, तो सर इस वजह से मकान तैयार कर रहा था किराने की दुकान पे।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ये घर आपको बहुत मुबारक हो।
1: जी जी
0: गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: गाना सर कौन सा बोले थे हमने, जो कसूर फिल्म का बोले थे सर, जो मेरी
0: हाँ।
1: रूह को चैन दे प्यार दे
0: अच्छा,
1: वो खुशी बन गए हो तुम, तो
0: क्या
1: कुछ मेरे
0: बात है
1: मित्र रहेंगे गाना सुनने के लिए।
0: जी, बताएं।
1: सबसे पहले तो हमारे मांझीलाल चंदेल साहब हो गए, फूल चंद मनकारी से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, मनी राम पाल हो गए, और जितने हमारे श्रोता सुर दिनकर चित्रकूट धाम से हमारे हो गए, अन्य जितने श्रोता सुर हैं सभी लोग के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो सर, प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात।
0: आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभ प्रभात। कौन बोल रही, कहाँ से फ़ोन किया है?
1: सर मैं रेडियो की वही जानी पहचानी की बात कर रही हूँ, जगदीश को, शुगर दीवानों के शहर लाइब्रेरी से।
0: अच्छा, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं रायबरेली वालों के?
1: सर हम बहुत अच्छे हैं और आज आपसे मेरी बात हो गई ना सर, बहुत अच्छे। आपसे कार्यक्रम में कॉल लगाना बहुत मुश्किल होता है सर।
0: हाँ ये तो,
1: आपका कार्यक्रम अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन सर मुलाकात बहुत कम हो पाती है।
0: हाँ ये तो है, तमाम सुनने वाले हैं, चाहने वालों की तादाद बहुत लंबी है, फेहरिस्त
1: जी
0: लंबी
1: जी
0: है।
1: सर, और सर पता आप और दीप्ति मैम आते हैं ना कार्यक्रम में तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मन में एक उम्मीद सी दिख जाती है कि आज मेरी कॉल लग जाएगी।
0: चलिए, ये विश्वास, ये उम्मीद आपका बना रहे।
1: जी सर, और हम उम्मीद करते हैं सर आप ऐसे ही कार्यक्रम में आते रहेंगे क्योंकि आपको श्रोता बहुत पसंद करते हैं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा जाता है सर।
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, सो नाइस ऑफ यू। गाना कौन सा
1: जी
0: सुनवाना
1: सर,
0: है?
1: और मुझे सॉन्ग सुनना है क्रांतिकारी मूवी से, और कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में है, और सॉन्ग के बोल है जब से हम तेरे आशिक बने
0: क्या बात है,
1: जिंदगी का मजा आ गया। सर ये सॉन्ग सुनना है और डेडिकेट भी करना चाहेंगे।
0: जी बताएं।
1: सबसे पहले आपको, दीप्ति दीदी को, और हमारे भाई है दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही, मेरी सिस्टर है गुड़िया, रिंकी दीदी और पूनम दीदी और अनु पांडे और तिवारी और समापलबीन साहिब अंसारी, महक अंसारी और ममता दीदी, सुषमा दीदी और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को
0: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो,
1: आपके आने से महक उठी हैं ये फिजाएं, आपके आने से महक उठी हैं ये फिजाएं, फूल खिल गए हैं खुशियों के और झूमने लगी हैं ये हवाएं। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
0: वेरी गुड मॉर्निंग, दुआएं हैं आपकी। कौन बोल रही?
1: मैम पूनम बोल रही हूँ। सर कैसे हैं? और बहुत देर से ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा आज आपसे बात तो हो ही जाए कम से कम, क्योंकि आप जब आते हैं एक हफ्ते में सर ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू पूनम जी,
1: मुझे भी इंतज़ार रहता है जब आपसे बात होती है, तो इंतज़ार आज खत्म हो गया है।
0: बहुत शुक्रिया पूनम जी। घर में कैसे हैं सब लोग?
1: घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं सर, और अभी हमारे दोस्त पिंकी जी का कॉल आया था, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया है कार्यक्रम में कॉल लगाने के लिए, और अच्छा लग रहा है सर। ज़्यादा समय ना लेते हो क्योंकि आप बहुत सारे कॉल शामिल करते हैं, इसके लिए शुक्रिया है।
0: जी,
1: गाना बता देती हूँ,
0: उनका
1: नाम है इंग्लिश बाबू देसी मैन, गाने के बोल हैं दिल दीवाना दिल हुआ दीवाना, ये गीत सुना दीजिएगा। और मेरी दोस्त रिंकी पिंकी जी को डेडिकेट आपको है, और अविनाश जी, भगवान सिंह जी हैं, गुंजन तिवारी जी हैं, समा परवीन जी हैं, और साथ साथ राम बाबू शर्मा जी हैं। सभी श्रोताओं को, जितने भी और श्रोता लिसनर सुन रहे हैं, सभी को गीत डेडिकेट।
0: थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारे तमाम साथी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोइंसिडेंस है कि कभी टेलीफोन लाइन का मसला, कभी किस्मत का और कभी कोशिश की। चलिए कोशिश करें, हो सकता भी क्योंकि अभी मुझे लगता है 10 मिनट बाकी हैं 12 बजने में, तो हो सकता है मुलाकात हो जाए आपसे।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: जी सर। नमस्कार,
0: कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से फ़ोन किया आपने?
1: सर मैं नरेंद्र नांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील श्यामपुर मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया, भगवान की कृपा है।
0: क्या करते हैं आप?
1: सर खेती किसानी करते हैं हम।
0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस प्रोग्राम को। गाना बताइए कौन सा सुनवाना है?
1: सर फिल्म का नाम है क्रांति, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: अच्छा
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो,
1: अगर अध्यात्म से जुड़ोगे तो कड़कती धूप और ईश्वर के दर्शन करोगे, और अगर भौतिकवाद से जुड़ जाओगे तो राजेश्वरी जी से सीधे रूबरू हो जाओगे नमस्कार सर जी,
0: बहुत बहुत प्रणाम आपको
1: जी। सर मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ, और महेश राजेश्वरी सर जी को सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
0: आपको बहुत बहुत राम राम प्रणाम। क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर सा रह गया है तो गाना बताएं।
1: मुझे नगीना फिल्म का तूने तू वक्त बेवक्त वाला गीत सुना दीजिए सर जी।
0: अच्छा, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया है।
1: और फूलचंद पाल, प्रेमदास बाबा और देवी शंकर शुक्ला जी के साथ, मांगीलाल चंदेल और विजय पांडे के साथ एक गीत सुनूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। वीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। चित्रपट संकेत।

साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी एसपी बाला सुब्रमण्यम की, बोल समीर ने लिखे थे और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और अब दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की हैं।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में भी आप कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामराज का लिखा हुआ एक गीत, जिसे संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने, स्वर कुमार सानू का है और फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज तौसीफ अख्तर की थी। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। आइए अब राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। बोल समीर के हैं और धुन नदीम श्रवण की।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने गीत सुना। फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर के स्वर में भी आप फिल्म राजकुमार का ये गीत सुन रहे थे। शब्द रचना शैलेंद्र की थी और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है कर्तव्य।

आपकी कसम, इस फिल्म में भी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आइए अब आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की हैं। फिल्म का नाम है चरस।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था भासी। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए आज के इस प्रोग्राम के आखिर में सौदा

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं, अब कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य

0: गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। प्रभारी निरीक्षक थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी से प्राप्त सूचना के अनुसार अतुल कुमार शुक्ला, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच। अतुल कुमार शुक्ला पिछले 19 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को अतुल कुमार शुक्ला के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना रामस्नेही घाट जनपद बाराबंकी। श्रीमती सुनीता, पत्नी स्वर्गीय अक्षय लाल, निवासी बेगमगंज, थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि नुकुल, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है। नुकुल पिछले 7 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को नुकुल के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्रीमती सुनीता, पत्नी स्वर्गीय श्री अक्षय लाल, निवासी बेगमगंज, थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी। धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना तफरिक जनपद बाराबंकी से प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी रेखा देवी, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, कद 4 फीट 5 इंच। रेखा देवी पिछले 30 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी रेखा देवी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना तकरीक जनपद बाराबंकी। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: लीजिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं सुनिए। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे और रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनिएगा उपन्यासकार राजीव सेठ का कथा मानस। ये वार्ताकार होंगे कुमकुम शर्मा। शाम 7:45 श्याम्य अवध और 7:31 पर विज्ञान जगत। आज इसमें विज्ञान समाचार के अलावा एक भेंट वार्ता 6G के साथ, भविष्य होगा सुपर फास्ट। ये भेंट वार्ता होगी डॉक्टर जीशान अली सिद्दीकी के साथ। भेंट करता होंगे प्रवीण कुमार विज्ञान जगत में संध्या 7:31 पर। लोकायतन कार्यक्रम में

0: 6:30 में प्रसुनिएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर चर्चा, इसके अलावा ग्रामीण भारत की विकास यात्रा, ये वार्ता होगी। वार्ताकार होंगे प्रेम शंकर अवस्थी। खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 में प्रसुनिएगा फलदार वृक्षों की सघन बागवानी, इस विषय पर डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह के साथ एक भेंट वार्ता। भेंट करता हूँ डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इकतसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए।
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
2: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
3: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
2: तिब्बी और सेहत के

0: को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी की यार नमस्कार। और पंचो, गर्मी तो कम नहीं भाई, मुल्हा लड़कन के गर्मी के छुट्टी जोन है ना, वही जरूर खत्म हो गई है। अब स्कूल खुले वाला है तो भाई अब कमर कस लियो और जोन तनुक देर तलक सोवत रहो ना, वह आदत बदल दियो। अब समय पे सोवे और जागे की आदत भी डाल लियो। कैसे कि स्कूल जाए का है, समय पर पहुँचे का है। हा? और हाँ भाई, ध्यान रखो कि अगर आपके आस पास कोनो आइस गदेल हैं जोन स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्हों का प्रेरित करो कि स्कूल चली। काहे कि शिक्षा जो उन्हें हुई सबै लड़कन के अधिकार आए और सबसे मजबूत हथियार आए। तो भैया खूब मन लगाए के पढ़ो लिखो। और याक बात कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमका अपन व्यवहारिक ज्ञान भी सीखे का चाहिए। मने कि अपने छोटे जो है उनके साथ है कैसे बोले बतियावे का है, अपने बड़े जो है उनके साथ कैसे व्यवहार करे का है, बातचीत के सलीका, अपने बड़े बुजुर्गन के साथ उठे बैठे के तौर तरीका, या सब व्यवहारिक ज्ञान जो है हमारे व्यक्तित्व का निखारत है। तो यह से लड़कन का शुरू से भाई इन बातन की आदत डाले का चाहिए। और पंचो, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए का कुछ लेके आए हैं या सब बारे में बात करबे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
2: लीजर रिसॉर्ट बहराइच,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
2: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
1: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
2: UPSRTC देवरिया,
1: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
1: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
2: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
1: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
2: लीजर रिसॉर्ट बहराइच,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
2: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
1: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
2: UPSRTC देवरिया,
1: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
1: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
2: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
1: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
0: और श्रोता बंचो, देखो जैसा कि आप सबका पता है आज माह के चौथा शनिवार है जोने में हम लेके आई थन कार्यक्रम गीत गुंजन। और यही माह हम अपनी सखी होरिन से फोन पर बतवाने हन और साथ है उनके पसंद के गीत गवने भी है। तो आप सब भी सुनो कि हमारे श्रोता जो सखी हो रही हैं वही हमसे कोने कोने विषय पर अपन विचार साझा करी नहीं और उनके पसंद के गीत गवने की आनंद आप भी लियो। तो चलो सुना जाए यह कार्यक्रम गीत गुंजन। हेलो।
6: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
6: हम रीता बोले।
0: अच्छा रीता बहनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गीत गुंजन में। और रीता बहनी यह बताओ कि आप काम का करती हो?
6: दीदी हम स्वास्थ्य सखी का काम करते हैं। मेरा नाम रीता है, मेरे समूह का नाम गुलाब महिला स्वयं सहायता समूह।
0: अच्छा।

0: लक्ष्मीपुर गांव से बोल रही हूँ।
1: अच्छा रीता
0: मेरे
1: भाई,
0: ग्राम पंचायत का नाम कोड़री भोली लक्ष्मीपुर है
1: अच्छा जीता जी, तो यह बताओ, आप बताओ कि आप स्वास्थ्य सखी के रूप में काम करती हो, जो
0: जी
1: मतलब लोगों का जागरूक करत हो स्वास्थ्य के प्रति।
0: दीदी।
1: इतनी बखत इतनी गर्मी पड़ रही है, तो यह गर्मी में मन ही अपने स्वास्थ्य के कई ध्यान रखे।
0: दीदी इस समय जैसे घोल बना के पिए या फिर गर्मी से बचाव के लिए पानी पीते रहे, ज्यादातर ठंडा या नॉर्मल पानी पीते रहिए,
1: हाँ, जो ने शरीर में पानी की कमी ना हो पावे,
0: कमी ना हो।
1: बहुत अच्छी बात बताओ बहनी। तो यह बताओ, आज गीत गुंजन माँ, अभी आपके फोन लगा है तो आप गवनई कौन सुना चाहते हो आज कार्यक्रम माँ?
0: दीदी इस समय हमारे जो है लड़की के लड़का हुआ है।
1: अरे वाह, बहुत बहुत
0: चलिए
1: बधाई भाई
0: तो
1: आपका पहले तो।
0: जी दीदी, थैंक यू दीदी इसके लिए। दीदी इसलिए हम सोहर आपको प्रस्तुत करते हैं।
1: आप सोहर सुना चाहते हो मतलब,
0: जी दीदी
1: तो चलो बिल्कुल आपके लिए हम एक बढ़िया सा सोहर सुनवाए रहे हैं। आप यह आनंद लियो सोहर के, और आप हमसे बात क्यों, ये के लिए बहुत

0: फोन लाइन पर अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं, तो चलो इनसे भी बात करी थन, जानी थन कि हमारे साथ को जुड़ा है। हेलो
1: हेलो
2: जी, स्वागत है आपके बहुत बहुत बहनी। अपना नाम बताओ।
1: मेरा नाम उषा सिंह है।
2: उषा सिंह जी, तो उषा सिंह जी आप अपने बारे में थोड़ा सा हमका बताओ कि आप क्या करती हो, घर में को को है आपके?
1: मेरे घर में मेरा बच्चा है, हस्बैंड है, मेरी सास
2: अच्छा
1: है,
2: अच्छा अच्छा
1: और मैं इसमें जो है FNSW यानी स्वास्थ्य सखी के रूप में काम करती हूँ।
2: अरे वाह, तो देखो आज तो संजोग बहुत बढ़िया है। एक पहले जो सखी जुड़ी रही बहुत स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ काम करत रही, और आपो जो है स्वास्थ्य सखी के रूप में काम कर रही हो। तो यह बताओ बहनी कि स्वास्थ्य जो है हमारा सबसे बड़ा धन होत है, तो यह अच्छा बना रहे सब मन के स्वास्थ्य वही नीचे से रहे, तो यही के लिए आप लोगन का कैसे जागरूक करती हो?
1: अब लोगों के स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो इसके लिए हमें अपने खान पान पे ध्यान

0: देना चाहिए। जैसे अब इसमें गर्मी चल रही है, तो गर्मी में हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, धूप में खुद जितना कम हो सके उतना ही निकले,
1: बिल्कुल.
0: कॉटन के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, और जरूरी हो तभी धूप में निकले, नहीं तो ना निकले।
1: बिल्कुल.
0: छोटे बच्चों को देखना है तो छोटे बच्चों को भी हल्के ढीले कपड़े पहनाना चाहिए, उनको ORS का घोल वगैरह देना चाहिए, बार बार देखते रहने चाहिए कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है, तो इन सब
1: और
0: बातों का
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: सही कहे
0: रखना।
1: बने. और वही दो बात बहुत अच्छी बताओ कि देखो, हल्के रंग के कपड़े पहने और सूती कपड़ा पहने. अक्सर लोग
0: हाँ
1: सोचते हैं कि यही के का महत्व है. तो हम तो भैया बताए थे कि जो गाढ़े रंग के कपड़ा होते हैं वही धूप बहुत सोखत है ना.
0: सोखत,
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: वैसे और गर्मी लागत थी. और
0: जी
1: जब सूती कपड़ा होते तो वैसे हवा आर पार होती,
0: पार हो,
1: पसीने से जुड़े भर रोग जो है वैसे बचाव हो जाते हैं.
0: हाँ
1: हाँ, तो या तो बहुत निकी बात बताई. अच्छा, एक बात और बताओ. आप कहो कि आपके लड़का है घर माँ, तो यह अभी तो भाई स्कूल की छुट्टी चलत रही,
0: जी हाँ
1: तो यही माँ लड़का का क्या सिखाओ कि वो अपने समय के कैसे सदुपयोग करे.
0: लड़का का स्थान की जैसे अब छुट्टी है तो बच्चे छुट सोचते हैं हमको खेलना है, घूमना टहलना है, तो उनको एक मतलब नियम बना दिया कि इतने बजे आप उठ रहे हो, तो जैसे स्कूल टाइमिंग से जाते थे तो उसी प्रकार से घर में अपना अलग अलग टाइम टेबल बना लो कि इतने बजे से इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे खेलना है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो बाहर तो निकलना नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनको गाँव एरिया में ले गए और लोगों से मिलवाया, बाग बगीचे में दिखाया कि ये चीज ऐसी होती है, पेड़ पौधों को लगाने के बारे में उनको बताया। तो बच्चा हमारा 8 साल का हो गया है तो उसको ये सब चीजें मतलब मैंने बताई
1: बिल्कुल. और बहुत
0: कि और
1: अच्छी भाई
0: लोगों की
1: देखो.
0: सेवा कैसे करनी है, बड़े बूढ़ों को पानी, या कभी कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, कैसे क्या करना, ये सब चीजें मैंने उसको सिखाई है, सब बहुत चीजें।
1: बिल्कुल, जो हमारे श्रोता पर सुन रहे हैं तो उन्होंने यह कहा कि कितनी अच्छा काम कर रही हैं उषा बहिनी, कि जो लड़का है वही का प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बितवाए रही हैं, जो ने
0: जी
1: लड़कन बच्चन वही के महत्व का समझे हैं ना. नहीं तो आजकल
0: जी
1: कहा होते हैं कि लड़कन जो है वो मोबाइल पकड़ के कहो तो जो है वो गेम खेल रहे हैं, कहो तो वही पे
0: हाँ
1: यूट्यूब पे कोनो गाना सुन रहे हैं. और जैसे होता है कि भाई उनकी आंखें भी खराब होती है और उनका कुछ पता नहीं लगा थी.
0: अब
1: तो ये
0: मोबाइल में देखबो करें तो जो जरूरी चीजें हैं तो माता पिता का ध्यान देख चाहिए कि अपने बच्चे में कैसे मतलब मोबाइल में देखे थे, तो अच्छी चीजें बताओ बेटा, ये देखो अच्छी पढ़ाई की चीजें देखो, बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां मोबाइल में मिलत हैं, तो ये
1: बिल्कुल.
0: सब चीजें हम बच्चन को बतावा करे थे कि भैया ये अगर देख रहे हो तो थोड़ी देर पढ़ाई के बारे में देखो, बाग बगीचे के बारे में देखो, दुनिया के बारे में देखो, न्यूज को देखो, तो तुम समझ पाओगे कैसे क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें हम माता पिता से भी कहा चाहिए था, अगर बच्चे का मोबाइल दे रहे हैं तो कम से कम वहाँ बच्चे का समझावे कि क्या चीज देखना है क्या चीज नहीं देखे थे, और
1: बिल्कुल.
0: अपने निगरानी में रखें कि बच्चा हमारा कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा है।
1: या तो बहुत अच्छी जो कहा जाता है ना पेरेंटिंग टिप भी दे दी उषा बहनी, तीन एक ही बात बतावे के लिए. पहले तो हम आपका धन्यवाद दे दी हमसे बातों की हो आप. और यह बताओ कि आप गवनई कौन सुना चाहते हो आज?
0: दाता फिल्म का कोई भी गाना सुनवा सकते हैं,
1: दाता फिल्म से.
0: हाँ दाता फिल्म से,
1: जी, तो ठीक है उषा बहनी, आपके पसंद पर हम सुनवा रहे हैं आपका यह गीत. अब आप हमसे बात क्यों, ये के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

0: श्रोता पंचो, हमारे साथ फोन लाइन पर अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं, तो चलो इनसे भी बात करी थन। हेलो
1: हेलो,
2: स्वागत है बहनी आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत। और अपन नाम बताओ बहनी पहले।
1: सीमा देवी।
2: सीमा बहनी कहाँ से बोल रही हो?
1: लखनऊ से।
2: अच्छा, लखनऊ में ही रहा तू। तो सीमा बहनी, यह बताओ कि आज गीत गुंजन कार्यक्रम में आपके बात हो रही है, फोन लगा है, तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ कि आपके घर में को है, आप क्या करती हो, थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दो।
1: घर पे हम तीन लोग हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमें और मेरा एक लड़का है।
2: अच्छा,
1: और
2: कितना बड़ा है बेटवा?
1: लड़का हमारा है 11 साल का।
2: अच्छा, तो स्कूल जाते?
1: हाँ, स्कूल जाता है।
2: अच्छा, कौन सी क्लास में?
1: 5th में
2: है। अच्छा अच्छा, तो यह बताओ आप बहन, तो स्कूल की छुट्टी रही है?
1: हाँ, अभी तो छुट्टी चल रही है, मैम स्कूल खुलने वाला है, 1 तारीख को स्कूल खुल जाएगा।
2: हाँ, तो अच्छा एक बात यह बताओ कि जब लड़कन के गर्मी की छुट्टी हो थी तो अक्सर जो बिटियन हो रही होती हैं, तो हम पंचे का करी थी कि उनका रसोई के काम सिखाई थन, है ना? तो बेटवा है तो वही का आप का सिखायो गर्मी की छुट्टी में?
1: अरे मैम, क्या उसको क्या सिखाए, बस ये थोड़ा बहुत बताते हैं। हम सोचते हैं बच्चे हैं, थोड़ा अभी खेल कूद ले। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई दिक्कत ना आए।
2: सीमा बहनी, सबको यही चाहता है ना कि हमें लड़कन बच्चन के कब कोनो परेशानी ना हो, तो वही के लिए सबसे जरूरी जो उन काम है वह यह है कि भाई वही आपन सब काम खुद कर पावे, है कि नहीं?
1: ये तो बात सही है
2: ना।
1: तो हम बताते हैं, जैसे आप चाय भी बना लेता है और बाकी मतलब जैसे थोड़ा घरेलू काम है, झाड़ू है, ये है, सब बताते हैं। हाँ, कि भैया करते रहो, कई साल बीमार हो गए या खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम अपने हाथ से बना खा सको।
2: तो सीमा बहनी देखो, यह बात तो आप बहुत सही कहो कि बेटवा चाय बना ले रहा है, वही का घर के थोड़ा काम काज आप सिखा रही हो, काहे से कि कल के मान लो अगर कहूँ अकेले रह के पड़ा तो कम से कम काम अपन कर सके, कहू के मोहताज तो ना हो, है ना? देखो सीमा बहनी, हम आपसे यह कहा चाहते थे ना कि बच्चन का ना, जैसे हम पंचन पानी में तैराकी सीखे खातिन छोड़ी थन तो का करी थन कि भाई बच्चा का पानी में उतारें, लेकिन वही पे नजर रखो। और दूसरा बात कि जैसे वो खेले कूदे जा रहे हैं तो बस यह जरूर नजर रखो कि भाई उनके संगी साथी को है, तो बस उनके संगी साथी के बारे में जानकारी हो के चाहिए।
1: नजर तो रखना ही पड़ता है।
2: और हमसे आज आप बात क्यों, एक के लिए तो बहुत बहुत भाई धन्यवाद दे, लेकिन वही से पहले आप यह बताओ कि आज के कार्यक्रम में आप गाना कौन सा सुनना चाहते हो?
1: हाँ मैम, कोई अच्छा सा।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ
0: जी, स्वागत है आपका बहनी बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम गीत गुंजन माँ। अपन नाम बताओ पहले।
1: हमारा नाम समीक्षा सिंह है।
0: समीक्षा बहनी कहाँ से बोल रही हो?
1: हम अपना मुँह लखनऊ से बोल रहे हैं।
0: अच्छा। और समीक्षा बहनी यह बताओ भाई कि थोड़ा सा अपने बारे में कि घर में आपके को है।
1: अच्छा, हमारे घर में हमारी ज्वाइंट फैमिली है।
0: हाँ
1: हमारे सास जी हैं, ससुर जी हैं, और
0: अच्छा
1: देवरानी हैं, देवर हैं,
0: अच्छा
1: उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम
0: अरे
1: लोग एक
0: वाह,
1: साथ ही रहते हैं।
0: इसे आज के समय में यह बड़ी मतलब खुशी की बात है कि कहूँ कहूँ जो ने संयुक्त परिवार देखा है कि मिल रहे हैं, तो
1: हाँ
0: है ना?
1: सही जी
0: हाँ
1: जी हम संयुक्त परिवार में ही रह रहे हैं। टोटल 10-11 लोग हैं पूरे घर में,
0: अरे
1: और
0: वाह
1: सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं अपने घर में।
0: अरे वाह। तो यह बताओ जब 10-11 लोग हैं तो हर दिन लगा थोड़ी ना कि जैसे कोनो त्योहार है घरे में ना।
1: हाँ वो तो है।
0: हाँ
1: और उसमें कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो और भी जैसे लगता है
0: और भी
1: कि
0: बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो अब यह बताओ, देखो बहुत लोगों होते हैं ना कि वही सोचते हैं कि भाई संयुक्त परिवार के

0: की परेशानी। तो आप बताओ, जो कि आप संयुक्त परिवार में रह रही हो, कि संयुक्त परिवार में रहे के का का फायदे होते हैं?
1: संयुक्त परिवार में रहने से देखिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे अब हम साथ में है, ये लोग कहीं हमको आना जाना है तो हमको ये तो नहीं है कि हाँ हमारे घर में कोई है नहीं देखने वाला, बच्चों को कौन खाना देगा, कौन हमारे पति देव को खाना देगा। भाई हमारे घर में सास जी हैं, हमारी देवरानी है, अगर हम कहीं चले गए तो वो लोग हमारे बच्चों को देख रही हैं, उनको देख रही हैं। और घर में अगर काम भी ज्यादा है या हमारी तबीयत खराब होगी तो ये तो नहीं सोचना कि कौन करेगा, वो लोग
0: हाँ
1: अपना कर देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहो बहनी। और देखो, जब जहाँ पे एकल परिवार हैं वहाँ तो अगर जो घर की अगर जो घरैतीन है, अगर 2 दिन बदे पड़ गई कहूँ तो बाहर से फिर खाना रोटी के मुंह देखा के पड़ा थे।
1: हाँ और क्या, और बाहर का खाना देखिए नुकसान करता है।
0: बिल्कुल। अच्छा एक बात और भी है कि देखो, घर में जब दादा दादी हैं, दादी बाबा हैं, तो उनके संगे लड़कन जो है वो बहुत नीकी नीकी बातें सीखते हैं,
1: हाँ
0: है ना, कि
1: रहते
0: भाई
1: हाँ
0: योने का तो किस्सा कहानी को सुनाए रही है तो उनका बड़ा ज्ञान बढ़ा था। और नहीं तो ऐसे कहा होते कि लड़कन बच्चन बहरे गए, उनको कैसे मिल रहे हैं, का बतिया रहे हैं। हाँ, और कहो कबो कबो यह में गलत संगत में पड़ जाते हैं लड़कन।
1: हाँ हाँ ये तो है ही है। नहीं देखो हमारे यहाँ बच्चे हैं, दादी बाबा रहते तो उनके पास लेटते हैं, तो दादी हैं और बाबा हैं, कभी उनको रामायण की वो सुनाते हैं, कभी इधर उधर की अच्छी अच्छी कहानी बूढ़ बुजुर्गों वाली सुनाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं।
0: तो भैया देखो, अब इन गर्मी की छुट्टी तो बहुत नीके बीती हुई फिर लड़कन के, है
1: हाँ
0: ना।
1: नहीं तो बच्चों को लेके 15 दिन के लिए नानी के यहाँ गए थे हम।
0: अच्छा, यहो काम बढ़िया कर दो भाई, कि दादी के साथ तो रहवा करते हैं, कुछ समय
1: हाँ
0: नानियों के साथ
1: नानी के
0: बिताए।
1: पास, भाई अब घर
0: हाँ
1: में देखने वाले हैं सब लोग,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: हाँ
1: नानी के यहाँ भी हो आए, 15 दिन रह लिए। अभी अकेले होते तो 15 दिन रह ही नहीं पाते माँ बाप के पास
0: बिल्कुल।
1: अपने,
0: हाँ
1: भाई
0: यह बात तो भाई
1: हमारे घर
0: सही,
1: में कौन देखेगा।
0: बिल्कुल सही कहो समीक्षा
1: लेकिन
0: बहनी। और बहुत सुंदर बात बतायो कि देखो, संयुक्त परिवार में रह के आप कितनी खुश हो, एक एक कितने फायदे आप बतायो। और जो हमारे श्रोता पद सुन ही रहे हैं आज, तो उन्होंने यह कहा चाहब कि भाई जितना हो सके आप अपने बड़े बूढ़न के साथ ही, अपने परिवार के साथ ही समय बिताओ। वैसे लड़कन बच्चन के फायदा भी है, और आपस में जो प्रेम बढ़त है ना, तो वही कर
1: हाँ
0: कोनो तुको मोल नहीं ना, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो समीक्षा बहनी, अब यह बताओ कि भाई बतकही तो बहुत निकी निकी कियो, कि आज ये कार्यक्रम में गवनई कौन सी सुना चाहत हो?
1: गो नहीं, आप कोई देशभक्ति का अच्छा सा सुना दीजिए। हाँ
0: देशभक्ति का तो फिल्मी गाना कि लोकगीत?
1: लोकगीत में
0: अच्छा, तो चलो आपके जो ने पसंद पर सुनवा रहे हैं या देशभक्ति वाला लोकगीत। तो आप आनंद उठाओ और हमसे बात क्यों, यही के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

तो देखो अभय श्रोता पंचन सुनिन या डायल आउट कार्यक्रम गीत गुंजन जोने माँ सखी हो रही जोन है वही अपने विचार हमसे साझा करिन भाई अलग अलग विषय पर अपन मन की बात जोन है हमसे बताइन और साथ ही अपने पसंद के गीत गवनई भी सुनिन। तो यह कार्यक्रम आपका कैस लगा या तो हमका भाई आप जरूर बतायो ईमेल या फिर पाती के द्वारा अपन प्रतिक्रिया हमका जरूर भेजियो। और साथ ही मैं एक बात और भी है कि हमरी उई सखी हो रही जो उनकी आज कार्यक्रम सुनत रही और उन्हों चाहत ही अगर कि या गीत गुंजन कार्यक्रम में शामिल होब हमसे अपने विचार साझा करब अपने पसंद के गीत सुनब फ़ोन के माध्यम से तो फिर भाई यही के लिए आप भी हमारे कार्यक्रम गीत गुंजन से जुड़ सकत हो। तो यही के लिए आपका क्या करेगा है कि यही के लिए आपका ईमेल हमारा जो ईमेल आईडी है वहीं पर अपन फ़ोन नंबर पठाई दो हाँ जैसे आप प्रतिक्रिया भेजो तो अपन ईमेल पर तो वह तरह से साथ में अपन फ़ोन नंबर भी भेज दो। तो हर माह के हर चौथे जो शनिवार है वही में हम यह कार्यक्रम लेके आई थन और यह रिकॉर्डिंग करी थन पहले ही तो आप समय से अपन नंबर भेज दो जोने कि आप भी हमारे यह कार्यक्रम में शामिल हो सको हाँ। तो आपका एक बार हम पहले अपन ईमेल आईडी बताई दी जोने कि हमारी जो नई सखी हो रही हैं अगर वही शामिल हुआ चाहती तो वही अपन नंबर हमका भेज सके। तो हमारी ईमेल आईडी है घर आंगन airlko@gmail.com। और बहनी देखो बताए दे कि आपका या जो फ़ोन नंबर भेजे का है या ईमेल में ही भेजे का है या नहीं कि आप पातिमा लिख के भेज दियो है ना तो पातिमा बिल्कुल ना भेजो ईमेल में भेजो। और जब ईमेल आईडी आप हमारे लिखो तो ईमेल सब कुछ अंग्रेजी के छोटे अक्षरन में लिखा जाए GHARANGANAIRLKO@gmail.com पर। तो देखो या तो भाई बात भाई आपकी ईमेल की और कार्यक्रम के बिरिया समाप्त होए वाली है लेकिन चले से पहले हम अपने श्रोता पद जो सुन रहे हैं उनसे कुछ बातें साझा करा चाहिए थन कि देखो आजकल लगन चल रही है ना शादी ब्याह के मौसम है वो ऐसे में भाई बहुत जने के पास न्योता हकारी आवत भी है लोग जाते हैं यहाँ तो वही मैं ध्यान रखे का है हमका कि जो भोजन है हम देखी थन कई बार कि भाई लोग बहुत बर्बाद कर देते हैं। अब वही का करिए कि अपने भाई प्लेट में सब कुछ खाना ले लीन कुछ उनका पसंद आवा कुछ नहीं पसंद आवा और वही बात में का होते जाते हुई कूड़ा माँ तो या ना करे का है आप थोड़ा लो पहले थरिया में हाँ। अच्छा लड़कन बच्चन जो है ना तो वही भाई अपने से खुदे परोसे लागत हैं अब उनका का होते कि अंदाज नहीं होते तो यही से ना अनाज के अन्न के बर्बादी बहुत होती और सोचो कि अन्न के एक एक दाना जो है वही कितनी मेहनत से जो है उगत है तब हमारे थरिया तक पहुँचत है। तो या जो अभिभावक हैं जो लड़कन बच्चन का लेके जाते हैं उनका जिम्मेदारी है कि वही लड़कन बच्चन का खुद अपने सामने पहले खवावें जो है कि अनाज के एक और दाना बर्बाद ना हो या हम सब की जिम्मेदारी है। और देखो बड़े बुजुर्ग जो हमरे रहन वही का कहते रहन सिखाए रहन हम पंचन का कि अन्नपूर्णा होती या देवी होती अन्नपूर्णा तो इनका बर्बाद न करे के चाहिए इनका बहुत सम्मान के साथ अपने थरिया में इस्तेमाल भाई हमका करे का है। तो ये बात का ध्यान रखो और वही के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो हाँ इतनी वक्त गर्मी का देखत भाई बाहर के खाना पीना जो है वही का भाई हमका बरकावे का है और घर में भी जो खाना आप बनाओ भोजन वही का ताज़ा भोजन होए के चाहिए। बासी भोजन तो देखो पहले ही बताई थी कि बसिया भोजन से भाई बचे का है नहीं तो होत का है कि जितना आप समय नहीं बचौते हो वैसे ज़्यादा बीमारी हारी में पैसा खर्च हो जाते हैं ना। तो इन सब बातों के ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो और अपन एक एक क्षण जो है जीवन के वही का आनंद से बिताओ प्रेम से बिताओ। तो बस यह के साथ भाई आज के कार्यक्रम की बिरिया समाप्त हो रही है। तो आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का दियो अनुमति। नमस्कार जय हिंद।

ये लखनऊ केंद्र है, मीडियो वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:50 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

तुमसा नहीं देखा फिल्म में भी आप मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत सुन रहे थे। आइए अब आशा भोसले के स्वर में ये गीत, फिल्म का नाम है लीडर।

बागीचा फिल्म में लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत फजबाई में भी आपने सुना। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत गुलाम मोहम्मद का था। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ गीत आपके लिए। फिल्म का नाम है मधुमती।

लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों के गाई फिल्म मधुमति के इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों, आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: 2:15 हुए हैं, अब दोपहर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के

0: आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। विज्ञान और किसान, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी। इस विषय पर डॉक्टर नंदन

0: इनके साथ की गई एक भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। खरीफ के पहले आपके खेत का हीमोग्लोबिन बढ़े इसके लिए आप हरी खाद की बुआई किए होंगे। हरी खाद की पलटाई कैसे करें और उसके बाद खरीफ की तैयारी कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट बहराइच से वैज्ञानिक डॉक्टर नंदन सिंह। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हरी खाद का उत्पादन कितना महत्वपूर्ण है जहां खरीफ की तैयारी करने जा रहे हैं किसान भाई बहन?
2: खरीफ की तैयारी करते समय हरी खाद का महत्व उतना ही है जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हरी खाद हमारे किसान बंधु 42 से 45 दिन की अवस्था में पलटाई कर दें तो अत्यधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे तत्व हमारी मिट्टी को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को जो भी पलटाई करें हरी खाद की, वो 42 से 45 दिन की अवस्था में ही करें,
1: यानी फूल की अवस्था।
2: फूल की अवस्था, उस समय अत्यधिक मात्रा में बायोमास मिलता है। अगर उससे कम समय में करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में बायोमास मिल नहीं पाएगा। जब बायोमास ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो हमारी मिट्टी को ऑर्गेनिक कार्बन और भी सारे तत्व, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये कम मात्रा में मिलेंगे।
1: और उससे पुराना अगर आप पलटाई करेंगे तो उस समय फसल कड़ी हो जाएगी।
2: अगर उससे ज़्यादा दिन की अवधि की फसल करेंगे तो उसमें रेशे की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब रेशे की मात्रा बढ़ जाएगी तो कड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन में सड़ने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा।
1: तो किसान भाई बहन, कहीं सनई, कहीं ढैचा और कहीं उड़द और मूंग की बुआई किए हैं, तो उड़द और मूंग में तो तुड़ाई के बाद पलटाई करेंगे
2: जी,
1: और ढैचा और सनई में?
2: ढैचा और सनई में फूल आने की अवस्था में ही 42 से 45 दिन में पलटाई करना है। लेकिन जो भी किसान भाई उर्द और मूंग लगाए हैं उसकी तुड़ाई करने के बाद में उसे मिट्टी पलटहल से उसी में मिला देना है।
1: तो ये जो हरी खाद में प्रयुक्त दलहनी फसलें हैं, चाहे सनई है, ढैचा है, मूंग है, उर्द है, इसका मिट्टी से क्या सहसंबंध है?
2: एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है
1: जी।
2: वो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने नोड्यूल्स के माध्यम से जो गाठे होती है उसमें फिक्स करने का काम करती हैं।
1: यानी एक तरह के नाइट्रोजन की फैक्ट्री है उनकी जड़ों में।
2: जी डॉक्टर साहब, नाइट्रोजन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि वायुमंडल में हमारे 78% नाइट्रोजन है। उसको अवशोषित करके जड़ों में इकट्ठा करना और फिर नई फसल को, जो फसल लेने जा रहे हैं उसको प्राप्त करने का काम हमारे ये जीवाणु करते हैं।
1: और खेत की ताकत भी बढ़ाना और अगली फसल के लिए खुराक देना।
2: जी डॉक्टर साहब, प्राप्त तो हो जाता है, और साथ ही हमारा जो फर्टिलाइजर के रूप में जो हमारा यूरिया, डीएपी, पोटास लगता है, इसकी मात्रा भी 50-60% तक कम हो जाती है।
1: और ऑर्गेनिक कार्बन अलग से मिलता है,
2: ह्यूमस ऑर्गेनिक कार्बन कहा जाता है, वो हमारी मिट्टी के लिए वरदान है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। और ऐसे समय पर हरी खाद हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है जब पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन जो किसान भाई हैं उससे दूर भागते जा रहे हैं।
1: हरी खाद की पलटाई की बात चल रही है डॉक्टर साहब, तो हरी खाद देने की कौन कौन सी विधियां हैं?
2: अगर देखा जाए तो हरी खाद देने की प्रमुखता दो विधियां हैं। एक हरी खाद की स्थानिक विधि है और एक हरी पत्तियों की हरी खाद है
1: जी।
2: हरी खाद की स्थानिक विधि सामान्यतः हमारे किसान बंधु करते हैं। अगर देखा जाए तो मई के महीने में, जून में भी सनई, ढैचा, उर्द, मूंग जितनी भी दलहनी फसलें वो अपनी आवश्यकता अनुसार देखते हुए लगाते हैं, बुआई कर देते हैं, और बुआई के बाद में जब भी खरीफ की मेन फसल लेनी होती है उसके पहले वो पलटाई कर देते हैं 42 से 45 दिन की अवस्था।
1: चाहे धान की सीधी बुआई करनी है या धान की रोपाई करनी है या खरीफ की और फसलें बोना है।
2: जी जी डॉक्टर साहब,
1: और हरी पत्तियों की हरी खाद कैसे बनाए?
2: हरी पत्तियों की हरी खाद अगर देखा जाए तो अपने क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में प्रमुखता किसान जहाँ पे सनई, ढैचा नहीं बो पाते हैं, वो किसान क्या करते हैं, जैसे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, जो भी पत्तियां हैं
1: उनको इकट्ठा कर
2: लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, इकट्ठा करने के बाद में खेतों में लाकर बिछा देते हैं, बिछाने के बाद में मिट्टी पलट वाले हल से उसको मिट्टी में मिला देते हैं।
1: हरी खाद की बात चल रही है तो इसी तरह एक ग्रीन मैन्योरिंग के साथ साथ ब्राउन मैन्योरिंग भी है, यानी भूरी खाद कैसे बनाएं किसान भाई बहन?
2: अगर ब्राउन मैन्योरिंग की बात आती हो, भी हमारे सॉइल के ऑर्गेनिक कार्बन को, न्यूट्रिएंट कंटेंट को, नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है। जो भी किसान भाई

0: ब्राउन मैन्योरिंग करना चाहते हैं, वो जब भी डीएसआर विधि से लगा रहे हो धान, तो उसमें क्या करना है, डीएसआर के साथ डायरेक्ट सीडर ड्राइव जो धान की सीधी बिजाई करते हैं किसान बंधु, उनके साथ में 20 से 25 किलोग्राम ढैचा को प्रति हेक्टेयर की दर से, अगर देखा जाए एकड़ में तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने खेत में छिड़क दें,
1: छिटकवा विधि से
0: छिटक देंगे, तो 25 से 30 दिन के अंतराल पर
1: यानी धान के जमाव के साथ भी उसका भी जमा हो जाएगा
0: जी। अगर देखा जाए धान के साथ बिजाई जब करेंगे उसका जर्मिनेशन होगा उसके साथ में वो भी जम जाएगा, और 25 से 30 दिन जाते जाते जब उसके साथ में खरपतवार भी उगाते हैं तो हम ट्रूफोर्डी का छिड़काव कर देते हैं। ट्रूफोर्डी का छिड़काव करने से जो खरपतवार है वो भी और जो हमारा ढैचा है वो भी उसी में सूख जाएगा,
1: यानी मिट्टी में मिल जाएगा,
0: मिट्टी में मिल जाएगा। और जब मिट्टी में मिल जाता है ढैचा हमारा तो हमारी मिट्टी को ऑर्गेनिक कार्बन प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है, और वो एक प्रकार से मल्चिंग का काम करता है, आच्छादन का काम करता है।
1: और ये काम धान की रोपाई के समय भी कर सकते हैं,
0: ये काम हमारे किसान बंधु धान की जब भी रोपाई कर रहे हों तो इसी मात्रा में 8-10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ढेचे के बीज को छिड़क देते हैं, और 25 से 30 दिन के बाद में उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, खरपतवार नाशी डाल देते हैं, जिससे 25 से 30 दिन के अवस्था में जो भी हमारा ढेचा बढ़ा रहेगा वो बाद में सूख करके फैला
1: मिट्टी में मिल जाएगा।
0: मिट्टी में मिलने से बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं और देखा जाए तो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वो मल्चिंग का काम करेगा, जब ऊपरी परत को ढक देता है तो खरपतवार भी नहीं उगते हैं,
1: यानी एक पलवार बन जाती है और ऑर्गेनिक कार्बन और खेत का ह्यूमस बढ़ता है। डॉक्टर साहब, हरी खाद की पलटाई की बात चल रही है तो कौन कौन सी आवश्यक सावधानियां हैं?
0: अगर देखा जाए तो हमारे किसान बंधुओं को जब भी हरी खाद की पलटाई करने चल रहे हैं तो सबसे पहले समय का ध्यान रखें। समय ये है कि जब भी हम हरी खाद को लिए ढैचा सनई लगा रहे हैं तो 42 से 45 दिन पुष्पावस्था में जैसे ही आने वाला हो उसको मिट्टी में मिला दें,
1: यानी मुलायम अवस्था में।
0: अगर उससे कम अवस्था में भी मिलाएंगे तो ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बायोमास या इस प्रकार देखा जाए कि पोषक तत्व हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अत्यधिक मात्रा में अगर अधिक समय पर अंतराल पर करेंगे तो भी हमारी मिट्टी को उतने ज़्यादा तत्व नहीं मिल पाते हैं।
1: और सावधानियों में और क्या क्या है?
0: सावधानियों में अगर देखा जाए तो समय के साथ साथ अगर मिट्टी अगर देखे भारी मिट्टी है और मौसम संबंधित पूर्व अनुमान लगा लें, अगर बरसात होने वाली हो तो उसके पहले ही उसे उस मिट्टी में मिला दें।
1: और मिट्टी पलट हल से पलटाई करें?
0: मिट्टी पलट हल से जब भी पलटाई करें तो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही उसको मिट्टी के अंदर मिलाएं। ज्यादा नीचे अगर मिला देंगे 30-35 सेंटीमीटर नीचे मिला देते हैं हमारे किसान बंधु तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन में टाइम लगेगा, और किसान भाइयों को अगर बढ़िया से जल्द ही उसको सड़ा देना है खेतों में उसके लिए हमारे किसान बंधु 8-10 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें,
1: या गौमूत्र का
0: 8-10 लीटर गौमूत्र प्रति एकड़ की दर से ये डाल देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो जो हमारी हरी खाद है वो फास्ट डिकम्पोस्टिंग जल्दी से सड़ जाएगी और हमारी अगली फसल को प्राप्त होने लगेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट बहराई जाना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 97-94-600-457 9794-600-457 97-94-600-457।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: हम चलते चलते किसान भाइयों से यही आह्वान करना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई पहले इस तरीके से खेती को करते थे, हरी खाद का प्रयोग करते थे, वो पुराने अपनी रिसाइकलिंग की तरफ अगर आ जाएं तो जल्दी होगा, हरी खाद की प्रयोग करें अधिक से अधिक। अगर उनके पास हरी खाद में सनई ढैचा का ना प्रयोग करना चाहते तो उसके स्थान पर उर्द मूंग करें, उसको दलहनी फसलें भी दलहन भी मिल जाएगा और हमारी मिट्टी की ताकत भी बढ़ जाएगी। और साथ में ये भी करें कि वर्ष भर में एक बार दलहनी फसलों का अपने खेत में समावेशन जरूर करें,
1: यानी फसल चक्र में जरूर शामिल करें। और जहाँ हरी खाद के लिए आप सनई ढैचा मूंग उर्द की बुआई किए हैं तो वहाँ सही समय पर पलटाई करें ताकि खेत का हीमोग्लोबिन बढ़े, जो रासायनिक खाद प्रयोग करेंगे उसका भी असर दिखे। डॉक्टर नंदन सिंह, आज आप कार्यक्रम में आए और हरी खाद की पलटाई कैसे करें किसान भाई बहन खरीफ की तैयारी के पहले, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी।

0: सब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हरी खाद की पलटाई और खरीफ की तैयारी, इस विषय पर अभी डॉक्टर नंदन सिंह के साथ की गई यह भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:40 हुए हैं। जब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। मनोज कुमार सोनकर प्रभारी निरीक्षक थाना वड्डूपुर बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि कबीर बख्श, जिसकी उम्र 89 वर्ष है, कद 5 फीट 6 इंच, चेहरा गोल और रंग गेहुआ है। कबीर बख्श पिछले 25 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को कबीर बख्श के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। मनोज कुमार सोनकर प्रभारी निरीक्षक थाना वड्डूपुर बाराबंकी। प्रदीप सिंह पुत्र श्री कर्मवीर सिंह, निवासी ग्राम मुंडा हरवंशपुर शाहजहांपुर से हमें सूचित करते हैं कि निखिल, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, कद 4 फीट 5 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। निखिल पिछले 10 जून 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को निखिल के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रदीप सिंह पुत्र श्री कर्मवीर सिंह, निवासी ग्राम मुंडा हरवंशपुर जनपद शाहजहांपुर। खोई व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रिया पाल के गाए हुए कुछ भोजपुरी लोकगीत। आइए आपसे पहले सुनते हैं एक कहरवा।

ये विवाह गीत अभी आप सुन रहे थे। इस समय आप सुन रहे हैं प्रिया पाल के गाए हुए भोजपुरी लोकगीत। आइए अब कार्यक्रम के अंत में ये पूर्व गीत सुनिए।

0: लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रिया पाल के गाए हुए भोजपुरी लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगति की थी अरुण कुमार त्रिपाठी और हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर विमल कांत और साइड रिदम पर अरुण मिश्रा। इसके साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
0: अपने सुनने वालों को हम एक बार फिर याद दिला दें, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। विज्ञान जगत में 7:31 पर सुनिएगा 6G के साथ भविष्य होगा सुपर फास्ट, इस विषय पर डॉक्टर जीशान सिद्दीकी के साथ की गई एक भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे प्रवीण कुमार। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फौरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा

0: और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल के ईएएम परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सबसे पहले इस सभा की जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। शाम 5:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये सभी कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 पर। इसमें स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम होगा लोक स्वर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में प्रेम शंकर अवस्थी की वार्ता का विषय होगा ग्रामीण भारत की विकास यात्रा। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा। विषय होगा सफलता की कहानी, केला, अमरूद और तरबूज उत्पादन। इस विषय में हरीश कुमार वर्मा से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम विज्ञान जगत। इसमें भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी 6G के साथ भविष्य होगा सुपरफास्ट। इस विषय

में डॉक्टर जिशान अली सिद्दीकी से बातचीत करेंगे प्रवीण कुमार। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में कुमकुम शर्मा की वार्ता होगी उपन्यासकार राजीव सेठ की कथामानस। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गजलें, कलाकार होंगी हेमा दीक्षित। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब जानकारी कल की सभाओं में प्रसारित वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल अपराह्न 11 बजे प्रधानमंत्री रेडियो पर साझा करेंगे अपने मन की बात, कार्यक्रम होगा मन की बात। शाम 6:30 पर सुनिएगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 महिला क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर, इसमें सुनिएगा खत के लिए शुक्रिया, पेशकश आकाशवाणी लखनऊ मरकज की होगी। सामयिक चर्चा सवेरे 9:15 पर। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। सवेरे 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा धान रुपाई में आवश्यक सावधानियां। इस विषय में डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आराधना कार्यक्रम सुनिएगा सवेरे 6:15 पर। सवेरे 6:43 पर श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 7 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर की जानकारी का विषय होगा जीवन का आधार जल। सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम का विषय होगा नहीं ज्ञानीन सदृश्यम। सवेरे 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित भजन सुपोरी का संतूर वादन प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 9:50 पर और दिन में 2:45 पर सुनेगा कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी, इसमें कलाकार होंगी डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, इनसे सुनिएगा अवधि लोकगीत। सवेरे 10 बजे कार्यक्रम आपकी पसंद के लोकगीत। दिन में 12 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल गोपाल। दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें इरफान ह्यूमन की लिखी झलकी सुनिएगा यादों की सवारी, निर्देशन अतीश कुमार श्रीवास्तव का होगा। दिन में 1:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा बढ़ती उम्र और होम्योपैथिक सुरक्षित और सहज उपाय, इस विषय में डॉक्टर देविता श्रीवास्तव से भेंट करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। जवानों के लिए ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:50 पर। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा खरीफ में तिलहन उत्पादन। ये थी जानकारी हमारी इस सभा की और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, आधा किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो

0: इस प्रकार से यहां पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
1: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक के एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पे डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
0: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
1: Yes.
0: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
1: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक IC एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
0: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो उसके लिए भी एक रेट है,
1: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें टोकन।

0: वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इन छात्र एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि दो सीट हमेशा, दो टेबल मतलब आठ व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपये मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको दो टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के एक दो महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे, जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को, तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट

0: कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज़ किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है
0: वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल
1: असर वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे

0: शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर के आना, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज्ड रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में ही
1: है। अंबिकापुर में। तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था, तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें, ये
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं, वो एक भर कितना कंप्रेस हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक

0: 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है, तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह की चीजों पर भी कुछ,
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर्स
0: को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां
0: सभी,
1: से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी,
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूं कशिश जोरेन हुसैन और स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे कि कैसे हम सबको एक व्यवस्थित जीवन शैली अपनानी चाहिए, और साथ ही हम करेंगे आपसे एक भेंट वार्ता भी। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जो कि शीर्षक है युवाओं के लिए कुछ खास बातें, जिसके वार्ताकार हैं आशीष चतुर्वेदी जी।
1: भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज मुख्यतः युवाओं का समाज है। भारत की अधिकांश आबादी की जो औसत आयु है वो लगभग 30 वर्ष है। इसलिए जब युवाओं की बात होती है तो युवा एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है, जिसके कारण समाज उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में युवा चाहता है। युवाओं की शक्ति से समाज में परिवर्तन आए हैं। इसी तरह भारतीय समाज में भी युवाओं की एक मुख्य भूमिका है। इस विषय पर एक विशेषज्ञ को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, कैप्टन देवराज त्रिपाठी, जो सेना से रिटायर्ड कैप्टन हैं और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। अलग अलग जगहों पर जाते हैं, युवाओं को मोबिलाइज करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। वर्तमान में आधार सेवा केंद्र के ये सेंटर हेड भी हैं और इनकी रुचि भारतीय संस्कृत साहित्य और समाज में है। सबसे पहले तो त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, अब हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। हम देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है, लगभग हर व्यक्ति शिक्षित हुआ है, पर हमारे समाज में एक अवधारणा संस्कारों की रही है। हम अक्सर कहते हैं कि दैनिक जीवन में भी संस्कार की बात अक्सर आ जाती है कि इस व्यक्ति में संस्कार है, इस व्यक्ति में संस्कार नहीं है। तो आप इस समाज के जो परिवर्तन है उसको किस तरह देखते हैं, किस दिशा में जा रहा है?
2: अगर देखा जाए तो संस्कार घर से ही होते हैं। हम आज जो नई हमारी पीढ़ी है, निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे

0: एक स्टैंडर्ड मुकामों को हासिल कर रही है, लेकिन उनमें बहुत सारी चीजें, जब हम एक समाज में, जब मैं बहुत सारी जगहों में जाता हूँ तो देखने को ये मिलता है कि कुछ जो उनके बेसिक्स हैं, जो रूट्स हैं, वो रूट से कट रहे हैं। रूट से कटने का मतलब यह है हमारा कि जो हमारे किसी समाज की अवधारणा उसके बेसिक से होती है, जैसे कि हमारे पूर्व के संस्कार क्या हैं, और उन संस्कारों को लेकर जब हम एक एजुकेशनल लाइफ को बढ़ाते हैं आगे, तो वो एक बहुत ही सफल और सक्सेसफुल आप कह सकते हैं या पहचान बनाने वाली एक पीढ़ी तैयार होती है। जो मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ, हर एक जगहों पे जाता हूँ और ये कहता हूँ कि आप लोग हर एक काम करें, हो जो आपको लगता है बिंदास रूप से करें, बिल्कुल निस्वार्थ होकर करें, लेकिन आपके जो बेसिक्स हैं, जो हमारी संस्कृत से रिलेटेड चीजें हैं, उसको जरूर अपनी लाइफ में उतारें। उसको
1: संस्कार को मत भूलें, अपनी जो जड़ें हैं उनसे दूरी बना कर रखने से समाज में डिग्रेडेशन होता है। स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण एक घटक है, और कहते हैं आरोग्यम सुख संपदा, आरोग्य ही सुख है, संपत्ति है। बहुत दिनों से ये हमारी कहावतों की उदंतियों में भी रहा है कि स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हम देखते हैं कि युवाओं में आज बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, और अगर युवा स्वस्थ नहीं है तो एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें जब हम एक युवा के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। ग्रसित मतलब ये है कि वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें वो ले रहे हैं जो कि उनके डे बाय डे में इफेक्ट कर रहा है। पहली चीज कि उनके खान पीन का मतलब ये होता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपको क्या चीज लागू। सपोज हर एक चीज खानी चाहिए, लेकिन उसके एक अवधारणा होनी चाहिए कि हम क्या चीज किस टाइम कैसे खाएं उसको। और इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं हमेशा एक बोलता हूँ और हर एक युवा को बोलता हूँ कि आपको अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए 1 से 1.5 घंटा 24 घंटे में देना ही देना है, और वो सबसे अच्छा वक्त होता है आपका मॉर्निंग का। आप जब भी जगते हैं, आपका मॉर्निंग किसी का 4 बजे भी हो सकता है, किसी का 6 बजे हो सकता है, किसी के 7 बजे हो सकता है, ये मैटर करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ। आप जब भी जगते हैं आप अपने को सुबह के हर एक कार्यक्रम से निवृत्त करके 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। आपकी लाइफ की जो मोटापा है, ओवर वेट है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी चीजें आपको कंट्रोल होती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी कमाएं आप, मैटर वो नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कमाने के बाद अपने बॉडी को कितना फिट रख रहे हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
1: बिल्कुल, तो आपने बहुत कुछ अर्जित किया पर उसका अगर आप उपभोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो सारी चीजें बेकार हो जाती। अभी आपने शारीरिक स्वास्थ्य की बात बताई, आपने एक्टिविटी की बात बताई, खान पान की बात बताई, पर स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत एक अभिन्न रूप से जुड़ा है। और मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक मेल मिलाप से होता है, हम कितना अपने आप को खालीपन या एकाकीपन महसूस करते हैं।
0: ये बहुत अच्छा पॉइंट है आज की तारीख में। मैं बहुत सारे ओल्ड एज के पास भी जाता हूँ, जो कि बहुत उनकी मित्र मंडली होती है। जब वो सुबह के मैं उनको मिलता हूँ कभी किसी टीम के साथ जाके पार्क में गए, पर आप ये यकीन नहीं कर सकते वो बच्चे खेल रहे हैं कि वो 60 से 70 साल के बुजुर्ग खेल रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त होते हैं वो। हर एक चीज उनके साथ में वो अपने शेयर करते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है कि आज की तारीख में हमारा युवा अपनी चीज किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, और वही उसका स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनता है।
1: शेयरिंग इज केयरिंग भी कहा गया
0: जी। इसी के साथ में अगर हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं ज्यादा करके मोबाइल के साथ में, सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन वो चीज आपके लिए बिल्कुल लागू नहीं होती जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है।
1: बिल्कुल
0: सारा गार्बेज है। आपको चीजें वो सोशल मीडिया पे जाइए जहाँ पे अध्यात्म है, आपकी इनोवेशन है,
1: ग्रोथ
0: आपकी ग्रोथ है, आपके मोटिवेशनल है, उसमें से आप जब भी चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यस, ये हमारी लाइफ को एक परफेक्ट शेप देने के लिए तैयार है। तो चाइल्डहुड तो होना ही चाहिए बच्चे के अंदर या ओल्ड एज के अंदर। अगर ओल्ड एज के अंदर चाइल्डहुड आ गया तो समझ लीजिए आप बहुत लंबी उम्र जाने वाले हैं। तो मैं बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट कई बार बहुत से जगहों पे मैं देखता हूँ बच्चे हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, लगे रहिए, लेकिन आप उसमें से अचीव क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है। पहली बात, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना अपना आंखों की रोशनी दे रहे हैं, और अपना जो स्वास्थ्य है उसको वेस्ट कर रहे हैं, और अपने अंदर की जो अच्छी भावनाएं हैं उस एक सोशल मीडिया की वजह से अपने आप को उस तरफ ले जा करके बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के एक देश का भी कई बार नुकसान कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है पाठी जी। पहले राष्ट्र की सेवा की, उसके बाद आप सीधे आधार सेंटर के प्रमुख हैं, रतन स्क्वायर स्थित जो आधार सेंटर है मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे वेल मैनेज्ड सेंटर है
0: जी।
1: तो आप सीधे जनता की फिर से सेवा कर रहे हैं, दूसरी पारी है, और आपने एक बड़ा लंबा अनुभव है जीवन का आपको, तो वो अनुभव आप हमारे जो युवा श्रोता आपको सुन रहे हैं उनके साथ चलते चलते किस तरह से बांटना चाहेंगे, आखिर में आपका टेकअवे क्या है?
0: सर मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ, आपको पेरेंट्स ने आजादी दी है।

0: और समाज ने इतनी आजादी दी है, सरकार ने आपको इतनी आजादी दी है कि आप कोई भी काम करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, कुछ निर्णय होते थे जो हम ले सकते थे, लेकिन कुछ निर्णय हमारे माँ बाप लेते थे। लेकिन आज की तारीख में हर एक पेरेंट से चाहता है कि उसका बच्चा ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, देश से जुड़ने के लिए एक ऐसा डिसीजन ले जो कि एक्चुअली उसके हो। हम हमेशा ध्यान रखें, आप एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको एक तो पहले एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब मैंने कहता हूँ फौज का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब होता है आपके जो डे बाई रूटीन्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट होने चाहिए। आपको किस टाइम पे क्या करना है, किससे मिलना है, उससे क्या आप हासिल करने वाले हैं। और हमेशा एक चीज सोचिए कि आज मुझे एवरी डे कुछ नया करना है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए आप। छोटी छोटी खुशियों का मतलब ये कहता हूँ कि जब आप कहीं जा रहे होते हो, कोई बच्चा आपको मिलता है कहीं किसी वर्क प्लेस पे है, आप उस बच्चे को अगर लाड़ देते हैं ना, तो वो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है समाज के साथ और आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और मैं तो हमेशा अपने सोसाइटी में रहता हूँ तो मैं तो बच्चों का अंकल बोला जाता हूँ। तो आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर श्रोताओं और युवा श्रोता जो हमारे सुन रहे थे इस कार्यक्रम को, कि किस तरह जो युवाओं की दिनचर्या है वो बदल रही है और किस तरह उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं डिसिप्लिन वे में, हम केवल अपना ही विकास, अपना ही सफलता का मार्ग केवल प्रशस्त नहीं करते बल्कि एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की भी रचना करते हैं। हमारे साथ थे देवराज त्रिपाठी जी जो भारतीय सेना में निवर्तमान कैप्टन थे और वर्तमान में आधार सेंटर के प्रमुख हैं लखनऊ के रतन स्क्वायर। आकाशवाणी के स्टूडियो आए और हमारे श्रोता से, युवा श्रोताओं से अपने अनुभव साझा किए, उनको मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो दोस्तों ये थी बातचीत युवाओं के लिए कुछ खास बातें श्री देवराज त्रिपाठी की आशीष चतुर्वेदी जी के साथ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, सफलता की राह में बहुत ज़रूरी बात है कि हम एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। आज के युवाओं के पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन कई बार समय का सही उपयोग ना होने के कारण वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जीवन आप बिल्कुल ही कठोर बना दीजिए। इसका अर्थ ये है कि हम पढ़ाई, काम, आराम, व्यायाम, भोजन और मनोरंजन के लिए संतुलित समय तय करें। जब हमारा दिन व्यवस्थित होता है तो मन में कम उलझन रहती है और काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी आदतें जैसे कि सुबह समय पर उठना, दिन के 3 ज़रूरी काम नोटपैड पे लिख लेना या मोबाइल फ़ोन में लिख लेना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना, नियमित पढ़ाई या स्किल प्रैक्टिस करना और रात को अगले दिन की तैयारी कर लेना लंबे समय में बड़ी सफलता की नींव बनती है। युवाओं के लिए संदेश यही है कि केवल बड़े लक्ष्य बनाना काफ़ी नहीं है, उन लक्ष्यों तक पहुंचना मुमकिन तभी हो पाएगा जब हमारे दिनचर्या को एक सही दिशा मिलेगी। स्पष्ट लक्ष्य होना, सही सोच होना, निरंतर प्रयास और व्यवस्थित दिनचर्या, ये सब मिलकर ही हमें निरंतर मंजिल के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को मैं यही विराम देती हूँ। मैं हूँ कशिश जाफरी, आपसे लेती हूँ विदा। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। कल हम बात करेंगे सामाजिक समरसता और डिजिटल दुनिया के रंग, साथ ही भेंट वार्ता होगी युवा और नशे का दलदल, बातचीत होगी डॉक्टर अनूप कुमार भारती के साथ, भेंट करता होंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।

युवा तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

दोस्तों नमस्कार। नई उड़ान के आज के कार्यक्रम में आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त रीना। और बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं। वैसे जब कोई ये बात पूछता है तो कितना अच्छा लगता है ना, मन में थोड़ी सी खुशी सी महसूस होती है कि यार वाह, है तो ये आम बोलचाल की भाषा ही, लेकिन जब कोई हमसे पूछता है कि और आप कैसे हैं, तो कई बार मन ये होता है कि हम पूरा दिल अपना खोल कर रख दें, अपने सारे दुख दर्द उसे बता दें। फिर दिमाग कहता है ना ना ना ना ना ना, ऐसा मत करना, कहीं कोई सीक्रेट बात हमारे मुंह से निकल ना जाए, है ना। आज के जीवन में कितना विरोधाभास है, कितना मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है हम लोगों की, और इसीलिए हमारे एक्चुअल जो अचीवमेंट्स हैं वो मुझे लगता है थोड़े से कम हैं। जबकि पुराने ज़माने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी और इसीलिए लोगों के अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, चलिए एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। आज है महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि, और आप जानते हैं इन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में, मतलब ये सिर्फ 10 साल के थे तब के अपने पिता महा सिंह जी के साथ युद्ध लड़ने चले गए। मतलब आजकल के 10 साल के बच्चों को आप युद्ध में जाते हुए आप कल्पना कर सकते हैं? आप क्या, मैं भी नहीं कर सकती। हमारे अपने बच्चे हमारे अपने घरों में होते हैं, हम कभी सोचेंगे भी नहीं कि 10 साल के बच्चे को हम युद्ध में भेज देंगे, लड़ाई लड़ने भेज देंगे। अरे

0: छोटे से बच्चे को लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो 10 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी उन्होंने, और इनके पिता जो थे महाराजा महा सिंह, ये पंजाब के सुकर चकिया मिसल के कमांडर थे। और उस वक्त पंजाब जो था वो बहुत सारी मिसलों में बटा हुआ था, यानी बहुत सारी मिसलें थी पंजाब में जिन पर अलग अलग जो लोग थे वो राज्य करते थे। जब बहुत कम उम्र में महाराजा रणजीत सिंह अपनी मिसल सुकर चकिया के राजा बने तो उन्होंने धीरे धीरे पंजाब को एक किया। और आप जानते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें नाम दिया गया था शेरे पंजाब। यस, शेरे पंजाब था इनका नाम। और जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है ना, वो इनके शासनकाल में इन्हीं के पास था। और जब इनकी मृत्यु हो गई यानी इनकी डेथ हुई 1839 में, उसके बाद ये जो हीरा है ये अंग्रेज़ों को मिल गया और फिर वो इंग्लैंड चला गया और महारानी विक्टोरिया के ताज में इसको सजाया गया। और बहुत महीनों तक इस हीरे को तराशा गया जिससे कि वो महारानी विक्टोरिया के ताज में सज सके। ये तो एक अलग बात है, लेकिन आज महाराजा रणजीत सिंह को हम क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे बहादुर राजा थे, एक बहादुर नेता थे जिन्होंने जितने सालों तक राज किया तब तक अंग्रेज जो थे माफ़ कीजिएगा, वो पंजाब प्रांत के आसपास भी फटक नहीं पाए, वो आ ही नहीं पाए। और उस तब तक वो बिल्कुल उनको दूरी बना के रखनी पड़ी। और एक बात, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो बहुत ही उनका राजकाज बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने राजकाज में किसी को भी उन्होंने मृत्यु दंड नहीं दिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। जैसे कि आज जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, जहाँ पर हम मत्था टेकने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उस पे संगमरमर जड़वाया उन्होंने उस ज़माने में और उस पर सोने की मढ़ाई करवाई। इसीलिए जो अमृतसर का हरमिंदर साहब गुरुद्वारा था वो आज जाना जाता है स्वर्ण मंदिर के नाम से। अच्छा, आप एक बात जानते हैं, आजकल हम लोग जो मतलब जनरेशन है आज की ना, वो कितनी वैसी है लुक्स के ऊपर, स्टाइल के ऊपर और हेयर स्टाइल के ऊपर, इसके ऊपर उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो वास्तविकता में हमारे अंदर गुण होने चाहिए, उसके ऊपर ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ये बचपन में ही चेचक से ग्रसित हो गए और इनका चेहरा बहुत देखने में सुंदर नहीं था, इनकी हाइट भी कम थी, ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कर्मों से वो नाम कमाया कि आज तक भी हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमें लोग याद करें हमारे कामों से। हमारी लुक्स और हेयर स्टाइल और ये और वो, ये चीज़ें कुछ समय तक रहती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। अगर ये मेंटेन रहती हैं तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जब कामों की बात हो रही है तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं आज की प्रस्तुति स्थल ध्वन्यंकन पर आधारित, जो हम आपके लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, यानी वो भी प्रेजेंटेशन जो हम आपके लिए लेके आते हैं, उसके अंतर्गत आज का विषय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई दिवस, यानी कि आज है एमएसएमई डे। और इसी के ऊपर आज की प्रस्तुति लेकर आए हैं कपिल तिलहरी।
1: हाजिर है आपका दोस्त कपिल आज का सेगमेंट लोक स्वर लेकर। दोस्तों, हर युवा के मन में एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कलाकार, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सपने देखते हैं। ऐसे सपने जो रोजगार पैदा करते हैं, ऐसे सपने जो समाज और देश की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। यहीं से शुरू होती है उद्यमिता की यात्रा, और इसी यात्रा का सबसे मजबूत साथी बनता है एमएसएमई, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम।

कभी घर के एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ कारोबार आज कई परिवारों की रोजी रोटी का सहारा बन जाता है। किसी ने सिलाई कढ़ाई से शुरुआत की, किसी ने खाद्य प्रसंस्करण से, तो किसी ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर अपना उद्यम खड़ा किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बड़े थे। इन इरादों की कहानी सुनने के लिए हमने बात

0: की कुछ स्थानीय उद्यमियों से। क्या नाम है सर आपका?
1: मेरा नाम अनुपम सक्सेना है।
0: मैं देख पा रहा हूँ कि आप गद्दे का व्यापार कर रहे हैं, तरह तरह के गद्दे आपके पास से लगे हुए हैं और चादर वगैरह भी है, पर्दे हैं, तो ये आपने कैसे शुरू किया था?
1: मैंने ग्रेजुएशन 2002 में किया, उसके बाद एम यही रखा था कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि मेरा घर जो है मेन रोड पे था और यहाँ पर पूरी मैट्रेस मार्केट है, गद्दे की पूरी बाजार। तो मैंने शुरुआत 2002 में एक छोटी सी दुकान अपने पास थी, उसी दुकान से गद्दे का काम शुरू किया। और पहले बहुत छोटे से स्तर पे मैंने बहुत कम पूंजी से 25,000 से 30,000 रुपए लगाया था। अच्छा। और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए फिर मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए फिर मैंने सरकार की बहुत सहायता मिलती है, बहुत तरह से लोन हो जाता है, तो मैंने थोड़ा बिजनेस लोन लेके अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की। और आज समय बढ़ता गया और 20-22 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मैंने बिजनेस को अपना बढ़ाते हुए अपना क्वायर का, फोम का और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। और किसी भी काम करने के लिए शुरुआत से आपको लगन से काम करना पड़ता है कि आप लगन से काम करेंगे और आपने सोचेंगे अपने व्यापार को बढ़ाएं तो आपका व्यापार ऐसा नहीं कि बढ़ेगा नहीं।
0: हमारे साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये करती हैं लेदर का व्यापार और इनसे लेते हैं इनका परिचय। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रेरणा वर्मा है।
0: तो प्रेरणा जी, आपने अपना एमएसएमई का जो सफर था उसको शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से ली और शुरुआती चुनौतियाँ क्या थी?
2: ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप प्रेरणा पॉजिटिव चीजों से लेते हैं, नेगेटिव चीजों से लेते हैं। तो कई बार लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं होती हैं या आपको अच्छी नहीं लगती हैं, अनवांटेड चीजें आपको वेलकम करनी पड़ती हैं। तो इसी क्रम में मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिले जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं।
0: तो कैसे शुरू किया था सफर ये, और क्योंकि आज तो आपका व्यापार बहुत बड़ा हो चुका है और आप कई सारे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही हैं।
2: 2006 में चालू किया था मैंने जी। और 10x10 का रूम था और मात्र कुछ हजार रुपए हाथ में थे, 4,000 से 5,000 रुपए, जिससे मैंने काम स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में कोई फंड फाइनेंस की कोई सपोर्ट नहीं था जी। तो खैर, मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर था जो मैं ये कर रही हूँ, जो मेरी बेस्ट समझ है, बेस्ट नॉलेज है, उसको मैं यूटिलाइज करके, और अगर कहीं कुछ चीज होती है तो उसको रिव्यू करके दोबारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गिव अप करने से पहले। तो ये करते करते मुझे उसमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुआ, तो मैं और मोटिवेट हुई कि नहीं, मुझे इस पे करते रहना चाहिए। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन पे वर्कआउट करके मैं आगे बढ़ती गई हूँ
0: जी। अच्छा, महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई योजनाओं और सरकारी सहायता का कितना लाभ मिलता है आजकल?
2: आजकल तो चीजें बहुत इजी हो गई हैं। पहला कारण ये है कि चीजें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन होने की वजह से आसानी से चीजें विद इन अप्रोच है, आप जाइए, देखिए, फॉर्म भरिए, सर्टिफिकेट लीजिए और काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा रही है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि 45% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई के ही थ्रू आता है।
0: तो क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मोहम्मद मुसलेहुद्दीन है।
0: मुसलेहुद्दीन, किस चीज का व्यापार आप करते हैं?
3: हमारे पिताजी ने बाग लगाए थे, उसमें आम हर वैरायटी के होते थे, उसके बाद आम से छोटे छोटे आइटम बनाना करते थे। एक बार ख्याल आया कि हम मैंगो का पल्प निकाल के आम का और उसकी आइसक्रीम बनाएं।
0: अच्छा, तो मतलब आप मैंगो की आइसक्रीम बनाते हैं?
3: जी जी जी जी।
0: कितनी पूंजी से लगभग शुरू किया होगा ये काम?
3: ये हमने काम शुरू किया था 4,00,000 रुपए से, उसके बाद हमने एमएसएमई से लोन लिया 10,00,000 रुपए का।
0: ठीक है।
3: 10,00,000 रुपए जब हमने लिया तो हमारा काम और बढ़ गया। लखनऊ में और दिल्ली में जो मैंगो फेस्टिवल होते थे, कोई भी एग्जीबिशन होता था, उसमें लगाने लगे, तो अच्छा। आज काफी अच्छा रिस्पांस आया और हमारा काम बहुत अच्छा चलता गया। फिर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया, महामहिम गवर्नर मैम ने अवार्ड दिया, बाकी केंद्रीय कैबिनेट से हमें बहुत सारे अवार्ड मिले।
0: अच्छा, तो एमएसएमई ने आपकी सहायता की अच्छे से?
3: बहुत अच्छे से एमएसएमई ने, समय पर हमारी फाइल बनी, कोई हमें चार्जेस नहीं पड़े, और बैंक में गए, बैंक में तुरंत सैंक्शन हुआ। हमें मान के चलिए 5 दिन के अंदर हमारा लोन डिसबर्स हो गया, हम मशीन ले आए हाईटेक, और आज हमारा अगर हम

0: सारी मशीन का और मार्केट में जो हमारे आइस कार्ड घूम रहे हैं तो वैल्यू अगर बताएं तो आपको हमारे 70 से 80 लाख रुपए की सब मशीनरी है।
1: तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं प्रियंका मुकेश जी। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
2: धन्यवाद।
1: प्रियंका जी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका रुझान माटी कला की तरफ कैसे हुआ?
2: माटी कला पे रुझान मेरा ऐसे हुआ कि मेरे जो पिताजी हैं उनको ड्राइंग का बहुत शौक था, तो हम लोग को थोड़ा सा ड्राइंग की ओर करते थे कि मतलब अच्छी ड्राइंग बनाओ, अच्छा स्केच बनाओ। ये चीज एक अंदर से एक अलग भावना थी कि मिट्टी से हम लोग कुछ अच्छा बनाए। ये ऐसा लग रहा था कि मिट्टी जो एक फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती है, मतलब देखा जाए तो रॉ मटेरियल हमारे लिए बिल्कुल निःशुल्क के बराबर है, और तो अगर हम अपनी कला उसमें हम लगाते हैं, सिर्फ अपनी कला लगाते हैं, तो वो एक मूर्ति भी है वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस कैटेगरी की होती है, क्योंकि वो इतनी सुंदर बड़ी क्योंकि बड़ी मंदिरों में लगने लायक होती है, तो वो चीजें हमने भी करी।
1: ठीक है, व्यवसायिक रूप में कब शुरू किया?
2: 2001 से हम इसी कार्य में निरंतर, ये कार्य निरंतर बढ़ता गया, तो अब हम इस लेवल पे आ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट किया, वो उन्होंने जज किया कि आप इतने कार्य कर रही हैं तो इसको आप ग्लोबल मार्केट तक लेके जाइए। ग्लोबल मार्केट का मीन्स है जो आप बनाती हैं उसको आप ज्यादा बल्क में बनाइए, उस बल्क को बनाने में क्या आपको मुश्किलें आ रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है, वो सब हम उनसे साझा हमने की। तो ये 2-3 सालों से हमारा ये व्यवसाय बन गया है।
3: कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह।
1: एक समय था जब छोटे उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। सरकारी योजनाएं, बैंकिंग सुविधाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को नई राह दिखा रहे हैं। इन प्रयासों का लाभ कैसे मिल रहा है और नए उद्यमियों के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं, इस बारे में हमने बात की जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अभिजीत गौतम जी से।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर हम ये पूछना चाहेंगे कि आज के समय में एमएसएमई क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है?
4: एमएसएमई क्षेत्र जो कि है रोजगार का एक सबसे बड़ा साधन है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग रोजगार इससे एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जनपद लखनऊ में लगभग 31,000 एमएसएमई की इकाइयाँ हैं, जिससे कि लगभग 92,000 लोग जो एमएसएमई इकाइयों में रोजगार कर रहे हैं। तो ये एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है और फ्यूचर भी एमएसएमई में ही है। जिस भी कंट्री ने ग्रोथ की है, अगर आप देखें चाइना, जापान, सिंगापुर, वो सब एमएसएमई की ग्रोथ से ही आगे बढ़े हैं। वो छोटी इकाइयाँ होती हैं, शुरू में छोटी होती हैं, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो बड़ी होती जाती हैं। इसलिए सरकार का और विभाग का भी हमारा जोर ये रहता है कि छोटी इकाइयों को ज़्यादा लाभ दिया जाए, जिससे कि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें और वो बड़ी इकाइयों में तब्दील हो सकें और रोजगार के नए अवसर और लोगों को प्रदान कर सकें।
1: सर सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं?
4: सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं विभिन्न विभिन्न माध्यम के। कभी हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं सरकार द्वारा, और कभी कभी स्किलिंग सपोर्ट भी दिया जाता है, मार्केट डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं। अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात बोलें तो सबसे लाभदायक योजना सीएम युवा योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लान है इसमें कि हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए का बिना ब्याज बिना गारंटी का लोन मिले। तो सीएम युवा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे कोई भी उद्यमी अपना छोटा सा व्यापार स्टार्ट कर सकता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेड इसमें शामिल हैं करने के लिए, और हमारी सीएम युवा की वेबसाइट पे उनको सारी शिक्षा मिलती है कैसे उद्यम स्टार्ट किया जाता है, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है उस पे लोन पाने के लिए। और योजनाएं हमारी ODOP, जैसे लखनऊ में चिकनकारी ODOP प्रोडक्ट है, तो उसमें ODOP वित्त पोषण योजना है, जिसमें कि आपको ऋण मिलता है, उसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। इसी तरीके से ODOP टूलकिट और ट्रेनिंग है, जिसमें कि चिकनकारी और जरी दर्जोजी की हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, फिर उनको उसी प्रकार से टूलकिट दी जाती है। जो सक्सेसफुल ट्रेन करते हैं उनको हम टूलकिट ट्रेनिंग देते हैं। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, जिसमें कि जो पारंपरिक लोग जुड़े हुए हैं, इन सबको हम लोग 10 दिन की आवासीय ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद उसी क्षेत्र की हम लोग उसकी टूलकिट भी उत्तम गुणवत्ता की टूलकिट प्रोवाइड कराई जाती है। इसी तरीके से हमारी जो बड़ी इकाइयाँ हैं उसमें अगर कोई उनको नई मशीन लेनी है, उसके लिए भी हम लोग रिम्बर्स करते हैं, जिसको टेक्निकल अपग्रेडेशन कहते हैं। आज के बाजार के समय में हर दिन नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा इस बाजार में, तो उसके लिए भी हम लोग 5 लाख रुपए तक का अनुदान देते हैं नई मशीन लेने के लिए,

0: और हमारी है एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग कैपिटल और उनका प्लांट और मशीनरी में जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसका कुछ परसेंटेज हम लोग रिएम्बर्स करते हैं नई इकाइयों के लिए भी। तो हमारी विभिन्न तरीके से बहुत सारी तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश रहती है कि जो भी एंटरप्रेन्योर हो उसको कहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ हम लोगों को लाभ पहुँचाते हैं।
1: अच्छा, जो युवा है जो नया बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहे हैं, एमएसएमई से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और उसके लिए आपका सुझाव क्या है?
0: देखिए, युवाओं के सामने चुनौतियां तो बहुत आती हैं शुरू में। कोई भी युवा को सबसे पहले अगर मन से ठान ले कि मुझे बिजनेस करना है, वो उसके मन के अंदर अगर स्ट्रांग इच्छा शक्ति है तो वो बिजनेस कर लेगा। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर हमारा जिला उद्योग केंद्र है, उसकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि इस स्कीम के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें, और सरकार की ये योजना है इसमें आप अपना नया उद्यम और व्यवसाय बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से युवाओं को और ज़रूरत पड़ती है कि उनको मार्केट की बहुत, वो अपना सामान बना तो लें तो बेचेंगे कैसे। इसी तरीके सरकार ने बहुत सारे विभिन्न मेले में प्रोत्साहन के लिए रखे हुए हैं, बहुत सारे मेले नोटिफाइड है हमारे विभाग के माध्यम से, जैसे प्रगति मैदान में लगता है मेला हमारा, और बहुत जगह मेले लगते हैं, विभिन्न विभिन्न शहरों में लगते हैं, देश में लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेले लगते हैं। उन सब में हम लोग प्रोत्साहन के लिए उनको प्रोत्साहन जो रिएम्बर्समेंट होता है, आने जाने का किराया लाभ भाड़ा होता है वो रिएम्बर्स करते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है उसका किराया रिएम्बर्स करते हैं। स्टॉल का चार्जेस है वो भी कुछ प्रतिशत तक हम लोग उसको रिएम्बर्स करते हैं, जिससे कि वो प्रोत्साहित हों और वहाँ जाके लगाएं और उनका प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटिव रहे, उनके ज़्यादा खर्चा ना बैठे उस पर। तो सरकार हर माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश करती है।
1: उपायुक्त महोदय की बातों से स्पष्ट है कि आज अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही जानकारी, दृढ़ निश्चय और मेहनत की, क्योंकि हर बड़ा उद्योग कभी एक छोटे विचार से ही शुरू हुआ था। हर सफल उद्यमी कभी एक सपने देखने वाला युवा ही था।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कपिल तिलहरी जी द्वारा तैयार किया गया ये कार्यक्रम, जिसका विषय था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME। और अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ अमृत अवसरों के बारे में, यानी कि ये वो अवसर हैं जिनका बेनिफिट अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं और अच्छा सा रोज़गार आपको मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है नौकरी, ये सुनिए। सबसे पहले नोट कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट sbi.bank.in। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1500 पद यानी करीब 1500 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसमें परिवीक्षाधीन अधिकारी भी इंक्लूडेड हैं, मतलब बहुत सारे पद हैं। आप देख सकते हैं कि आप किस पद के लिए आवेदन करेंगे। अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। आयु सीमा में कम से कम आपकी जो एज है, आयु है, वो 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इस वेबसाइट पे जाके आप बाकी डिटेल्स नोट कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार फिर से सुनिए sbi.bank.in। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसरो में भी काम कर सकते हैं। इसरो में काम करने के लिए ISTRC में मौके हैं। करीब 95 पद हैं जहां पर कि आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और ये अप्रेंटिसशिप है जहां पे की जा सकती है इसरो में। अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। योग्यताएं में क्या क्या आप के पास होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, BTEC है और अन्य पात्रताएँ हैं तो आप इसरो में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट नोट कीजिए, वेबसाइट है istrac.gov.in। फिर से बता देती हूँ istrac.gov.in। अब ये जानकारी हमने तो आपको दे दी, अब आप इसका कितना बेनिफिट उठाते हैं ये तो आपके ऊपर है। खैर देखिए, ऐसा है ना कि कई बार ये कहा जाता है भाई लाइफ जो है बहुत अनस्टेबल है, बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, पता नहीं क्या चीज़ खटर पटर होती रहती है और उसी खटर पटर में हमें अपने रास्तों को ठीक करना पड़ता है, यानी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके सारे पत्थरों को हटाना पड़ता है और अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ता है।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिसोर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी।

दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम नई उड़ान में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना। अच्छा चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, बताऊँगी कि कुछ अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। अब एक्चुअली है क्या कि गर्मियाँ जा रही हैं, मतलब हम सोच तो सकते ही हैं ना कि अब गर्मी जाएगी और उसके बाद बारिश होगी और अच्छा मौसम हो जाएगा, हमें 40-45 डिग्री टेम्परेचर में नहीं रहना पड़ेगा, दिन भर तपना नहीं पड़ेगा और बारिश के साथ कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग भी आती है और एक जिम्मेदारी भी आती है पौधे लगाने की, पेड़ लगाने की, है ना। अब ये काम करने के लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें इस काम को एक महायज्ञ के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी क्रम में करीब 35 करोड़ पौधे आगे आने वाले समय में लगाए जाने की योजना है ना। अच्छी बात। अब इसके लिए प्रत्येक ज़िले में 150 पौधे लगाकर वंदे मातरम वाटिका बनाई जाएगी, एक अच्छी बात है। जो भी एक्सप्रेस वेज हैं वहाँ पर करीब 593 किलोमीटर की जो लंबी दूरी है उसमें 500 हेक्टेयर की ज़मीन पर करीब करीब 5.5 लाख पौधे लगाने की बात कही जा रही है। मथुरा में 487 हेक्टेयर में 36 पौराणिक वनों का पुनरुद्धार किए जाने की बात की जा रही है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात ये है कि जब ये पौधे लग जाएं तो इन्हें सूखने से रोका जाए, ऐसा ना हो कि पौधे लग जाएं कागज़ों पर, हकीकत में भी लग जाएं और उसके बाद फिर वो थोड़े समय के बाद सूख जाएं। तो ये ध्यान तो हमें भी रखना ही पड़ेगा, है बात सही कि नहीं। अगर हमें गर्मी से बचना है तो हमें ये चीज़ें करनी होगी। अब ये एक पॉजिटिव नोट की बात है और पॉजिटिविटी हमारे साथ रहनी चाहिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ अब आपकी रेडियो दोस्त रीना आपसे लेती है इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना सुनिए। रविवार 28 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य आकाशवाणी के सुनिए कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। इसमें श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी से सुमन एस पांडे और सुरेंद्र राजश्री की बातचीत तो सुनना ना भूलिए। रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर रविवार 28 जून 2026 को सुनिए कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें जानिए लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी मुख्य स्वास्थ्य की समस्याएं। इस विषय में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल KGMU। तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान।

0: विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए

0: जीवन में विज्ञान की भूमिका कैसे बदल रही है, तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: पंचो जय हिंद।
1: कृष्णा भैया,
0: आकांक्षा,
1: आजकल गर्मी बहुत हो रही है,
0: बहुत तेज हो रही है,
1: और गर्मी और उमस के खातिर सब जने जो है परेशान हैं, वो भगवान से आस लगा रहे हैं कि थोड़ी बहुत बरखा करें तो गर्मी से राहत मिले। और कईयो पंच भाई का जो है काम धंधा बगैर जो है बरखा के खातिर जो है रुका पड़ा है। और मुला अब अपने देश में कामे धंधा की कोई कमी तो है नहीं ना, और अब सब जने कोने न कोने छोटे या वो बड़े स्तर पर रोजगार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। देखो गर्मी तो प्रचंड है, इतनी गर्मी है, उमस इतनी है कि लागत है कि कहूँ काम करने में जीवना लागत है, कहूँ बाहर निकलो तो ये लागत है कि भैया इतना ढांक तोप के निकलो कि कुछ कहे कि नहीं। और जिसे काम बता रहे हो तो जिके भाई देखो काम करें के है, सबके कराए के है, पेट सबके पास है, तो खर्चा सबके पास है, तो तंदूर रोटी की व्यवस्था सब करा करती भाई। देखो बड़ा काम हो या छोटा काम, काम तो काम हुआ करता है।
1: बिल्कुल भैया, काम तो काम हुआ करते हैं। आज है 27 जून और आज के दिन हर साल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनावा जाता है। यही का जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किन गवाह है। इसका मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लक्ष्य और रोजगार के सृजन का बढ़ावा देकर अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत किया जाए और बड़े स्तर पर रोजगार और उद्योगन के यहाँ पहचाना जाए और उनका बढ़ावा दे के रोजगार पावा जाए।
0: बहुत अच्छी बात भाई। देखो जौन बा सही बात है कि बिना उद्योग धंधा का अपन देश हो, यू कह लो कि पूरा विश्व कहाँ से चली। एक आवश्यकता सबके होता है हर चीज़ के लिए, तो हर चीज़ के जौन बा अपने घर में गांव में वो बन ही ना सकत, तो भाई देखो का निर्माण जौन बा फैक्ट्री में कर कल कारखाना में होता, तो चाहे बड़ा उद्योग हो या छोटा उद्योग हो, जिसे आप बता रहे हो आज जौन बा तो लघु और मध्यम उद्योग दिवस है, तो अच्छी बात है भाई। देखो हम पंच आगे बढ़ के अपन उद्योग धंधा के आगे बढ़ाई और चार पैसा अपन मुनाफा कमाए।
1: बिल्कुल भैया, चार पैसा कमावा जाए और मुनाफा कमावा जाए। यही का जो है मनावे के पीछे कईयो महत्व और कईयो लाभ हैं। पहल महत्व यूँ है कि भैया आर्थिक विकास में यूँ मदद करते हैं। यही स्थानीय स्तर पर घरेलू जो है सकल उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। यही रोजगार का निर्माण होते हैं। यही

0: लाखों लोगन के यहाँ रोजगार यहाँ जो है बढ़ोतरी होते है और एक ग्रामीण अर्ध शहरी और जो है शहरी क्षेत्र में यहाँ लागू किन जात है तो अपनी आजीविका ये ते जो है पाई जा सकते है।
1: बिल्कुल भाई, देखो अपने गाँवन में पहले लघु उद्योग ये कहल कि जौन बा हाथ से चरखा सब बुनत रहें, जौन बा कुम्हारकारी रही, बढ़ई गिरी, बहुत ऐसा काम रहें कि जौन एक उद्योग का दर्जा ना दिया गया। लेकिन अब सरकार आगे बढ़ के सबके उद्योग का दर्जा देत है, प्रशिक्षण देत है। भाई देखो, चार पैसा सब उसे कमाती, आगे बढ़त ही, और सबका आवश्यकता का पूर्ति होता है। तो अपने गाँवन का विकास भी देखो कि मिलक वारा था कि पहले देखो अपने गाँवन में जहाँ डोले के लिए सड़क ना रही, पगडंडी रही, खड़ंजा रहा, आज देखो देखा कि मिलता है कि हर गांव में लगभग कहूँ ना आए तो खड़ंजा तो लगिन गवा है, अब पक्की सड़क भी कहूँ कहूँ हो गई है। तो भाई देखो जैसन विकास है वैसे जो अपन रफ्तार भी है। तो अपने यहाँ गाँवन में कैसे विकास होता, का विकास होता, देखो ऐसी कुछ वार्ता है।
0: हाँ भैया, हम अपने कार्यक्रम ऑनलाइन है एक वार्ता जिसका यूँ है विषय है ग्रामीण भारत की विकास यात्रा। एक वार्ताकार हैं प्रेम शंकर अवस्थी भैया, तो आई वार्ता का यहाँ सुना जाए।
2: भारत को गांवों का देश कहा जाता है। आज भी देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसके गांव विकसित हों, किसान समृद्ध हो और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। पिछले एक दशक में ग्रामीण भारत ने विकास की नई नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंटरनेट, कृषि तकनीक, सौर ऊर्जा और स्टार्टअप संस्कृति ने गांव की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाले गांव आज डिजिटल सेवाओं और आधुनिक तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी जरूरत आधारभूत संरचना होती है। पहले गाँवों में सड़क, बिजली और संचार जैसी सुविधाओं की कमी विकास की राह में बाधा बनती थी। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी योजनाओं ने हजारों गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ दिया है। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं में भी सुधार देखने को मिला है। बिजली की उपलब्धता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई ऐसे गांव जो वर्षों तक अंधेरे में डूबे रहते थे अब 24 घंटे बिजली की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इससे घरेलू जीवन के साथ साथ छोटे उद्योगों और व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला है। डिजिटल क्रांति ने गांवों को दुनिया से जोड़ा। एक समय था जब इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं केवल शहरों तक सीमित थी। आज ग्रामीण भारत भी तेजी से डिजिटल हो रहा है। स्मार्टफोन और सस्ती इंटरनेट सेवाओं ने गांवों को वैश्विक दुनिया से जोड़ दिया है। अब किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम की जानकारी, फसल सलाह और बाजार भाव प्राप्त कर रहे हैं। ई गवर्नेंस सेवाओं ने सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी काफ़ी हद तक कम कर दी है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। गाँव में रहने वाले अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं। कृषि में तकनीक का बढ़ता उपयोग, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में खेती के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आधुनिक मशीनों, ड्रोन तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती के तरीकों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की है। किसान अब ड्रोन की सहायता से फसलों पर दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। इससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। मौसम पूर्वानुमान

और मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधाओं ने किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है। देश कई कई राज्यों में किसान समूह बनाकर सामूहिक खेती और विपणन का कार्य भी कर रहे हैं। बिजली की बढ़ती मांग और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत को देखते हुए गाँव में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ा है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली बिलों में कमी आ रही है। कई गाँवों में सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइटें, सिंचाई पंप और सामुदायिक भवन स्थापित किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़े हैं। किसानों के लिए सोलर पंप वरदान साबित हो रहे हैं। अंत्योदय के प्रणेता युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का नया भारत बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों का ही परिणाम रहा है कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में निरंतर प्रगतिशील है। विकास के हर आयाम धरातल से लेकर अंतरिक्ष तक नए नए कीर्तिमान आए दिन स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की ही देन है कि स्टार्टअप की दुनिया में स्टार्टअप संस्कृति का तेजी से विस्तार हुआ है। अब गांवों के युवा भी नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि तकनीक, डेयरी तकनीक, खाद प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, ई कॉमर्स और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। ये स्टार्टअप न केवल स्थानीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। अब युवा पढ़ाई पूरा करने के बाद महानगरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने गांवों में ही व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूहों ने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं आज छोटे छोटे उद्योग, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, खाद प्रसंस्करण और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण की सुविधा मिल रही है। इससे वे आज विश्वास के साथ अपने व्यवसाय का संचालन कर रही हैं। यहाँ तक युद्ध से लेकर अंतरिक्ष तक अपने अदम्य साहस का लोहा मनवा रही हैं। शिक्षा समाज के विकास का मूलाधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो रही है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं में देशव्यापी सुधार हुआ है। एम्स जैसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री की ही देन है कि कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों से देश में बेरोजगारी समाप्त की जा रही है। कौशल विकास से युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ ही स्वरोजगार भी शुरू कर रहे हैं। इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का समग्र विकास विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता विकसित उत्तर प्रदेश ही आधारशिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान

0: का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, जो ग्रामीण भारत की विकास यात्रा की नई कहानी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नए 9 मेडिकल कॉलेज, 5 नए एयरपोर्ट, सिंचाई एवं जल संसाधनों की सुविधाएं, लंबी दूरी के 5 एक्सप्रेसवे, अभूतपूर्व विकास को धरातल पर लाकर जनमानस के बीच सड़क से आकाश तक उत्पन्न सुविधाएं उत्साह का माहौल पैदा किए हुए हैं। जिन जन सुविधाओं के लिए ग्रामीण वर्षों से परेशान दिख रहे थे, आज मूलभूत सुविधाएं उनके दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को ही ले लीजिए, जिसकी कभी भीड़ों में शुमार थी, आज बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे ने आवागमन को सुगम बनाकर समय को सीमा में बांध रहा है। सदैव प्यासा रहने वाला यह क्षेत्र हर घर नल योजना से दूसरों की प्यास बुझा रहा है। ग्रामीण भारत का किसान आज वे सरकार की आधुनिक तकनीक से भारी उत्पादकता में सोना चांदी पैदा करने में लगे हैं। किसान सम्मान निधि से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण भारत की विकास यात्रा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। बदलती तकनीक, बेहतर सुविधाएं और बढ़ते अवसर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। यदि सरकार, समाज और ग्रामीण समुदाय मिलकर इस प्रकार प्रयत्नशील रहें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के गांव विकास और समृद्धि के नए प्रतीक बनकर विश्व पटल पर नए नए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे।
1: कृष्णम भैया,
2: ग्रामीण
1: भारत की विकास यात्रा विषय पर प्रेम शंकर अवस्थी भैया, गांवन क्या जो है कोने कोने क्षेत्रन में विकास हो रहा है और गांवन के विकास के खातिर जोनी जोनी योजनाएं चलाई जा रही हैं और वे योजनान के माध्यम से यहाँ गांवन क्या कितना विकास हो रहा है, ये विषय पर जो है विस्तार से यहाँ बताएं। एक ही खातिर प्रेम शंकर अवस्थी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भाई। नहीं देखो, एक बात हम पंचे गौना ही सुना जाए, फिर एक बात खेती किसानी के बहुत चर्चा हुई अच्छी सी जोन बा, एक भेंट वार्ता सुनाई जाए पंच भैयन के, मौसम की जानकारी दी जाए, लेकिन आओ एक खेमटा गीत सुना जाए कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के अवसर में।
1: हाँ भैया।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिसोर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
1: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
0: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
2: कृष्णा भैया,
3: हाँ,
2: अपने खेती पाती की बात कर ली जाए।
3: बिल्कुल,
2: अपन इतने समय जो है गर्मी तो बहुत हो ही रही है और यूं अपन पंच भाई हैं, भी धान की रुपाई की तैयारी कर रहे हैं, बोला बरखा नहीं हो रही है और अपन पंच भाई बरखा क्या इंतजार कर रहे हैं।
3: बिल्कुल भाई, देखो जौन बा समय बरखा का समय है, बरखा कहूँ कहूँ छुटपुट दिखाई पड़त है। अपने लखनऊ के आसपास तो कहूँ बरखा दिखाई नहीं पड़त है, कल हल्का फुल्का बूंदा बांदी भय रहे, लेकिन ऐसे अपन खेती पाती काम को सदे न। मैं देखो अब जौन बा अपन जौन बा धान का बेहन तैयार है और हम पंच तैयारी कही के बैठे हैं, अभी देख रहे हैं कि कैसे बरखा हो अपन आगे काम आगे बढ़े।
2: बिल्कुल भैया, और अपन जो है देश है, अपन जो पंच भाई हैं वे काफ़ी विकास कर चुके हैं, तो अपन जो खेती पाती है बखारी जो खाली जो है बरखा के भरोसे नहीं है, अपने पंच भाई के पास जिनके पास पर्याप्त संसाधन है पानी के, वे अपने ख्यातन में यहाँ पानी भर रहे हैं ताकि वे ब्याड लगा सकें, और कईयों पंच भाई हैं जिनके पास पानी के संसाधन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, वे अपने ख्यातन के जो है वो काम रोके नहीं ना, वे अपने ख्यातन के जो है जुताई करवा देन है, और जो है जो माटी है वह जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ जो है ऑक्सीजन मिल रहा है वही का, जो घास फूस रही कीड़ा पतंगा रहे हैं वह जो है वे खत्म हो गए हैं।
3: बिल्कुल भाई, देखो गर्मी की जुताई कितनी फायदा करत था, लेकिन अब सब पंच भैया जुताई कर दे हैं ना, अपन माटी एकदम बनाए दे हैं, हम तो अपन जौन बा घूरा वाली खाद भी डाल के जुताई कराए दे है कि एकदम माटी में हमारा खाद मिल गया है, बस अब तैयारी तो यही है कि भाई जौन बा बरखा हो और मेड़बंदी कही के जौन अपन जौन बा धान का रोपनी करी। अब बरखा को देख रहे हैं, लेकिन जौन बा भाई देखो जहाँ संसाधन है, जैसे जहाँ नहरिया है, पानी की व्यवस्था है, जौन पंच भैया का ट्यूबवेल है, तो जौन बा अपन रोपनी कर रहे हैं,

0: लेकिन हम देखा थे जौन पंच भैया और उपनी कई भी दे रहे हैं, वो पानी जौन बस दिन भरे में ऐसे उबल जावा करत है ना कि लागत है कि इसे अधान हो गया है। तो कहे कि वो मतलब है कि बहुत फायदा ना ही है, लेकिन ये है कि चलो अपन रोपनी करे रहो, अपन बेड़ चली रही, तो जब बरखा हुई तो फसल आगे निकल जाएगी।
1: बिल्कुल भैया, हम लोग अपने कर्तव्य तो यहाँ कबो नहीं चूके थे, अपन कर्तव्य हम लोगन क्या करब जो है नैतिक जिम्मेदारी है, तो एक हम लोग निभा रहे हैं और बरखा अपन जो है कर्तव्य निभा रहे हैं, वे जब बरसी हैं तो बरसी हैं। और जो अपन भाई पंच भाई के जो जिंदगी होती है वह जो है खाली खेती ही पर निर्भर नहीं रहा थे, जो हम लोगों की जिंदगी में यह जो हरहा गुरु रहा थे उन्होंने क्या जो है बहुत अहम भूमिका होती है। और अगर अहम भूमिका होते तो हम लोगों के जिम्मेदारी होते कि हम लोग उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य के यहाँ ठीक राखी, उनके जो है कब बीमार हैं कब आजार हैं भी बीमार न होए पावें, एक ही खातिर उनके टीकाकरण करवाई।
0: बिल्कुल, देखो समय समय देखा भाई, देखो अपने परिवार का हम तो यू मानित है कि एक सदस्य हुआ हैं, अपने दरवाजे पर अगर खड़े हैं तो जौन बा हमार पंचन का पूरा दायित्व होता। और दायित्व का हमार तो गैया है कि हमें दूर से देखा करत है, तो अपन मुड़ी हिला विलागा करत है, कोई पहचान जाता है, तो उनकर पूरी जिम्मेदारी हमारे पंचन को होता है। जैसे आप बता रहे हो कि गर्मी ज़्यादा है और उनको जो समय टीकाकरण का समय है, तो समय समय से देख भैया टीकाकरण कराओ। अपने यहाँ जो पशु चिकित्सा केंद्र होता है वहाँ जाके बताओ कि भैया हमारे गैया भैंसी की दिक्कत है, और अगर दिक्कत ना है तब वो टीकाकरण जब होता तो समय समय जरूर कराओ।
1: बिल्कुल भैया, कईयों ऐसी खतरनाक बीमारी होती हैं संक्रामक बीमारी, जैसे खुरपका मुँहपका गलघोंटो लंगरी बुखार, ये जो है जो परेशानी रहती हैं जानवर के यहाँ ना हो पावे, ये के खाते जो है हम लोग उनका पशु चिकित्सालय जाकर यहाँ उनका अपन टीकाकरण समय रहत करवावे चाहिए। और भैया टीका लगावे के संबंधी जो है कईयों जानकारी होती हैं, बोला कुछ जो है जानकारी है, जैसे गलघोंटू के जो टीका होते हैं या बीमारी जानवर में यहाँ सांस लेते संबंधित जो है परेशानी पैदा करती है, और ये क्या जो टीका होते हैं साल भर में एक बार लगावा जाता है, तो इका हम लोग जो है खासकर मई और जून के महीना में यहाँ लगवावा जाते, तो इका हम लोग जो है उनका अपने जानवर के यहाँ जरूर लगवाई। और एक होते हैं लंगरी बुखार, ये खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, ये थे जो है जानवर के यहाँ चले में यहाँ काफ़ी समस्या होते हैं और बुखार जो है काफ़ी आवत है, तो ये क्या जी टीका जो है मानसून आवे थे पहले यानी इतने समय अपने जानवर के यहाँ ये लंगरी बुखार का जो है टीकाकरण करवावा जा सकते हैं।
0: भाई देखो सरकार तमाम योजना चलावत है, तरह तरह की योजना हम पंचन के लिए चलावा करा था, तो अपने पशु चिकित्सा विभाग से भी तरह योजना चलाई जाता है, तो भाई देखो पता करत रहो कि इस समय कौन टीका लगाया जाता है। और हम तो देखा करी था कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब खुद ही आवा करा थे, वो बतावा थे भैया देखो यू टीका लागत है गांव में जौन बा अपन अपन लगवा लो अपने पशुओं का, तो एक जौन बा नामांकन करावा पड़ा था तो करे था सबका टीकाकरण हो जाता है। तो भाई देखो सुरक्षा ही सबसे बड़ी सावधानी है, तो सुरक्षा रखो, अपन सुरक्षित रहो, अपने पशुओं के सुरक्षित रखे रहो, और अपन गृहस्थी भी सुरक्षित रखे रहो।
1: बिल्कुल भैया, गृहस्थी सुरक्षित रही और टीकाकरण करवावे तो पहले भैया कईयों जो है बातें होती जी का ध्यान दे बहुत ज़रूरी होते है, अगर पशु बीमार है कोनी विकास समस्या है तो टीकाकरण बिल्कुल न करवावक चाहिए। और मादा जो पशु होती हैं जो अगर वे गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में यहाँ हैं तो उनका टीकाकरण हम लोग उनके यहाँ न करवावक चाहिए। और टीका लगवावे के पहले 10-15 दिन पहले अपने जो है पशु के यहाँ जो पेट के जो कीड़ा संबंधी जो बीमारी वो होती है दवा होती है वे का हम लोग उनके यहाँ देख चाहिए, यानी कृमि नाशक जो दवा होती है वे का हम लोग टीका लगवावे है अगर तो वे के 10-15 दिन पहले हम लोग उनका वे का देख चाहिए। और टीका जो राहत है वो निश्चित तापमान पर निर्धारित तापमान पर जो है रखा जाते हैं वह दवा रखी जाते है, तो वो यो निर्धारित कह लेक चाहिए कि वे के जो तापमान है वो बरकरार रहा है कि नहीं रहा है, और तभी वे टीका के यहाँ अपने पशु के यहाँ लगवावे चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, देखो एक ये महत्वपूर्ण अभियान है समय सरकार चला रही खेत बचाओ अभियान, तो खेत बचाओ अभियान में भाई देखो हम पंचन के बहुत ज़्यादा सहभागिता दे चाहे काहे क्योंकि जौन बा अपन माटी या समय जौन रासायनिक खाद से वो करा रही है। वैज्ञानिक लोग बतावा कर रहे थे कि भैया देखो जितना हम पंच रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं या जौन बा जैविक की तरफ ना जाते हैं या जैविक तरफ हम पंच का उपयोग कर रहे हैं, तो भाई देखो अपन माटी एक न एक दिन जौन बा पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई है, ये कह लो कि जवाब दे जाए। तो भाई अपन खेत बचाओ अभियान में हम पंचन के अपन माटी की जांच कराओ चाहे, और जैविक खाद का उपयोग करे चाहे, जैविक कीटनाशक का उपयोग करे चाहे, तो अपन माटी के जांच जरूर कराओ, जिससे ये पता चले कि हमारे खेत का स्वास्थ्य कैसे

0: चल है
1: खेत का स्वास्थ्य कैसे और अपन खेत भविष्य में यहाँ बचा रहा है।
0: बिल्कुल, तो देखो अपने खेती पाती में हम पंच बहुत काम करा करी था कि जौन बा भाई देखो अपने खेत है तो कुछ पंच भैया बागवानी करा कर थी खेती के साथ साथ, तो जौन पंच भैया बागवानी करा थी वो कैसे सफलता को प्राप्त कर थी बागवानी थे, तो ऐसे आज देखो अपने यहाँ जौन बा सफलता की कहानी में केला अमरूद और तरबूज उत्पादन पे आए हैं हरीश कुमार वर्मा भैया। तो ये बता रहे हैं कि हम कैसे केला तरबूज और जौन बा अमरूद को खेती करके सफल किसान भय है, तो आओ इनका अनुभव सुना जाए। अब बत कही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: हाँ सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे सफल बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के रामपुरवा गांव के केला अमरूद और तरबूज उत्पादन से जुड़े हरीश कुमार वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार, किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय मेरे पास केला है, तरबूज अभी लगभग 15 दिन पहले ख़त्म हो चुका है, और ताइवान पिंक अमरूद है।
2: रकबा कितना कितना है?
3: मेरे पास 5 एकड़ केला है, 4 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद है, और 3 एकड़ मेरे पास तरबूज था।
2: तो अमरूद से शुरुआत करें कि कहाँ से मन में जगा कि आप तो केला उत्पादन से हमेशा से जुड़े रहे
3: जी,
2: ताइवान पिंक अमरूद की तरफ रुझान कैसे हुई?
3: इसलिए हुआ क्योंकि केला में लगातार कुछ दिन से करते हुए मिट्टी में कुछ ऐसे फंगस डेवलप हो गया जिनसे केले के पौधों को नुकसान हो रहा था, फसल को नुकसान हो रहा था, तो केला के विकल्प में मुझे अन्य कोई फसल चाहिए थी। तमाम इधर उधर विचार करने के बाद चूंकि धान गेहूँ में हमको उतना उत्पादन या प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे केला में मिल रहा था, तो उसके विकल्प स्वरूप मैंने देखा कि ताइवान पिंक की आज बाजार में मांग बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड है, रेट भी अच्छा है, तो मैंने ताइवान पिंक अमरूद लगा दिया।
2: तो आपने लगाया कब?
3: ये हमने, मेरे पास 4 एकड़ अमरूद है जिसका 2 एकड़ मैंने 2023 में लगाया था। 2023 में लगाने के 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में उसकी मैंने बिक्री शुरू करी, उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने नया 2 एकड़ और लगाया।
2: यानी लगभग 4 एकड़?
3: 4 एकड़ जी।
2: और केला?
3: केला मेरे पास 5 एकड़ है, क्योंकि मैं पहले तो केला का कुछ बड़ा काम करता था लेकिन जमीन में वही फंगस के कारण क्षेत्रफल काफ़ी कम कर दिया, और ये जो 5 एकड़ केला भी मेरे पास है वो नई जमीन में है, यानी कि जहाँ पर हमने इसके पहले केला का उत्पादन नहीं करा था।
2: यानी फफूंद जनित बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है
3: जी।
2: हरीश भैया, केला उत्पादन में जो 5 एकड़ है आपका, उसकी रोपाई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फलत की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: केला रोपण के पहले गर्मियों में जब हमको धूप मिलती है, गर्मी होती है, बहुत ही ध्यान देना होता है कि जितनी गहरी और अच्छी जुताई हम करेंगे उतना मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा। जहाँ थोड़ा सा वातावरण में नमी आती है, यानी कि वो मौसम करीब जून का होता है, तो जून में पौधे को, जून से मध्य जुलाई तक पौधे को रोपित कर देना होता है। उस बारिश के समय, जाड़ा आने के पहले लगभग 4 महीने का जो समय होता है उसमें जितनी अच्छी हम देख रेख कर लेंगे, चूँकि डॉक्टर साहब जाड़े में मौसम का दुष्प्रभाव, जाड़ा के कारण, पाला के कारण हमारे केला का विकास सही नहीं होता है, तो इसके लिए जाड़ा शुरुआत होने के पहले हम अपने पौधे को 3-4 फीट का बढ़ा लें, और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब अच्छी जल निकास व्यवस्था हो, समय समय पर उसको जो भी फर्टिलाइजर देना हो, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, तब उसकी हम ऐसा 4 फीट का वो कर सकते हैं।
2: अभी आपकी फसल किस हालत में है केला?
3: लगभग 70% फूल आ चुका है, 30% में अगले 10-15 दिन में फूल आ जाएगा।
2: यानी आपकी अगेती फसल है?
3: हाँ, थोड़ा सा अगेती है, और इसकी कटाई लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगी।
2: उस समय भाव अच्छा रहेगा?
3: बहुत ज्यादा संभावना होती कि शुरुआत में लाभ अच्छा मिले।
2: और अमरूद में कौन कौन सी बारीकी आपने किया?
3: अमरूद में अभी 1-2 साल से फ्रूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, थोड़ा सा होता था, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा हुआ, मौसम का दुष्प्रभाव हो सकता है, तो फ्रूट फ्लाई की बहुत समस्या आ गई, तो इसके लिए अब अमरूद के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उसकी बैगिंग की जाए, फल

0: की बैगिंग की जाए।
1: तो आप अमरूद की बैगिंग की तैयारी में हैं?
0: जी, मेरी बैगिंग मैं राजस्थान से मंगवा चुका हूँ, मेरी बैगिंग मेरे घर पे आ गई है। अभी जैसे ही मेरा नींबू के आकार का जो फल होगा तो उसकी बैगिंग हम शुरू करवा देंगे।
1: अमरूद की बागवानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसकी रोपाई से लेकर के पूरे साल?
0: जी, अमरूद की फसल में ये जो ताइवान पिंक प्रजाति है, ये चूंकि घना लगता है, 8x10 की हमारी दूरी है, और इन जो थोड़ा सा दूसरी प्रवृत्ति का होता है, मतलब जो हमारे जो पहले के पौधे होते थे उनकी अपेक्षा इसको नमी सब कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, तो पर्याप्त नमी देना होता है कभी भी। और जब फूल, चूंकि ये ऐसी प्रजाति कि इसमें साल भर फूल से फल बनते रहते हैं,
1: जी
0: थोड़ा सा साल भर में दो समय ऐसा होता है कि तब थोड़ी सी हैवी फ्लावरिंग होती है या फ्रूट बनता है, वैसे फल मिलेंगे पूरा साल। तो उस समय जिस समय फूल से फल बन रहा हो या फल का विकास हो रहा हो, उस समय हमारे पौधे को नमी का बहुत ही ध्यान देना जरूरी
1: और
0: होता है।
1: खुराक भी?
0: जी, फर्टिलाइजर खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हमारा फूल से फल बन रहा हो उस समय जिसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा हो, जिन भी फर्टिलाइजर में, जैसे हमको इसमें यूरिया का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, NPK आप डाल सकते हो, पोटाश से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप उसको ऐसे दे सकते हो, मतलब पोटाश की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए
1: ताकि मिठास रहे, क्वालिटी
0: जी,
1: रहे,
0: क्वालिटी, पोटाश
1: रोग दोख और कीड़ा मकोड़ा न
0: जी,
1: लगे।
0: उनका थोड़ा प्रभाव कम होगा।
1: और तरबूज में इस साल क्या स्थिति रही?
0: तरबूज का तो बहुत अच्छा रहा, पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा अच्छा रहा। जिन लोगों का शुरू में तैयार हो गया, यानी कि जिन्होंने बीज की बुआई अपने फरवरी के लास्ट में करी थी।
1: आपने कब की?
0: मैंने फरवरी के लास्ट में करी थी।
1: और 15 दिन पहले खत्म हो गए?
0: जी, 15 दिन पहले खत्म हो गया। और
1: कौन सी वेराइटी थी?
0: मेरे पास थी नॉन-यू सीड्स का आता है सरस्वती और जन्नत,
1: हाँ,
0: दो प्रजातियाँ थी।
1: क्या खासियत है इसकी महसूस करते हैं?
0: मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं की है।
1: तो कुल मिला जुला करके केला, अमरूद और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
0: जी बिल्कुल, मुझे चूंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा में जो केला में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और केला के विकल्प में जहाँ पर केला नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, चाहे फंगस के कारण या अन्य कोई कारण, तो उसके विकल्प में ताइवान पिंक अमरूद या तरबूज, खरबूजा, इनकी खेती मेरे हिसाब से उपयुक्त।
1: पूरे साल की लागत की बात करें तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं, और आपका मुनाफा कितना होता है केला, अमरूद और तरबूज में?
0: डॉक्टर साहब, इन तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग करके बता सकता हूँ, साल भर में तो नहीं बता सकते। केला में लगभग लगभग 1.25 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है, अगर औसत दर्जे का मुझे रेट मिल जाए तो लगभग 3-3.5 लाख का बिक जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, लेकिन ये 15 महीने में होता है। तरबूज की बात करें तो तरबूज की फसल 70 से 90 दिन की होती है, और इसमें करीब 1 एकड़ पर 50 से 60 हज़ार रुपये लागत आती है, और ये बिक्री लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है। अगर आप 50-60 हज़ार रुपये आप अपने लागत के निकाल लें तो लगभग आप 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो सकता है प्रति एकड़ 3 महीने में।
1: और अमरूद में?
0: अमरूद में लगभग 1 एकड़ की लागत एक साल में प्रथम वर्ष होगी लगभग 50 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये, और द्वितीय वर्ष में इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अमरूद में एक काम ज़्यादा होता है, हर साल उसकी कटिंग करना, और जितना आप कटिंग करोगे, जितनी अच्छी आप कटिंग करोगे, आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, फल का साइज और उसका स्वरूप दोनों बेहतर होंगे।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि अगर वो केला उत्पादन करते हैं तो केला में जो उनको लाभ हो रहा था, जैसे उनको काम करने में अच्छा लग रहा था, तो अगर किन्हीं कारणवश केला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आकर्षण इधर अगर होता है तो उसके विकल्प स्वरूप अच्छी चीज है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 800-900-2122, 800-900-2122, 800-900-2122।
1: हरीश कुमार वर्मा भैया आज आप कार्यक्रम में आए, और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप केला के लाल तो है ही हैं, आपने नई शुरुआत की है अमरूद उत्पादन की और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं।

0: कुल मिला जुला करके जो आपकी सफलता की कहानी थी उसको आपने सुनाया और किसान भाई आपसे सीख लेंगे आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखो आकांक्षा, कितनी अच्छी जानकारी जोन बा हरीश कुमार वर्मा भैया बताएं कि भाई देखो केला तो हम उत्पादन करते हैं, केला ते फायदा पर्याप्त मिलत है, लेकिन एक नई जोन बा खेती उनके मुँह हम सुना कि ताइवान वाला अमरूद। तो भाई देखो ताइवान वाला अमरूद बोए रहे हैं तो उसे भी पैसा ही कमा रहे हैं, और चलो ये तो ऊपर वाली फसल होगी, और जमीन वाली फसल जोन बा तरबूज बोए के अच्छा पैसा कमाएँ। तो भाई देखो बागवान जोन पंच भैया हैं, अगर अपन बाग लगाए हैं तो ऊपर तो चलो बिरवा हो गया, लेकिन नीचे भी वो अच्छा उत्पादन कमाई के कई के पैसा कमावा करती। तो भाई देखो ऐसा जौन बा जौन पंच भैया अपने बीच में हैं, अपन अनुभव बतावा करती, सुन के हमहू पंचन के नई तकनीकी मिलत है और उत्साह भी बढ़ा करते हैं।
2: बिल्कुल भैया, उत्साह बढ़ते हैं। हरीश कुमार वर्मा भैया केला अमरूद और तरबूज उत्पादन के क्षेत्र में अपार सफलता पाएन और कौनी कौनी विधि ते यहाँ खेती ये कहन और कौनी कौनी खाद का प्रयोग कहन वी सब तरीकन के यहाँ जो हैं सुशील कुमार राय भैया ते यहाँ साझा कहन और हरीश कुमार वर्मा भैया के अनुभव ते यहाँ अपन पंच भाई जरूर लाभान्वित हुई हैं। यही खातिर दोबारा जो हैं हरीश कुमार वर्मा भैया के यहाँ और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, तो बहनी देखो जौन बा अपन खेती की पाती है में नई नई तकनीकी अगर हम पंच न सुनब, अगर जौन बा नए तरीके थे उके बारे में न सोचब तो जहाँ का तहाँ रह जाओ। देखो ये वैज्ञानिक युग है, हर जगह जौन बा ओ तकनीकी जौन बा हम पंचन के देख मिलत है, तो काहे हम पंच अपने खेती से दूर रही। भाई देखो तकनीकी खेती के इस्तेमाल करी और अपन आमदनी बढ़ाई।
2: बिल्कुल भैया,
1: तो देखो अपने बैठकी में एक पूर्वी गीत सुन लो रविशंकर तिहाती भैया के साथ स्वर में, एक बाद आगे बढ़ी के फिर मौसम का हालचाल हुई।
2: हाँ भैया, सुना जाए।

0: बारे रब शंकर दिहाती भैया एकदम झांझ मजीरा बजाए के एकदम जीव हरियर कह दहा। और देखो यू रहा पूर्वी गीत रब शंकर दिहाती और उनका साथिन के स्वर में। तो बहनी देखो अपने बैठकी में हम पंच जौन बा मौसम का जानकारी जरूर साझा करी था अपने पंच भैया से। जौन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम विभाग केंद्र से हमें पंचन मिला रहा था। तो मौसम देखो बिना हम पंच जानकारी के अपन खेती पाती के लिए एक तरह से हम पंच टकटकी लगाए रही था कि मौसम का हालचाल है उसे हम आप खेती पाती करी। तो मौसम का जानकारी जौन मिली है वो पंच भैया से चर्चा कर दे।
1: हाँ भैया, ये मौसम संबंधी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के अंत प्राप्त हुई है। यही के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तारीख 27/6/2026 का मौसम पूरी तरह यहाँ शुष्क रही। मुला पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई संभागन में गरज चमक के साथ बुछारे पड़े की संभावना है। और मौसम संबंधी चेतावनी यूँ जारी की गई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ जो है वज्रपात के साथ जो है झोंकेदार हवा चली और जैसे हवा की गति जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई संभागन में यहाँ जो है भीषण लू चली और जो है तो सब लोग जो है बच के रहें, अपन जो है सुरक्षा रखें।
0: मतलब यूँ तो देख रहे हैं कि मतलब मौसम का हालचाल मिला जुला है। कहूँ बरखा हुई और गरज चमक के साथ छीटा पड़ी और कहूँ शुष्क रही। भाई देखो मौसम तो यह साल हमारे पंचन के हिसाब से बहुत पीछे है। काहे के कि जौन बा पहले का रहा कि जब अषाढ़ लागत रहा तब भाई, अब यह साल तो देखो अधिक मास लगा है तो दू जेठ लग गवा है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से तो अषाढ़ है ये है। तो भाई देखो मौसम पीछे है तो हमारे पंचन खेती भी पीछे हुई। लेकिन जौन बा भाई देखो जहाँ गरज चमक के साथ छीटा पड़े या ऐसा कौनो मेघ गर्जन हो या वज्रपात हो तो भाई देखो सुरक्षित स्थान पर पहुँचो, अपन खेती पाती काम करत रहो, अपने भाग कर घरे दुआरे पहुँचो भाई, बचे रहो। अब देखो मौसम आखिर रूठा कई दिन रही आए तो है ये भाई, अषाढ़ है, सावन है, भादव है, बरखा तो हो भाई करे, लेकिन अपन सावधानी बराबर रखे रहेगी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया,
0: अब एक ध्यान और रखो कि का होता कि अपन जौन बा खेती पाती में हम पंच लगे न हैं, अपन जैसे बतावत रहे खेत बचाओ अभियान सरकार चलाए है तो अपने माटी की जांच कराओ और जौन बा अपन मृदा का स्वास्थ्य कार्ड जरूर रखी लो। का होता है कि हम पंच जांच तो कराए ले थे और जौन स्वास्थ्य कार्ड मिले था ओके एक बार देख के रख देवा करी थे। तो हम तो का करी था कि अपन स्वास्थ्य कार्ड सुरक्षित रख लेवा करी था और 2-3 साल तक वो काम देवा करा था। हर साल माटी की जांच कराओ भी उचित नहीं होते।
1: बिल्कुल भैया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब बनत है तो वो यूँ निर्धारित करत है कि जो है आपकी माटी में यहाँ कौनी कौनी चीजन की कमी है और जब हम लोगों के शरीर में यहाँ कौनी कमी हो जाती है तो वही हिसाब से यहाँ हम जो है अपन दवाई करी थे तो वही तरीका थे यहाँ वो

0: माटी यो वो स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड यो कहत है कि भैया ये माटी में यहाँ कितनी खाद पांच डारे के जरूरत है।
1: बिल्कुल। और करे बात एक चीज़ और है, हम पंच रासायनिक खाद की तरफ जैसे भाग रहे हैं, अपने जेब पे भी असर पड़ता है और अपने जौन बा माटी पे भी असर पड़ता है। तो हम पंच काहे ना भाई, देखो अपने घूरा खाद है या जौन बा
0: हरी
1: पुआल
0: खाद
1: जौन
0: है।
1: निकलत है या फसल अवशेष जौन मिलता है, वो सब सड़ा के इकट्ठा कर ले तो कितनी कीमती खाद हो जाए। और अपने खेत के लिए भी स्वास्थ्य कर रहे, अपने माटी के लिए है, अपने शरीर के लिए भी स्वास्थ्य कर रहे।
0: और अपने जेबों पर जो है उचित जो है अतिरिक्त जो है दबाव ना आई।
1: बिल्कुल। और एक चीज़ और रहता है, हम पंचे देखो लाइन लगा के का करी था कि बोरी वाली खाद ले आई था। अब जब समय आ गया है, वैज्ञानिक भैया बतावा करते थे कि देखो भाई जौन बा नैनो उर्वरक का उपयोग हम पंच करी तो का हुए कि अपने झोली में डाल के लेके चले आओ और ओकर उपयोग करो।
0: हाँ भैया, तो अपने कार्यक्रम का पता बता दें जाए। कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001।
1: अब बनी देखो घड़ी सारा।

0: वही जो बा नैनो उर्वरक का उपयोग हम पंच करी तो का होए कि अपने झोली में डाल के लेके चले आ और उपयोग करो।
1: हाँ भैया, तो अपने कार्यक्रम का पता बता दें जाए। कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001।
0: अब बनी देखो घड़ी सारा करत है अपने पंच भाइयों से विदा ली के
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्धनगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
1: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य

0: के पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
3: नमस्कार। विज्ञान, तकनीक, आविष्कार और नवाचार से जुड़े विज्ञान जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। इस अंक में हम जानेंगे इस सप्ताह विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुई गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे 6G के साथ भविष्य होगा सुपर फास्ट विषय पर भेंट वार्ता। तो सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
4: वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से मशहूर पिंक प्लैनेट GJ504b के बारे में एक नई और दिलचस्प जानकारी खोजी है। इस ग्रह जैसे पिंड के वातावरण में नमक वाले बादल मिले हैं। ये खोज इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि अब तक किसी दूसरे ऐसे ग्रह या पिंड में इस तरीके के नमक वाले बादल नहीं देखे गए। इससे अंतरिक्ष में मौजूद ठंडे ग्रहों को समझने में मदद मिलेगी। पिंक प्लैनेट GJ504b की खोज साल 2013 में हुई थी। ये पृथ्वी से करीब 57 प्रकाश वर्ष दूर तारे के चक्कर लगाता है और इसका आकार बृहस्पति ग्रह से लगभग 25 गुना बड़ा माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अब भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये वास्तव में ग्रह है या फिर ब्राउन ड्वार्फ, यानी ऐसा तारा जो पूरी तरह तारा नहीं बन पाया। इसी वजह से इसे प्लैनेटरी मास कंपेनियन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश स्थित अमरावती क्वांटम वैली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारत के पहले स्वदेशी डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर ने 4 केल्विन यानी कि -269 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान हासिल किया है। ये मेधा टावर्स में स्थित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी में मौजूद है। इस कामयाबी को प्राइमर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी वजह से भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो खुद अपने जरूरी क्वांटम हार्डवेयर क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। स्वदेशी तकनीक पर बने इस फ्रिज का -269 डिग्री तापमान को हासिल करना एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। दरअसल इस तापमान पर सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेज, क्वांटम सेंसर्स, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत क्वांटम सामग्रियों की टेस्टिंग आसानी से की जा सकती है। मंगल ग्रह से

0: आए एक उल्कापिंड का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को इस अंतरिक्ष चट्टान के अंदर एक नए प्रकार का गार्नेट खनिज मिला है। कनाडा, यूके और इटली के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई ये बड़ी खोज वैज्ञानिकों को मंगल के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास को फिर से समझने और अरबों साल पहले ग्रह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। भारतीय मूल के अमरीकी भौतिक वैज्ञानिक जैनेन्द्र के जैन को भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार मिला है। उन्हें यह सम्मान कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए दिया गया है। उनकी इस खोज ने भिन्नात्मक क्वांटम हॉल प्रभाव के बारे में समझ को पूरी तरह बदल दिया और ये आज भी आधुनिक क्वांटम भौतिकी को नई दिशा दे रही है। जैन भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार के बाद विज्ञान के क्षेत्र में इसे सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। फीफा विश्व कप 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने भी फुटबॉल खेला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर, क्रिस विलियम्स, जैक हैथवे और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडनट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फुटबॉल खेलकर फीफा वर्ल्ड कप सेलिब्रेट किया।
1: अब बात 6G की यानी सिक्स्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आने वाले वर्षों में दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। अगर 5G ने रफ्तार और कनेक्टिविटी की दुनिया में बदलाव लाया तो 6G उसे कई गुना आगे लेकर जाएगा। 6G टेक्नोलॉजी में और क्या कुछ होगा इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जिशान अली सिद्दीकी जी। प्रोफेसर सिद्दीकी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद प्रवीण जी।
1: तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि 6G है क्या और यह 5G से किस तरह से अलग होगा।
2: तो 6G से यहाँ पे तात्पर्य है जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन। तो अगर हम ये सिक्स जनरेशन पे आ चुके हैं मतलब कि इससे पहले की 5 जनरेशन हो चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में बता दूं कि पुरानी जनरेशन क्या थी, उसमें क्या हुआ था और हम कहाँ पे आके खड़े हुए हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1980 से, जहाँ पे हम इसको कहते हैं 1G टेक्नोलॉजी जहाँ पे लाई गई थी, जहाँ पे एनालॉग के थ्रू हम अपनी वॉइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित कर सकते थे, जो एक एनालॉग सिस्टम हुआ करता था। ये हमारा 1980 के दशक में शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 10 साल के बाद में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसको हमने 2G के नाम से जाना, जिसमें हम अब में वॉइस के साथ में SMS भी भेजने लगे थे। इसको हमने 2G कहा, ये भी उसका एनालॉग वर्जन ही अभी हमारा चल रहा था। उसके बाद में 3G टेक्नोलॉजी, जो इसमें हम क्या होता है एनालॉग से डिजिटल की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। अब 3 चीजें, आपकी वॉइस, हमारा वीडियो और SMS जो कि टेक्स्ट होता है उसको भी हम अच्छे से ट्रांसफर करने लगे थे। फिर 4G के बाद में हमारा 5G आया जो कि अब 2020 वाला है, जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरनेट स्पीड मिल रही है, अच्छी बैंडविड्थ मिल रही है। आप अब इस स्तर पे आने के बाद में क्या हम सोच सकते हैं कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है, क्या है वो जो और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो जब 2020 तक 5G पे हम पहुंच गए तो 2030 जो कि हर 10 साल के बाद में हम लोग एक नया पड़ाव लेके आते हैं अब दूर संचार के माध्यम में, तो 2030 में अब क्या किया जाए। तो 6G सिक्स जनरेशन में अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी स्पीड अभी 100 GBPS तक आपके पास जो पहुंचती है थ्रू 5G टेक्नोलॉजी, वो अब 1 TB/s के हिसाब से आप पे पहुंचेगी। मतलब पलक झपकते ही आपका टेराबाइट्स का डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं एक सिटी में बैठे हैं और दूसरे सिटी में ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? थ्रू 5G टेक्नोलॉजी वो लोग कर पा रहे हैं। बट अभी क्या है, वहाँ पे एक लेटेंसी एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं कि अभी मैंने यहाँ से बोला और आपने उसको कितनी देर के बाद सुना। अभी जैसे हम तुरंत तुरंत बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि एकदम शून्य है बीच में लेटेंसी, मैंने बोला आपने सुना, लेकिन जब दूरी बढ़ती है तो वही उस माध्यम से तरंगों का पहुंचने में समय लगता है। तो ये लेटेंसी अभी लगभग 1 ms के बराबर है, जिसको 6G में हम नगण्य करना चाहते हैं। तो जो हमारे दूर से बैठ के हमारे डॉक्टर्स ऑपरेशन कर पाए, सपोज डॉक्टर हमारे USA में बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई सर्जरी करनी है, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और एकदम रियल टाइम में सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो मेन जो उसमें चीज़ें हैं, एक आपकी स्पीड को बढ़ाना 1 TB/s, जो कि आपकी 5G से 100 गुना है, जो अभी 100 GBPS है 1 TB में 1024 GB होता है जिसको, तो सिर्फ एकदम 100 गुना हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं, लेटेंसी कम करने वाले हैं,
1: यानी रफ्तार बढ़ने वाली है। लेकिन 6G में ऐसी क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी कि हम स्पीड को बढ़ाने में कामयाब होंगे और लेटेंसी को खत्म कर सकेंगे?
2: जी, ये इस पे सोचा गया कि 13 Hz में हम जाएंगे, जो कि एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक उस पे हमने डेटा ट्रांसफर नहीं किया है। और एक अच्छी बात यह है कि नॉन आयोनाइजिंग मोड में रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ पे जो संचार का माध्यम है जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, एक तो हमारी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ वो बहुत ही हाई होने वाली है, 13 Hz में हम इसमें जाने वाले हैं। दूसरा, हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन

0: लर्निंग इन एल्गोरिथम का यूज़ करके सिस्टम को खुद से डिसीजन लेने वाला बनाने वाले। अभी क्या होता है, जैसे कहीं आप देखते होंगे कभी कॉल ड्रॉप अप की हो जाती होगी, कॉल कर रहे हैं, इंगेज कर जा रहा है, तो उसमें क्या है, अभी समान बैंडविथ हमने सबको दे रखी है कि इतना है। अब उसकी कैपेसिटी होती है कि एक बैंडविथ कितने एक साथ जो हमारे कॉलर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकता है, तो कहीं पे वो बैंडविड्थ खाली जा रही है उसी एरिया के कुछ भाग में जहाँ पे कम सब्सक्राइबर हैं। अब बैंडविड्थ हमने पूरी दे रखी, अब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, इसको भी सेंस कर सकता है,
1: उसको मैनेज कर सकता है।
0: मैनेज कर सकता है, कैसे मैनेज करेगा, वो देखेगा कि जहाँ पे कम है वहाँ की बैंडविड्थ लाके आपको दे देगा इस एरिया में जहाँ पे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे सेल्फ मैनेज्ड हो जाएगा। प्लस इसमें जो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे, अब जब इंटरनेट आपका आएगा, हाई स्पीड आएगा, तो इसमें कई सारे हैकर्स लोग भी आके इसमें बदमाशी करने की कोशिश करेंगे, तो हम उनसे कैसे बचाव करेंगे। तो उसमें क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे पास एक आई है, एक नई तकनीक है जिसके थ्रू हम इंक्रिप्शन लेकर आएंगे, क्वांटम इंक्रिप्शन। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारी डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बिना ऑप्टिकल फाइबर के क्वांटम टेक्निक्स के थ्रू 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे उन्होंने संदेश भेजा और प्राप्त किया। ये हमारे इसी 6G प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि हमारी भारत सरकार ने 2023 में एक विजन डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था कि हम कैसे 6G में अपने भारत देश को दूसरे देशों के समकक्ष लाके खड़ा करें कि हम भी तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है।
2: यह तो बात हो गई 6G 5G से किस तरह से अलग होगा, इसके अलावा 6G की और क्या विशेषताएं होने वाली हैं उनके बारे में बताएं।
0: तो अब क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी अब इसमें आएंगी। अभी देखिए, आपको फोन पे बात करनी है, सपोज अपने घर वालों से, मम्मा से बात करनी है, आप फोन पे बात कर रहे हैं, अभी वीडियो कॉल हो रही है, तो वीडियो कॉल में आप केवल 2D देख पा रहे हैं कि हाँ उधर मम्मा है, आप उनसे बात कर रहे हैं। क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि मम्मा आपके सामने खड़ी हो और आप उनसे बात कर रहे हो? ये ऐसा 6G में भी हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं होलोग्राम कॉलिंग। इसमें क्या होगा, आपके सामने जिससे भी आप बात कर रहे होंगे उनकी प्रतिकृति आपके सामने बैठी होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उनके आमने सामने बात कर रहे हैं, जबकि वो कहीं और हैं, कहीं विदेश में बैठे होंगे और आप उनसे ऐसे बात करेंगे लगेगा कि वो यहीं बैठी हुई हैं। इसको बोलते हैं होलोग्राम कॉलिंग, मींस हमारी जो इमेजेस होंगी जो एक्चुअल है उनका यहाँ पे प्रतीक रूप तैयार कर दिया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी होलोग्रामिक। इसमें अनुप्रयोग हमारे हैं कि हम जैसे ऑपरेशन का मैंने आपने बताया अभी थोड़ा कम हो रहा है कि रिमोट से हम सर्जरी ऑपरेट कर लें, क्योंकि इसमें लेटेंसी का आता है और वो बहुत ही रियल टाइम में एक्टिविटी करनी होती है, अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें डिले किया तो इश्यूज आते हैं। तो अभी बहुत ही कम स्तर पे ये ऑपरेशंस हो रहे हैं कि रिमोट से ऑपरेट कर लें रोबोट के थ्रू, बट जब ये रियल टाइम एक्टिविटी होने लगेगी, अब मैं समझिए नगण्य है वो, एकदम लेस देन 1 माइक्रोसेकंड। दूसरा, अभी देखिए जो 5G का रेंज है, आप कहीं गांव में चले जाइए, आप देखिए आपका टावर कम होने लगता है, उसकी रेंज कम हो जाती है, या कहीं स्पीड कम हो जाती है। आप पहाड़ों पे चले जाइए, आपको तो कॉलिंग भी होना बंद हो जाती है। तो ये जो दुर्गम इलाके हैं वो 6G का एक पिलर है कि ये जो इंटरनेट की कवरेज है पूरे अर्थ पे आपको प्रोवाइड करनी है, साथ ही जो जितने सैटेलाइट आपके चक्कर लगा रहे हैं उनसे आप रियल टाइम में बात कर सकें। 5G में आपने सुना होगा कि बीच में लोग आपकी बात सुन लेते हैं, आपका डेटा इधर से उधर हो जाता है, तो वो जब हम इसमें क्वांटम तकनीक कराएंगे जिसके थ्रू इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे
1: जी, इसमें साइबर फ्रॉड रोकने के भी उपाय होंगे एक तरह से आप बताना
0: जी,
1: चाह रहे हैं।
0: जी हाँ, साइबर फ्रॉड बिल्कुल आज के टाइम पे तो बहुत ही रेलेवेंट है। अब देखिए हमारे नॉर्मल जनता है उसके पास भी आ रहा है, बट जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी तो इसका एक्सेस प्राप्त होगा, तो वो भी कुछ कर सकते हैं, तो उनको हम कैसे रोकेंगे। तो उनके रोकने का भी बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, क्वांटम इंक्रिप्शन यूज़ होगा। दूसरा, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो अभी बहुत कम यूज़ हो रही है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं, मीन्स के जो उसका अभी क्या होता है, मेन सर्वर होता है उस पर सारा डेटा रहता है, अगर उसको आपने उसको हैक कर लिया तो सारा डेटा आपका चला जाता है। अब ब्लॉकचेन तकनीक में क्या होगा कि ये डेटा किसी एक स्थान पे नहीं होगा, जितनी भी डिवाइसेस यूज हो रही हो सब पे बटा होगा, तो अब उसको बदलने का, वहाँ से चुराने का उनके पास में कोई मौका नहीं रहेगा। तो ब्लॉकचेन तकनीक, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड आपका ये क्वांटम इंक्रिप्शन, जिसके थ्रू हम बहुत ही ज़्यादा हाईटेक इसमें सिक्योरिटी लेकर आएंगे जिसके थ्रू कोई भी कंप्रोमाइज ना कर पाए। साथ ही ये जो 6G टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग आपके 5G डिवाइसेज हैं उन पे नहीं चल पाएगी, ये सारी डिवाइसेज आपकी ऑब्सोलीट हो जाएंगी। हम नया हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं जिसके थ्रू 6G टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचेगी
2: जी, यानी 6G में साइबर फ्रॉड रोकने के भी पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। यह 6G टेक्नोलॉजी भारत में कब तक आने वाली है, कब से आम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे?
0: देखिए, एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका काम होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं दूर संचार के उनको नियामक करना, पूरे संसार में एक ही मानक वो स्थापित करती है जिसको सबको मैनेज करना होता है। उन्होंने

0: भी अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था 2023 में कि क्या क्या इसमें मानक होंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सब मानक उन्होंने के ही दिए हुए हैं कि 2030 में हम ऐसी टेक्नोलॉजी आम जन को उपलब्ध करा देंगे, तो 2030 तक आने की संभावना है। अब ये भारत देश में इस पर क्या काम हुआ है, तो इसमें हमारे भारत सरकार ने 2023 में उन्होंने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट किया कि भाई हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक भारत 6G अलायंस बनाया है हमारी भारत सरकार ने। हमारे जितने भी टेली कम्युनिकेशन की PSU संस्थाएं हैं, हमारे जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत देश में काम कर रही हैं, जितनी भी हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इन सबका एक समूह बनाया है जिसको बोलते हैं भारत 6G अलायंस, जो इस पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी IITs हैं NITs हैं सबसे मांगा कि जो 6G पे काम करना चाहते हैं हमें दीजिए, हम फंडिंग। उन्होंने लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट के लिए अनुदान अलग से दिया। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके थ्रू आपको ये टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। तो हर एरिया पे काम करने के लिए उन्होंने टाई अप किया हुआ है। हमारे IITs जो दिल्ली हो गई, कानपुर हो गई, हमारी बैंक ISC बेंगलोर, तो उसमें जिस एरिया के जो स्पेसिफिक प्रोफेसर्स स्पेशलाइज थे उनको उस कैटेगरी में लेकर आए हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स लिए हैं। और अराउंड 200 पेटेंट हमारे भारत सरकार ने 6G के विभिन्न विधाओं में फाइल करके प्राप्त कर लिए हैं जिसपे वो काम कर रहे हैं, और आगे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी अगर हम अदर देशों की तुलना में भारत को देखें तो हम 6ठे नंबर पे आ रहे हैं 6G रिसर्च में। पहले पे हमारा चाइना है, वो 45% लगभग उसका कंट्रीब्यूशन है 6G में। उसके बाद में 35% पे USA चल रहा है, एंड देन उसके बाद में साउथ कोरिया है, यूरोप है, एंड देन 6 नंबर पे हमारा भारत देश है जो एकदम पुश कर रहा है अपने आप को कि वो टॉप 5 में आ जाए, टॉप 3 में आ जाए। तो हमारे देश के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। 3-4 महीने के बाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्रोटोकॉल देने जा रही है सारे देशों को कि ये प्रोटोकॉल्स फाइनल हो गए हैं, अब इस पे आप लोग अपना और काम करिए।
1: यानी 2030 तक आम लोगों को 6G मिलने की संभावना है। 6G सिर्फ रफ्तार नहीं बढ़ाएगा, यह पूरी डिजिटल लाइफ स्टाइल को एक नई दिशा देगा। इंटरनेट का अनुभव और भी ज्यादा तेज, इमर्सिव और स्मार्ट होगा। दूर संचार के 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रवीण जी।
1: तो श्रोताओं, विज्ञान जगत के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रवीण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामी अवध। लीजिए इसमें सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम मैं हूं ना।

I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

0: इस गीत के साथ ही शाम यावत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुमकुम शर्मा की वार्ता, उपन्यासकार राजू सेठ की का कथामानस। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: राजी सेठ एक ऐसी लेखिका रही हैं जिन्होंने उम्र के लिहाज से बहुत देर से लेखन की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने पाठकों के लिए साहित्य की एक बेहतरीन दुनिया सृजित की जो हमेशा याद की जाएगी। वे हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकारों में शामिल रहीं, परंतु उन्होंने हमेशा साहित्यिक खेमेबाजी से दूर रहकर अपने पाठकों की प्रिय लेखिका बने रहना ही चुना और खामोशी से अलविदा कर गईं। एक साक्षात्कार में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, मेरे लेखन के मूल में समाज, सकारात्मकता और जिंदगी के प्रति प्रेम है। मैं जैसा समाज या पात्र चाहती हूँ अपने लेखन में, उसकी ओर ही इशारा करती हूँ। मेरे सारे चरित्र मेरी कामना के चरित्र हैं। मैं किसी भी जुलूस में शामिल नहीं हूँ, न घर के न बाहर के। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जीवन के प्रति हमारा उत्साह वह है जो हमारे अंदर बहता है। जब हम ही बीमार हों तो समाज को क्या देंगे। एक व्यक्ति के तौर पर मैं निरासक्त हूँ, पर यह नहीं चाहती कि मेरी रचनाओं में यह निस्संगता छन कर आए। लेखक के तौर पर मैं वह पात्र हूँ जिसमें समाज का भोजन पकाया जाता है। बहुत पहले राजी सेठ जी की एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था आत्मन का लिबास। घर भर को प्यारी बहुत दुलारी, चौखट के भीतर पैर रख चुकी दिप दिपाती स्त्री। प्यारी क्यों न होती, स्त्री के पास ही तो था जादू का पिटारा। सदियों पुराना, स्त्री के पास ही तो थे बाबा आदम के ज़माने से सदा साथ दो दो हाथ। हाथों में जादू, रांधना पकाना, जीमना जिमाना, जोड़ना संवारना, फटे को थिगड़ी, तपे को तरावट, रूठे को मनुहार, ढहते को दीवार, भूखे को पकवान, अलसाए को बिछौना, वंश को कोख, बिलखते को गोद। स्त्री के पास सब कुछ, कितना कुछ तो था। छत थी, रखावन खिलावन, लुगड़ा बिछावन। दो जादुई हाथ पैर थे, देह थी, प्राण थे। आत्मन भी कहीं ना कहीं होगा ही। आत्मन का लिबास बेसुध बोराई ने पता नहीं कब कहाँ रख दिया होगा। पता नहीं क्यों इस कविता को जब भी पढ़ती हूँ माँ का चेहरा सामने आ जाता है। सबको सब कुछ देने के लिए तत्पर, अपने लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं, मांगा ही नहीं। यही वह वजह रही कि उनके जाने के बाद हम सब एक अजीब से खालीपन से घिर गए। साल दर साल बीतते रहे पर वो याद आती रही। हमेशा ऐसा लगता कि वे किसी से कुछ कहे मांगे बिना असंतुष्ट ही चली गईं। सच, वे अपना आत्मन का लिबास कहीं रखकर भूल गई थीं, जो हमें उनके जाने के बाद मिला। राजी सेठ की कविताएं स्त्री विमर्श की सशक्त रचनाएं हैं जो पाठक को भीतर तक झकझोरती हैं और जीवन दर्शन के एक

पृथक पाठ से परिचित कराती हैं। एक स्थान पर वे कहती हैं, मैं स्त्री हूँ, जानती हूँ मुझे बहुत सा गुस्सा सहना पड़ता है जो वस्तुतः मेरे लिए नहीं था। अपनी कविता कौन सी आत्मा में वे सवाल करती हैं, तुम कौन, कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? वह जिसे अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जो अछेद्य अभेद्य प्रकाशवान है, या वह जो पावरोटी की दुकान के बाहर खड़ी रोशनदान के सीकचों का बल तौल रही है? राजी सेठ की कविताएं बोलती हैं, अपनी बात कहती हैं। उनकी कविताओं में स्त्री मुखर है। प्रेमचंद युग के बाद के उत्तर आधुनिक काल के साहित्य लेखन में जिन लेखिकाओं के नाम आते हैं उनमें राजी सेठ का स्थान विशेष है। बदलते समय के साथ साहित्य भी प्रत्येक युग में युगीन आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य नया रूप धारण करता है। राजी जी ने तत्कालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण अपने लेखन में किया है। राजी सेठ को पढ़ने और लिखने का शौक था। अति संवेदनशील होते हुए भी उन्होंने लिखना बहुत देर से शुरू किया। उनकी पहली कहानी अज्ञेय जी द्वारा संपादित पत्रिका नया प्रतीक में 1975 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। साहित्यानुराग के साथ उनकी रुचि दर्शन में भी थी। भारतीय धर्म और दर्शन पर विशेष अध्ययन के लिए वे गुजरात भी गई थीं। राजी सेठ ने साहित्य की सभी विधाओं में लिखा। उन्होंने भावुक मन से सुंदर कविताएं रचीं तो यथार्थ की कहानियां भी लिखीं। जिंदगी की जटिल बुनावट से उपन्यास के गंभीर कथानक रचे तो कई महत्वपूर्ण अनुवाद भी किए। राजी जी का साहित्य कर्म क्लासिक और आधुनिक साहित्य के अपूर्व समागम के लिए जाना जाता है। राजकमल से प्रकाशित उनका उपन्यास तत्सम इसी कारण विशिष्ट है। सूक्ष्मता, सघनता और समृद्ध रचनाशीलता के लिए इस कृति को साहित्य में विशेष स्थान मिला। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य में राजी सेठ एक विशिष्ट पहचान रखती हैं। आधुनिक वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर जीवन के कटु अनुभवों की कहानी कहने वाली राजी सेठ ने कहानी के पारस्परिक ढांचे को तोड़ते हुए अपने उपन्यासों में ऐसी कहानियां लिखीं जो किसी के भी मन को भीतर तक झकझोरने की सामर्थ्य रखती हैं। सन 1970 के बाद वे कथा लेखन में सक्रिय होती हैं। उन्होंने एक लंबे समय को बदलते हुए देखा, अनुभव किया और अपने लेखन में अपनी कहानियों में बड़ी शिद्दत के साथ अभिव्यक्त किया। राजी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि के अध्ययन से स्त्री के मनोविज्ञान को आज के युग समाज के ज्वलंत संदर्भों की पीड़ाओं, विसंगतियों और अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया। राजी जी ने समाज में सहज परिमार्जन की प्रक्रिया को अपनाते हुए स्त्री को उसके स्त्रीत्व की रक्षा करते हुए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को नकारते हुए अपने कथानक रचे। निष्कवच उपन्यास 1995 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, सदियों से, यह कहानी नहीं किसका इतिहास, गमे हयात ने मारा, खाली लिफाफा, मार्था का देश, यहीं तक आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अंधे मोड़ से आगे उनका पहला कहानी संग्रह है जो 1981 में राजकमल प्रकाशन से दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। अंधे मोड़ से आगे और तीसरी हथेली के बाद यात्रा मुक्त राजी सेठ का तीसरा कहानी संग्रह है। किसका इतिहास, राजी सेठ की कहानियां जिंदगी का पंचनामा है। राजी सेठ के व्यक्तित्व निर्माण में उनके माता पिता, भाई, गणमान्य साहित्यकारों तथा गुरुओं का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अन्याय के खिलाफ लड़ने तथा विद्रोह करने की प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व की बड़ी खूबी है। अपने आसपास होते हुए अन्याय को चुपचाप देखना उन्हें नहीं आता। अनास्था और असंतोष उनके भीतर उफनने लगता था। यही वो वजह थी कि उनके साहित्य में उनका विद्रोही स्वभाव स्पष्ट झलकता दिखाई देता है। राजी सेठ जी की अनेक कहानियां, कविताओं का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी कुछ कृतियों का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। साहित्यिक उपलब्धियों पर विचार करें तो 1996-97 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में वे फेलो रहीं। जनरल काउंसिल साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा हिंदी सलाहकार समिति हिंदी निदेशालय दिल्ली की मनोनीत सदस्य भी चुनी गईं। सन 1993-94 में हिंदी अकादमी समिति की कार्यकारी सदस्य भी रहीं। उन्हें कलकत्ता,

0: कथा साहित्य का रचना पुरस्कार 1985 में तथा उपन्यास तत्सम पर भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से 1985 में पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें साहित्य में विशेष योगदान के लिए हिंदी अकादमी सम्मान पुरस्कार दिया गया। 9 वर्षों तक राजी सेठ ने साहित्यिक पत्रिका युग साक्षी का सह संपादन किया। वे अनंत गोपाल शेवड़े कथा सम्मान सहित अनेक सम्मानों से नवाजी गईं। हाल ही में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उनकी पुस्तक गमे हयात निमारा के लिए दक्षिण कोरिया द्वारा स्थापित प्रथम टैगोर लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजी सेठ ने देर से लेखन शुरू अवश्य किया, मगर बहुत कम समय में हिंदी साहित्य को बहुत अधिक समृद्ध किया। अपनी कहानियों कविताओं के जरिए वे हमेशा याद आएंगी।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता उपन्यासकार राजीव सेठ का कथा मानस। वार्ताकार थी कुमकुम शर्मा। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए हेमा दीक्षित की गाई गजलें। तो आगाज कर रहे हैं शकील बदायूनी के इस कलाम से।

0: अभी आप हेमा दीक्षित की आवाज़ में सुन रहे थे गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी

0: आतंकवादिता हो रही है बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTYUPI के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म धर्मवीर के इस गीत से। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार को फिल्म परवरिश में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बदतमीज।
1: आपको बोले जी।
2: देश प्रेमी फिल्म के लिए यह आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
3: तूने जल्दी तो मेरे दिल को पीस पीस को

0: गए पट्टी
1: क्या
0: गए परेशान
1: हाथ छोड़।
0: हाई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: मुंह में डाल को चबाएंगे क्या पान? ये पाना में मेरे थल्ले जी के टुकड़े सुपारी की जगह रखो।
1: देश प्रेमी फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने

0: आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि MDMK को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। MDMK के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी TET के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए TET प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी

0: जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया

0: patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. From Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं, जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान राब्ते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वजीर आजम मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी, जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आजम मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय बहरिया का अंदरूने मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना राब्ते कायम करेगा, जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नश्रिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क

0: अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंह भी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम दो मवेशी मुहैया कराए जाएं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एमएसएमई का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि एमएसएमई का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our honorable PM Shriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए एमएसएमई के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मरकजी बजट से एमएसएमई के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीह और अज्म का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत एक ऐसे इको निज़ाम की तश्कील के लिए अहदबंद है जहां हर कारोबारी को इख्तरा तरक्की और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के बराबर के मौके मयसर हों।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी PMML में आज आनजहानी वज़ीरे आज़म PV नरसिम्हा राव के 105वें यौमे पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह PMML की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशीं नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतो मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है, जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जिससे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वज़ीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाज तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर वखोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि

0: तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
3: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
2: जी।
3: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
2: जी।
3: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
2: जी।
3: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन

0: इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं, वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद, पानी, इन

0: स्वागतों का जो प्रयोग किया गया और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
0: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
0: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में।

0: थे आपका, अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
3: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत

0: पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहां से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन से आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये

0: इंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जी वी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Sri Dulal Roy.
1: He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त

0: किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Pàtrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner.